एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 की आश्विन मास की 21वीं तिथि तदनुसार 13 अक्टूबर 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ तस्करी, अवैध वित्तीय लेन देन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी।

0: ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1,500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाक्रमों और परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। कल नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव मोहसिन रेजाई ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ फोन पर बातचीत की। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली PV सिंधु और पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। सिंधु का महिला सिंगल्स में सामना ओलंपिक चैंपियन और दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आए सुनते ही खेती की बातें। अक्टूबर माह के कृषि कार्य प्रति

को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें अक्टूबर माह के कृषि कार्य की। कृषि से जुड़े कोई भी कार्य हमें समय पर करने की जरूरत पड़ती है। समय पर किए गए कृषि कार्य से फसल उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। किसान भाइयों, कार्यक्रम में सबसे पहले बातें गेहूं फसल की। जी हां ग्रामीण भाइयों, गेहूं की बुआई अक्टूबर के द्वितीय पखवाड़े में आप अवश्य कर लें। गेहूं की समय पर बुआई के लिए सिंचित क्षेत्र के लिए उन्नत प्रभेद है K9107 देवा, HUW 468 बिरसा गेहूं 3। देर से बुआई के लिए सिंचित क्षेत्र के लिए उन्नत किस्में हैं HUW 234, DVW 14, जिसकी अनुशंसा वैज्ञानिकों द्वारा की जाती है। किसान भाइयों, अगर आप संकर धान की खेती कर रहे हैं तो याद रखें, शीत ब्लाइट की रोकथाम के लिए विशेष ध्यान दें। चना फसल की अगर हम बात करें तो समय पर बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर में लगभग 70 किलोग्राम या 90 किलोग्राम बीज दर रखनी चाहिए। देर से बुआई के लिए बीज की मात्रा 20% अधिक रखनी चाहिए। चना, मसूर और मटर की बुआई अक्टूबर के द्वितीय पखवाड़े में आप जरूर कर लें। चना फसल का उकठा रोग से बचाव के लिए विटावेक्स फफूंदीनाशक और ट्राइकोडर्मा फफूंद के साथ मिलाकर बीज का उपचार करना चाहिए और खड़ी फसल में 1 ग्राम बेविस्टिन की 1 लीटर पानी 0.1% में घोलकर पौधों की जड़ के पास छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, मक्का की फसल पकने पर आप उसकी कटाई जरूर कर लें। किसान भाइयों, अगर आप तीसी की बुआई करने जा रहे हैं तो याद रखें, इसकी उन्नत किस्में हैं बुआई के लिए T397 और श्वेता। इन किस्मों की अनुशंसा की जाती है। असिंचित अवस्था में बुआई मध्य अक्टूबर में करें, अन्यथा बीज अंकुरण में नमी की कमी बाधा बन जाती है। यदि खेत में पर्याप्त नमी उपलब्ध हो तो बोने की अवधि मध्य नवंबर तक बढ़ाई जा सकती है। सिंचित अवस्था में इसकी बुआई मध्य नवंबर तक की जा सकती है। सरसों की बुआई अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में आप जरूर कर लें। राई की अधिक उपज देने वाली किस्में क्रमशः शिवानी।

0: पूसा बोल्ड, कांति, पूसा महक, पूसा अग्रणी और वरुणा है। इस राज्य में शिवानी सिंचित और असिंचित अवस्था दोनों के लिए उपयुक्त है। राई की सिंचित अवस्था में 80:40:20:40 किलोग्राम नेत्रजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से देना उत्तम है। किसान भाइयों, सरगुजा फसल की चूर्णी फफूंद रोग से फसल को बचाने के लिए 0.3% सल्फेक्स का छिड़काव करना चाहिए। आम के बगीचों में खरपतवार के नियंत्रण के लिए जुताई करें। छोटे पौधों को पाला से बचाने के लिए नियमित सिंचाई करें। आम के बागों में थालों को साफ रखें। केला के पौधों के नीचे पुआल और गन्ने की पत्ती की 8 सेंटीमीटर मोटी परत बिछा देनी चाहिए। इससे सिंचाई की संख्या में 40% की कमी हो जाती है, खरपतवार नहीं उगती और उपज और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। किसान भाइयों, अगर हम सब्जियों की बातें करें तो आलू की बुआई का अभी उचित समय है। आलू की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए 120 किलोग्राम नेत्रजन, 100 किलोग्राम स्फुर, 100 किलोग्राम पोटाश और 24 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से रासायनिक खाद प्रयोग करें। टमाटर फसल में आवश्यकता अनुसार निकाई गुड़ाई जरूर करें। अभी टमाटर की नई पौध आप लगा सकते हैं। बैंगन के तैयार फलों को तोड़कर आप बाजार भेजें। बैंगन और मिर्च फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। पालक में आवश्यकता अनुसार निकाई गुड़ाई कर लें। किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में ये हुई बातें अक्टूबर माह के मुख्य मुख्य कृषि कार्य की। इसके साथ ही कार्यक्रम से अब मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें अक्टूबर माह के कृषि कार्य। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित।

विभीषण ने श्री राम की पवित्र भक्ति मांगी और वो उन्हें प्राप्त हो गई। श्री राम की वानर सेना के सामने समस्या थी, समुद्र पार कैसे किया जाए। विभीषण का कहना है कि यद्यपि श्री रघुनाथ का एक ही वाण करोड़ों समुद्रों का जल सोख सकता है, तथापि नीति कहती है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। वो ऐसा उपाय बताएंगे जिससे रीछ और वानरों की अपरिमित सेना बिना किसी कठिनाई के सागर पार चली जाएगी।

भारत की पावन भूमि पर कई संत महात्मा अवतरित हुए हैं, जिन्होंने धर्म से विमुख सामान्य मनुष्य में अध्यात्म की चेतना जागृत कर उसका नाता ईश्वरीय मार्ग से जोड़ा है। ऐसे ही एक अलौकिक अवतार गुरु नानक देव जी हैं। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी का आगमन ऐसे युग में हुआ जो इस देश के इतिहास के सबसे अंधेरे युगों में था। उनका जन्म 1469 में लाहौर से 30 मील दूर दक्षिण पश्चिम में तलवंडी रायभोर नामक स्थान पर हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। बाद में गुरु जी के सम्मान में इस स्थान का नाम नानकाना साहिब रखा गया। श्री गुरु नानक देव संत, कवि और समाज सुधारक थे। धर्म काफी समय से थोथी रस्मों और रीति रिवाजों का नाम बनकर रह गया था। उत्तरी भारत के लिए यह कुशासन और अफरा तफरी का समय था। सामाजिक जीवन में भारी भ्रष्टाचार था और धार्मिक क्षेत्र में द्वेष और कश्मकश का दौर था। न केवल हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में ही, बल्कि बड़े धर्मों के भिन्न भिन्न संप्रदायों के बीच भी। इन कारणों से भिन्न भिन्न संप्रदायों में और भी कट्टरता और बैर विरोध की भावना पैदा हो चुकी थी। उस वक्त समाज की हालत बहुत बदतर थी। ब्राह्मणवाद ने अपना एकाधिकार बना रखा था। उसका परिणाम यह था कि जाति का भेदभाव बहुत अधिक था। निम्न जाति के लोगों को पढ़ना लिखना बिल्कुल वर्जित था। इस ऊंच नीच का गुरु नानक देव जी पर बहुत असर हुआ। वे कहते हैं, ईश्वर की निगाह में सब समान हैं। ऊंच नीच का विरोध करते हुए गुरु नानक देव जी अपनी मुखवाणी जपुजी साहिब में कहते हैं कि नानक उत्तम नीच न कोई, जिसका भावार्थ है कि ईश्वर की निगाह में छोटा बड़ा कोई नहीं है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति किसी को छोटा समझता है तो यह बिल्कुल गलत है।

जब व्यक्ति ईश्वर के नाम द्वारा अपना अहंकार दूर कर लेता है, तभी वह ईश्वर की निगाह में सबसे बड़ा है, उसके समान कोई नहीं। नानक देव की वाणी में, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अति नीच, नानक तिनके संगी साथ, वडियां सिउ किया रीस। समाज में समानता का नारा देने के लिए नानक देव ने कहा कि ईश्वर हमारा पिता है और हम सब उसके बच्चे हैं, और पिता की निगाह में छोटा बड़ा कोई नहीं होता। वही हमें पैदा करता है और हमारे पेट भरने के लिए खाना भेजता है। नानक जंत उपाय के संभाले सब नाह, जिन करते कर ना किया, चिंता भी करनी ताहर। जब हम एक पिता एकस के हम वारिक बन जाते हैं, तो पिता की निगाह में जात पात का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरु नानक जात पात का विरोध करते हैं। उन्होंने समाज को बताया कि मानव जाति तो एक ही है, फिर यह जाति के कारण ऊंच नीच क्यों? गुरु नानक देव ने कहा है कि मनुष्य की जाति न पूछो। जब व्यक्ति ईश्वर की दरगाह में जाएगा, तो वहां जाति नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ आपके कर्म ही देखे जाएंगे। गुरु नानक देव ने पितर पूजा, तंत्र मंत्र और छुआछूत की भी आलोचना की। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु नानक साहिब हिंदू और मुसलमानों में एक सेतु के समान हैं। हिंदू उन्हें गुरु एवं मुसलमान उन्हें पीर के रूप में मानते हैं। हमेशा ऊंच नीच और जाति पाति का विरोध करने वाले नानक ने सबको समान समझकर गुरु का लंगर शुरू किया, जो एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने की प्रथा है। गुरु नानक जी की गुरुवाणी। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पूरक अकाल मूरत अजूनी सैभम, गुरु प्रसाद जप आड़ सच जुगाड़ सच, है भी सच नानक हो से भी सच, सोच सोच न होवे जो सोची लाख वार, छुपे छुपे न होवे जे लाई हर लखता, रोखिया पुख न उतरी जे बनिया पुरिया पार, सहास्या पा लाख वह है ता एक न चले नाल, केवे सच यारा होइए केवे कूड़े टूटते पाल, हुकुम रजाई चलना नानक लिखिए नाल।

अभी आप सुन रहे थे आराधना भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। सुनते हैं स्वाद चर्चा, जिसमें आप सुनेंगे भेंट वार्ता। युवाओं में बढ़ता काम का तनाव एवं उपचार, भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर सुरजीत प्रसाद रांची से।

0: मित्र नमस्कार। मित्रों, आजकल देखा जा रहा है कि काम के प्रति लोगों में काफ़ी तनाव दिख रहा है। चाहे हमारे युवा साथी नौकरी कर रहे हों, व्यवसायिक जगत में हों, या फिर मल्टीनेशनल कंपनी में वो कार्य कर रहे हैं, उनमें काम के प्रति काफ़ी तनाव है, काम का बहुत ज़्यादा बोझ है, और फिर वो अपने आप को तनाव से घिर जाते हैं, और जब तनाव होता है तो फिर अवसाद से वो घिरने लग जाते हैं। आखिर हमारे युवाओं में इस तरह का तनाव क्यों हो रहा है, क्यों उतने काम के प्रति वो तनाव से घिर जाते हैं, और जब ज़्यादा तनाव होने लगता है तो फिर बहुत सारी बीमारियां भी अंदर आने लगती हैं। तो युवाओं में इतना तनाव क्यों पैदा हो जा रहा है, और इससे बचने का कौन से उपाय है? क्या हमारी जीवन शैली प्रभावित कर रही है, या हमारा खान पान बिगड़ गया है, या हमारा सोचने के तरीके में परिवर्तन आ गया है? इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरजीत प्रसाद। डॉक्टर साहब स्वागत है।
1: नमस्कार सर।
0: डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि यत्र तत्र सर्वत्र तनाव व्याप्त है, और हमारे युवा साथी भी इससे अछूते नहीं हैं। काम काम काम, दिन भर वो काम के प्रति वो लगे रहते हैं, चाहे सुबह हो या दोपहर हो या शाम, और ये काम उन्हें तनाव बढ़ा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा?
1: युवाओं में आजकल ये देखा गया है कि स्ट्रेस बहुत ही बढ़ रहा है। जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ ये तनाव काफ़ी बढ़ रहा है। उसके कुछ इम्पॉर्टेंट कारण जो हैं, ऐसे तो बहुत कारण होते हैं, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो एक बैलेंस जो होना चाहिए काम और अपने पर्सनल लाइफ का, वो एक नहीं रख पाते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट काम है कि उनको जो काम कर रहे हैं उनको वर्कलोड बहुत मिल रहा है, ज़्यादा वर्कलोड मिल रहा है, समय कम है, वो एक हो सकता है कारण। तीसरा कि एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं वो कैसा है। अगर वो बहुत ही, मतलब जिसे कहते हैं कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट हम लोग कहते हैं, अगर टॉक्सिक है तो उसमें उनकी एफिकेसी भी नहीं बढ़ पाती है, और काम का लोड वैसा ही है तो फिर अगेन तनाव हो जाती है। उसके अलावा कुछ कुछ है, जैसे लोगों में आजकल के युवाओं में स्पेशली ये देखा गया है कि एक आगे बढ़ने की इच्छा, किसी भी कीमत पे अचीव करने की इच्छा, ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमें समझना होगा कि सब लोग सब कुछ नहीं पा सकते हैं। अपनी लिमिटेशन हमें जाननी होगी, हम एक हद तक ट्राई करें, अगर वो ट्राई करने में कमी ना करें, लेकिन इतना भी ट्राई ना करें कि वो हमारा मेंटल हेल्थ उससे हैम्पर हो।

0: तो वो हमें एक पहचानना होगा कि हमारी लिमिटेशन कहाँ तक है, हम कहाँ तक अचीव कर सकते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट कारण हो जाएगा। दिनचर्या, दिनचर्या बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो भी तनाव है वो हमारे अच्छी दिनचर्या से वो एटलीस्ट 50-60% कम हो सकता है। अच्छी दिनचर्या जैसे अच्छी नींद लेना, नींद लेने पे जो भी आपकी टेंशन या तनाव है वो लगभग 50% आपका कम जाएगा, 50-60%। कुछ हल्का एक्सरसाइज करना, सही खान पान और सही समय पे लेना, ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम रेगुलर उस पालन नियमित रूप से करें तो स्ट्रेस में हमें बहुत कमी रहेगी, और उसके साथ अगर फिर भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपको है तो आपको फिर किसी पेशेवर से मिलने की ज़रूरत है।
1: क्योंकि काम का बोझ हमारे युवा साथी में इतना है कि वो दिन रात काम में लगे रहते हैं, और सोने उठने बैठने जागने के तरीके में काफ़ी बदलाव आ गया है, और खान पान हमारा बिगड़ गया है, और इसके साथ साथ नशे की प्रवृत्ति भी बहुत बढ़ गई है, और ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर को खोखला करता जा रहा है। क्योंकि युवा साथी हमारे देश के भावी कर्णधार है, और जब युवा इस तरह के गर्त में जाएंगे तो फिर देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तो युवा साथी कैसे अपने आप को व्यवस्थित करें? काम तो हमेशा लगा रहेगा, और ज़्यादा काम ज़्यादा पैसा मंजिल पे जाना, यदि हम सपना ज़्यादा देखते हैं और जब फिर हमारे सपने साकार नहीं होते हैं तो फिर हम अपने आप को कमज़ोर और असहाय महसूस करने लगते हैं।
0: युवा साथियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा मैंने बताया कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको वो प्रायोरिटाइज करना होगा कि कितना काम करना है और कितना मुझे अपनी लाइफ को जीना है, क्योंकि एक सर्टेन समय के बाद आप फैमिली में फिर आइएगा, वाइफ बच्चे होंगे, उस समय फिर ये चीज़ें बहुत ही मैटर करेगी। तो अगर शुरू से ही वो इस चीज़ को बना के चले कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे रखना है, तो वो बहुत उनके लिए लाभदायक है। फॉर एग्जांपल, जैसे काम ठीक है, बहुत वर्कलोड है, दैट इज़ ओके, बट वो वर्कलोड आप घर लेके ना जाएं, बिस्तर पे सोने समय वो वर्कलोड ना ले जाएं, आप ऑफिस छोड़े, बस वर्कलोड वहीं पे छोड़िए, फिर अगले दिन ऑफिस आइए, फिर उसको स्टार्ट कीजिए। दूसरी चीज़ होता है स्मार्ट वर्क करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई एक काम 5 मिनट में कर सकता है, कोई वही काम को करने में 2 घंटे लगाता है, तो हम कैसे स्मार्टली, कैसे कम टाइम में उसको कर पाएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज़ हम लोग कहते हैं नो कहना, नो मतलब असर्टिवनेस ट्रेनिंग कहते हैं हम लोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ में नो कहना, सही समय पे किस रूप में नो कहें। फॉर एग्जांपल, आपको बहुत वर्कलोड आपके बॉस दिए जा रहे हैं आपको, तो आपको ना कहना आना पड़ेगा, उनको समझाना होगा, उनको बताना होगा किसी भी तरीके से कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं कि चुप हो गए और चुप होके जितना काम दे रहे हैं हम लेते जा रहे हैं, उससे आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ हैम्पर होगा, बॉस का नहीं। तो एक नो कहने का भी हमें वो सीखना होगा। चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आजकल देखा गया है कि इन चीज़ों के कारण युवा, जैसा आपने बताया, नशे की ओर बहुत अग्रसित हो रहे हैं, तो नशा करना इसका उपाय नहीं है, उससे और आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब ही होगा। इसके अलावा जो दिनचर्या है उसे बहुत ही संतुलित रख सकते हैं, सही समय पे सोना, भरपूर नींद लेना, सही समय पे खाना और न्यूट्रिशियस फूड लेना, जो स्वास्थ्यवर्धक खाने वो जितना हो सके नेचुरल चीज़ें आप खाएं, जंक फूड को अवॉइड करें, थोड़ा एक्सरसाइज के लिए सुबह शाम घूमें और आपस में बातचीत करें। बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द फैक्ट कि अगर आप ऑफिस में हैं, आपको किसी तरह का तनाव हो रहा है, अगर आपके साथी संगति वाले लोग हैं जो आपकी बात सुन सकते हैं, तो अगर आप उनसे बात करेंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपका तनाव बहुत हद तक कम रहा है। इसके साथ साथ कुछ कुछ जिम्मेदारियां तो मेरे ख्याल से ऑफिस या जो एम्प्लॉयर है उनकी भी बनती हैं कि वो ऐसा माहौल तैयार करें जो उनके जो एम्प्लॉई हैं वो लोग करने में, उस माहौल में उनको काम करने में ज़्यादा दिक्कत की परेशानी ना हो।
1: जी डॉक्टर साहब, जमाना मेटेरियलिस्टिक हो गया है, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हमारे युवा साथी भी पैसा अधिक कमाना चाहते हैं, और फिर पैसे कमाने के चक्कर में वो दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और इसका विपरीत प्रभाव उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो क्या कहेंगे, सिर्फ पैसा ही सब कुछ है या आपका स्वास्थ्य सर्वोपरि है?
0: नहीं, मैं तो कहूँगा हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ है तो पैसा है, पैसा से हेल्थ आप नहीं खरीद सकते, लेकिन हेल्थ से आप पैसा खरीद सकते हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये पुरानी कहावत है, वो ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप हर चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे, पैसा रहेगा हेल्थ नहीं रहेगा तो आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं पास्ट में कोट करूँ तो दीपिका पादुकोण बहुत ही फेमस एक्टर थी, लेकिन जैसे ही उनको डिप्रेशन हुआ, जो सबको पता है, तो उसके बाद वो कहाँ उसको एंजॉय कर पाई वो लाइफ को। शी वॉज स्ट्रगलिंग विथ, वो डिप्रेशन से स्ट्रगल की हैं, तब उन्होंने फाइट बैक किया है, उन्होंने पेशेवर की मदद ली, फिर वो वापस आए हैं। तो अब उन्होंने फिर

से उसने सीखा है उन्होंने कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे रखना, अपना मेंटल हेल्थ कैसे प्रायोरिटाइज करना। इसीलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है, जस्ट मुझे एक याद आया कि इतना इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इस बार की जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है उसका थीम भी यही था कि लेट्स प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस।

0: करते हैं वहाँ के कार्य को आप घर लेकर नहीं आए। यदि आप दोनों को मिक्सअप करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। खुश रहना भी एक कला है। खुश कैसे रहें और काम को हम किस प्रकार व्यवस्थित करें, और जैसा आपने बताया स्मार्ट वर्क,
1: मैं कहूँगा जैसे मैंने बताया स्मार्ट वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। और खुशी किन किन चीज़ों में है? मटेरियलिस्टिक खुशी है कि आपको खुशी मिलती है नेचर में, संगीत में, ये सब कुछ कुछ चीज़ें जो इननेट है वो सब में रहती है। तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें ठीक है, खुशी होती है वो आप करें, लेकिन उसके पीछे इतना ना भागें कि आपका वो हेल्थ उसमें ख़राब हो। और नेचुरल चीज़ों का आनंद लें, नेचुरल फूड लें, आप घूमने जाएं बागानों में, पर्वतों में, पहाड़ों में, नदियों में घूमने जाएं, फिर नेचुरल जो हैबिटेट्स हैं वहाँ जाएं आप, तो कुछ ना कुछ वो बीच में टाइम आउट लेके, ब्रेक लेके आप जाएं और उन जगह को अपना वो डी-स्ट्रेस भी होगा और आप नेचर के करीब भी जाएंगे। उसके अलावा आप गाना सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मोबाइल या स्क्रीन का
2: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुरजीत प्रसाद से, युवाओं में बढ़ता काम का तनाव एवं उपचार स्वास्थ्य चर्चा में। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार अब से कुछ ही पलों में।

0: विषये सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च मुख्य सचिवेभ्यः पत्रं लिखितम्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः 30-2000 वर्षस्य सीमावधि पर्यन्तं भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापारं द्विगुणीकर्तुं आह्वानं कृतवान्। मंत्री गोयलः नवदिल्ल्यां भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक व्यापार समित्याः 16 सत्रे जेट्को व्यापारिक पूर्ण अधिवेशनं सम्बोध्य इदं प्रतिपादितवान्। सतत संवादेन संस्थागत तंत्रैः प्रवर्धित सहकारित्वेन च भारत ब्रिटेन देशयोः आर्थिक सानिध्यं दृढीकरणाय भारतस्य दृढसंकल्पः वाणिज्य मन्त्रिणा समाहूतः। तेन अभिहितं यत् एतेन उपक्रमेण उभयोः देशयोः उद्यमेभ्यः नूतनाः अवसराः अनावृताः भविष्यन्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन सूचितं यत् दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब राज्यानां केषुचित् क्षेत्रेषु मेघगर्जन पुरस्सरं विद्युत्पातस्य संभावना अस्ति। अद्य आन्ध्रप्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख गिलगित बालिस्तान मुजफ्फराबाद राजस्थानेषु अपि एतादृश्यः ऋतु परिस्थितयः संभाव्यन्ते। इदतिरिक्तं पूर्वोत्तर भारते हिमाचल प्रदेश केरलं तमिलनाडु पुदुचेरी एतेषु राज्येषु अपि मेघगर्जनेन सह झंझावातस्य संभावना अस्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से भावी होंगी। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ, तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के प्रतिबद्ध हैं। बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्करे शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। ये सभी आतंकवादी पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के थे। आतंकवादियों का ये समूह कल दोपहर बाद कृष्णा घाटी सेक्टर के नांगी टकटे इलाके में नियंत्रण रेखा पार करने की फिराक में था। तभी उनका पांव बारूदी सुरंग पर पड़ गया और विस्फोट में 4 आतंकवादियों की मौके पर ही मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी

ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आइए आपको बता दें, प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन समय में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा आपसे कुछ ही पलों में यानी कि 7:15 पर आप सुनेंगे राग रंग, 7:45 पर आप सुनेंगे स्वर सरिता में सुगम संगीत अशोक खोसला को, समाचार प्रभात का समय होगा 8:00 जो दिल्ली से आप सुनेंगे, 8:15 पर आप सुनेंगे दिल्ली से मॉर्निंग न्यूज, 8:30 पर सुनेंगे रांची से प्रादेशिक समाचार, 8:40 पर सुनेंगे रांची से विज्ञापन, गीत गुंजन आप सुनेंगे 8:45 पर, 9:00 का समय होगा जोहार पलामू का, प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय होगा 9:30 पर, जो 10:10 पर सुनेंगे विविध भारती में सेहतनामा मुंबई से, मुंबई से आप सुनेंगे विविध भारती में रंग तरंग 11:00, 12:00 का समय होगा विविध भारती में यादों की महफिल का, 1:00 हम चलेंगे दिल्ली जहां सब सुनेंगे हिंदी में समाचार। एक बजकर 5 मिनट पर सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार दिल्ली से, 1:10 पर सुनेंगे रांची से प्रादेशिक समाचार, 1:20 पर सुनेंगे मुंबई से विविध भारती में सुरीला सफर। दो बजे का समय होगा अंग्रेजी में समाचार का जो दिल्ली से आप सुनेंगे, 2:15 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दोपहर की सभा में, सदाबहार रंग में सुनने के लिए हम चलेंगे मुंबई 2:30 पर, 2:55 पर आप सुनेंगे रांची से प्रादेशिक समाचार, 3:00 का समय होगा मुंबई से विविध भारती में सखी सहेली सुनने का, 4:00 का समय होगा रांची से प्रादेशिक समाचार का, 4:02 पर आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती में सेलुलाइट के सितारे, 5:00 का समय होगा रांची से प्रादेशिक समाचार का, 5:02 पर आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती में छाया गीत, शाम 5:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

शाम 5:30 आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम में युवाणी प्रादेशिक समाचार का समय होगा 6:00। 6:02 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। खेती बाड़ी का समय होगा शाम 6:30 पर। 7:00 आप सुनेंगे रांची से प्रादेशिक समाचार। जिले में आजकल का समय होगा 7:10 पर। 7:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सूर संध्या में। खुला आकाश के तहत आप सुनेंगे वार्ता राष्ट्र कवि नामधारी से दिनकर वार्ताकारों का स्वाति साह। 7:45 पर 8:00 का समय होगा चित्रपट संगीत का। 8:30 पर आप सुनेंगे देशगान। 8:45 पर आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार।

अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 9 बजे, 9:15 पर सुनेंगे दिल्ली से उर्दू में समाचार, 9:30 पर हम सुनेंगे विविध भारती में आज के फनकार, 10 बजे का समय होगा रजनीगंधा का, 10:30 पर सुनेंगे एक रंग कार्यक्रम, 11 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 11:05 पर और हम अपनी सभा का समापन करेंगे रात्रि के 11:10 पर। तो ये थी हमारी आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए सुनते हैं राग रंग शास्त्रीय संगीत।

अभी आप सुन रहे थे राग रंग शास्त्रीय संगीत, गायन पंडित सी आर ब्यास से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। आए सुनते हैं स्वर सरिता, अशोक भोसले।

अभी आप अशोक खोसला से सुन रहे थे स्वर सरिता सुगम संगीत में। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र जहां से आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक के राज्यपाल होंगे। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ, तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी भाग लेने वाले गृह मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी से लगे देशों और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया।
3: 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। हमें विश्वास है वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी।
1: निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 70 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 1313 बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ पर्यवेक्षक और 14,900 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी इस कार्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया है कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: दाँत खाँच खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोलकर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्करे शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मडारपुर के निवासी थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत सिंचाई अवसंरचना में सुधार की दिशा में अनुकरणीय प्रदर्शन करने के लिए देश के 100 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये उपलब्धि सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने, कृषि गतिविधियों के लिए जल उपलब्धता में सुधार करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में जिले के प्रयासों को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो आधुनिक भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है।
4: राजगीर की पहाड़ियों के बीच नालंदा की कहानी इतिहास से निकलकर वर्तमान में आती है। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर के उद्घाटन में 17 देशों के मिशन प्रमुख शामिल हुए। नालंदा की पहचान सिर्फ उसकी प्राचीनता नहीं बल्कि ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने की परंपरा रही है। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने इसी विरासत को याद किया।
5: नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था, अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं।
4: नालंदा की ये नई यात्रा भी सीमाओं से परे है। आज यहाँ 20 से अधिक देशों के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। अलग अलग देशों से आए ये विद्यार्थी उस विचार को आगे बढ़ाते हैं जिसे भारत वसुधैव कुटुम्बकम के रूप में देखता है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी बताते हैं कि हम विकास भी और विरासत भी की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं।
6: ये जब हम नालंदा विश्वविद्यालय में अलग अलग तरह की कोर्सेज शुरू करते हैं, अलग अलग तरह के चिंताएं जताते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो नई पीढ़ी है उसके माध्यम से उसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हम करते हैं।
4: पुरानी नालंदा की विरासत आज प्रधानमंत्री के प्रयासों से विकास और आधुनिक शिक्षा की नई ताकत बन रही है, जहां अतीत की सीख भारत के भविष्य को दिशा दे रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निदेशश्री की रिपोर्ट।
3: भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर

0: 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है। मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
1: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4 करोड़ 77 लाख से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106 करोड़ 64 लाख वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। इंटरनेट उपभोक्ता आधार में ब्रॉडबैंड और नैरोबैंड दोनों प्रकार के ग्राहक शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 के अंत तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 2.03% की वृद्धि हुई, जबकि नैरोबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 0.89% की कमी आई। रिपोर्ट के अनुसार भारत के टेलीफोन ग्राहकों की संख्या मार्च 2026 के अंत में लगभग 133 करोड़ से बढ़कर जून 2026 के अंत में 134 करोड़ हो गई, जो तिमाही आधार पर 1.31% की वृद्धि है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देवी वैष्णवी की दैवीय शक्ति असीम वीरता का प्रतीक है और वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देवी पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं और प्रसन्न होने पर मोक्ष का प्रदान करती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले 2022 के राज्य कानून को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश विभू भश्रू और न्यायाधीश के एस हेमालेखा की खंडपीठ ने इस कानून को असंवैधानिक बताया। पीठ ने कहा कि आरक्षण में ये बढ़ोतरी सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में तय की गई 50% की कानूनी सीमा का उल्लंघन करती है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओरियंस में शुरू हो रहा है। दो ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक चैंपियन और विश्व नंबर एक दक्षिण कोरिया की आन से यंग से खेलेंगी। तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की नादुसुकी निदेरा से होगा। अश्मिता चालिहा, देविका सिहाग और उन्नति हुडा अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच आज खेलेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और पूर्व विश्व नंबर एक किदांबी श्रीकांत आज राउंड ऑफ 32 में अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और राजस्थान में भी कल तक ऐसे ही मौसम की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: PCPND की कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर प्रदर्शनों पर रोक लगाने का समाचार सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं, गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है कई आंदोलनों के गवाह जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं, 3 नए स्थान तय, रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान, सीबीडी मैदान। समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को परास्त करेगा मंगरोल, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ 3रा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। हिंदुस्तान ने उपलब्धि शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने सऊदी अरब में मिसाइल ड्रोन हमलों की वजह से रियाद एयरपोर्ट के बंद होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है सऊदी से उड़ानें बंद, केरलम के 10 लाख लोगों का त्योहारी प्लान अटका। 51% लोग शॉपिंग करने में ले रहे

0: into extinction risk. And with that, it's back to you, Sarabjit.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu appoints 6 governors. Rajendra Vishwanath Arlekar moved to Tamil Nadu and O.P. Mathur to Kerala. India to host first ever BIMSTEC Home Ministers meeting in New Delhi today. Election Commission launches nationwide outreach drive to ensure no eligible voters left out of electoral rolls. 4 Lashkar-e-Taiba terrorists killed in landmine blast at LOC in Poonch district of Jammu and Kashmir. India's internet subscriber base crosses 111 crores. And in badminton, Denmark Open 2026 to begin today in Odense. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
3: बस पोती का जन्म ठीक से हो गया, चलो सब घर चलते।
4: सुनिए, डॉक्टर साहब ने अस्पताल में 2 रात रुकने को बोला था।
3: नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं।
4: अरे देख के, हाय गिर गए।
5: अच्छा मलहम लगाओ, पट्टी करो और एक्सरे करो जल्दी।
6: देखा आपने, कोई भी गड़बड़ होने पर यहाँ तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद के 48 घंटे माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसलिए अस्पताल में 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेकर चांस क्यों लेना,
7: चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना।
8: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
9: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
10: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गाँव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
9: अरे बहन परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर, जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
10: बहन पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
9: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
11: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
12: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की। पलामू के पूर्व सांसद ब्रज मोहन राम ओडिशा के बनाए गए राज्यपाल। झारखंड हाई कोर्ट में जेपीएससी की नियुक्तियां रद्द करने के मामले में सुनवाई पूरी, अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। राज्य सरकार को 15 अक्टूबर तक दलीलें रखने का निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अस्पतालों सहित सभी चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का दिया निर्देश। चतरा पुलिस ने टीएसपीसी समर्थक मुकेश गंजू को सिमरिया रोड के पास से अवैध हथियार के साथ किया गिरफ्तार। और झारखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम और तापमान में किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं, कुछ जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश का पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। पलामू के पूर्व सांसद ब्रज मोहन राम ओडिशा के राज्यपाल बनाए गए हैं। ब्रज मोहन राम भाजपा के नेता और पूर्व सांसद हैं। उन्होंने 1996 से 2004 तक पलामू लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इसके साथ ही डॉ ढाल सिंह बिसेन उत्तराखंड, दुष्यंत गौतम सिक्किम, ओम प्रकाश माथुर केरलम और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तमिलनाडु के राज्यपाल बनाए गए हैं। डॉ सुधा यादव को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय में जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, सीडीपीओ और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और राज्य सरकार को 15 अक्टूबर तक संक्षिप्त लिखित नोट दाखिल करने का निर्देश दिया है। हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने बताया कि राज्य सरकार ने शपथ पत्र में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा था।
13: पीए हैं जो मेंबर थे जेपीएससी के, का रिजेक्शन ऑर्डर है बेल ऑर्डर का, उसको दिखाते हुए ये दिखाने का काम किया कि जेपीएससी 11वीं 13वीं में भी बहुत बड़ी धांधली हुई थी, इसमें पैसा का आदान प्रदान भी हुआ था, इसमें बहुत बड़ा मास बंगलिंग है और यहाँ तक काउंटर एफिडेविट भी कमजोर रही और बहस भी 5 मिनट खाली राज्य सरकार ने किया और बंद लिफाफे में उन्होंने जो तथ्य दिया है वो हम लोग प्रीवी नहीं है। तो इससे पता चलता है कि राज्य सरकार का क्या मंशा है, कितना सीरियस थी इस मैटर को लेकर के, जेपीएससी 11वीं 13वीं को लेकर के और जेएसएससी के भी मैटर्स को लेकर के।
12: झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं से हुई नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले के खिलाफ वाली याचिकाओं की सुनवाई खंडपीठ में करने की मांग खारिज कर दी है। अयूब तिर्के ने मामले को एकल पीठ से स्थानांतरित कर खंडपीठ में भेजने का आग्रह किया था। इसका विरोध करते हुए अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कहा कि मूल रिट याचिका दायर करने वाले पक्षों की सहमति के बिना मामले को दूसरे बेंच में नहीं भेजा जा सकता। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों सहित सभी चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य मरीजों और उनके परिजनों को इलाज के संभावित खर्च की स्पष्ट जानकारी देना, सोच समझकर निर्णय लेने में सक्षम बनाना और बिलिंग से जुड़े विवादों को कम करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। दुमका जिले में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप संचालित किए जा रहे हैं।
14: दुमका जिले में 1185 मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप संचालित किए जा रहे हैं। ये कैंप लोगों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की सुनवाई प्रक्रिया तथा सुधार संबंधी मामले में सहायता कर रहे हैं। इस अभियान में 4 निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी तथा 24 सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी भी तैनात किए गए हैं। साथ ही टोल फ्री नंबर 1950 और ICNET पर BLO से कॉल बुकिंग की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
12: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कल नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान वर्तमान राजनीतिक स्थिति, भाजपा की गतिविधियों तथा संगठन को और अधिक सशक्त बनाने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई विषयों पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची में दुर्गा पूजा के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए SSP ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। SSP ने बताया कि पूजा पंडालों में 2400 घंटे CCTV, फायर सेफ्टी, अलग एंट्री एग्जिट गेट और पब्लिक एड्रेस सिस्टम अनिवार्य किया गया है। चौक चौराहों पर वॉच टावर, QRT टीम, मोटरसाइकिल दस्ते की गश्त और महिला सुरक्षा के लिए शक्ति कमांडो तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि विसर्जन रूटों का निरीक्षण, ट्रैफिक डायवर्जन प्लान, रावण दहन और गरबा डांडिया के लिए पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। दुर्गा पूजा को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत के बाद विभाग की ओर से शहर के कई होटलों और स्टॉलों में जांच अभियान चलाया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि कुछ होटलों में मिठाइयों में मिलावट पाई गई।
15: छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े दुकानदारों के जांच अभियान चलाए, उसके दौरान में हम लोग निरीक्षण भी किए। निरीक्षण में हम लोग वहाँ का जो साफ सफाई जो था बहुत ही कमियां पाए गए, हम लोग उनको नोटिस इशू किए हैं। साथ में हम लोग पनीर का भी नमूना लिए, पनीर जो कि मिलावटी उसमें स्टार्च पाया गया था प्रथम दृष्टिया, तो जाँच के लिए लैब भेजे। मिठाई जो था यूज बाई डेट उसका सही नहीं पाया गया, एक्सपायर पाया गया करके वही हम लोग नष्ट भी करवाए उनको।
12: सिमडेगा जिले के 8 लोगों को सऊदी अरब ले जाने के नाम पर उनसे 6,95,000 रुपए की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने कौसर अली को गिरफ्तार किया है। SDPO DD पासवान ने बताया कि आरोपी को सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
16: हज जाने के नाम पर एक आदमी द्वारा करीब 1,95,000 की ठगी की गई है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जो राउरकेला का रहने वाला है। राउरकेला से भागने के फिराक में था, जिसे गिरफ्तार कर सिमडेगा लाया गया है। 6-7 लोगों से ठगी किया गया।

0: गया था। टोटल 6,95,000 की ठगी की गई है।
1: चतरा सदर थाना पुलिस ने टीएसपीसी समर्थक मुकेश गंझू को सिमरिया रोड के पास से अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में राहुल दुबे गैंग से संपर्क और शहर में रेकी करने की बात स्वीकार की है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। झारखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम और तापमान में किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं। रांची जिले में आज अधिकतम तापमान करीब 28 से 29 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी प्रमुख अखबारों ने एसआईआर मामले में विपक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इस पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, एसआईआर पर संग्राम। प्रभात खबर ने पलामू के पूर्व सांसद ब्रज मोहन राम को ओडिशा का राज्यपाल बनाए जाने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अस्पतालों को स्वास्थ्य सेवाओं की रेट लिस्ट लगाने के निर्देश संबंधी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने सितंबर माह में महंगाई बढ़ने और 23 माह का रिकॉर्ड टूटने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की। पलामू के पूर्व सांसद ब्रज मोहन राम ओडिशा के बनाए गए राज्यपाल। झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी की नियुक्तियां रद्द करने के मामले में सुनवाई पूरी। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। राज्य सरकार को 15 अक्टूबर तक दलीलें रखने का निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अस्पतालों सहित सभी चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का दिया निर्देश। चतरा पुलिस ने टीएसपी से समर्थक मुकेश गंझू को सिमरिया रोड के पास से अवैध हथियार के साथ किया गिरफ्तार। और झारखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम और तापमान में किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं। कुछ जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश का पूर्वानुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: बहन, मेरी बिटिया की आंखों की रोशनी छोटी सी उम्र में ही कमजोर हो गई है। रात में उसे ठीक से दिखाई ही नहीं देता।
3: कहीं तुम्हारी बेटी में विटामिन ए की कमी तो नहीं हो गई है?
2: विटामिन ए? वो क्या होता है बहन?
3: विटामिन ए शरीर के विकास और खासकर आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी होता है। तुम्हारी बिटिया की आयु क्या है?
2: 4 वर्ष।
3: अपनी बिटिया को विटामिन ए की खुराक पिलाओ। ये 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 6 माह के अंतर पर दी जानी चाहिए।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: तुम्हारी माताजी का स्वास्थ्य अब कैसा है?
6: क्या बताऊं भाई, कल माताजी के स्वास्थ्य की जांच के लिए उन्हें गांव के सरकारी अस्पताल में ले गया था, पर वहां तो डॉक्टरों ने उनकी ठीक से जांच ही नहीं की। अब आम आदमी कहां फरियाद करे?
5: अरे डायल करो 104 नंबर।
6: वो क्या है भाई?
5: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन, जहां सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों से संबंधित शिकायत, जैसे अस्पताल में डॉक्टर का न होना, दवाई का न होना या अन्य कोई गड़बड़ी की जानकारी दर्ज कराई जा सकती है।
7: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी

ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: ये आकाशवाणी का
1: ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आइए सुनते हैं गीत गुंजन। गीत गुंजन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म साजन का ये गाना।

0: और इसी गीत के साथ गीत गुंजन संज्ञा कह दीजिए। आप सुन रहे थे फिल्म सिंदूर का ये गाना मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर की आवाज में। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे गीत गुंजन, पुराने फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

जोहार पलामू सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम आज के सुविचार से। हमारे आज के सुविचार इस प्रकार से हैं, कहते हैं शिक्षा बदलाव लाती है भटकाती नहीं, शिक्षा समृद्धि बढ़ाती है बेरोजगारी नहीं, शिक्षा समाधान का नाम जरूर है अभाव का नहीं। तो हमें अपने जीवन में शिक्षा का महत्व समझना चाहिए, हमें अपने जीवन में शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए और इसी तरह हमारा जो जीवन है एक सुंदर और सरल और सफल बनेगा जब हम शिक्षा के महत्व को समझेंगे। हम बातें और भी करेंगे मगर सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जो हर पलामू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बातें करते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति किस प्रकार से सचेत रहें। हम अपने स्वास्थ्य में अगर देखें तो हमारे शरीर के सभी अंग जो हैं बहुत ही कीमती हैं और हमें उनका देखभाल करना जरूरी है। उसी कीमती में हम बातें कर रहे हैं अपनी आँखों की। जी हाँ, अगर ये आँख ना होती तो शायद हम पूरी दुनिया को नहीं देख पाते, तो हमें अपने आँखों की देखभाल करना बहुत ही जरूरी है। अपनी आँखों को स्वस्थ रखने और उनकी देखभाल करने के लिए हम ऐसे खान पान का उपयोग करें जिससे हमारा आँख काफ़ी अच्छा हो। पौष्टिक आहार हमें लेना चाहिए। अपने डाइट में विटामिन ए, सी, ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर चीज़ें शामिल करना चाहिए। अभी जैसा मौसम चल रहा है, ऐसे मौसम में हमें बाज़ार में गाजर, पालक, मेथी, आंवला मिलना शुरू हो गया है। ये हमारे आंखों के लिए काफ़ी अच्छी है। ये हमारे आंखों की रोशनी और रेटिना के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो हमें इसे अपने खान पान में उपयोग में लाना चाहिए। शरीर में पानी की कमी ना होने दें, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है हम पानी का उपयोग कम करना शुरू कर देते हैं, नहीं ये जबकि बहुत ही गलत है। हमें पानी कम नहीं करना चाहिए। ठंड के मौसम में हमें प्यास तो कम लगती है, लेकिन हमें अपना ख्याल तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें अपने ख्याल के लिए रखने के लिए उनका उपयोग जो है हम करें। ठंडा पानी अगर नहीं पीते हैं तो पीना भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे मौसम ऊपर की ओर जाएगा ठंड बढ़ती जाएगी। ऐसे मौसम में आप ये कर सकते हैं कि बोतल में पानी भर कर धूप में रखें, वो थोड़ा सुसुम गर्म हो जाएगा, जब आपको उपयोग में लाना है आप उसे पी सकते हैं और ये हमारे शरीर को काफ़ी फायदे भी देगी। तो रोज़ाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिए, जिससे कि आपकी जो आँखें हैं वो सूखी ना रहें, क्योंकि ड्राई आई होने से भी हमारा जो आँख है वो ख़राब हो जाते हैं। अगर आप कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर ज़्यादा काम करते हैं तो हर 20 मिनट के बाद स्क्रीन से हटकर 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूरी की चीज़ें हमें देखना चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं 20-20 नियम। जी हाँ, 20-20 नियम अपनाकर आप अपने आँखों का जो रेटिना है उसे बचा सकते हैं, आँखों की रोशनी को बचा सकते हैं और हम अपने काम भी आराम से कर सकते हैं। बीच बीच में आप पलके झपकाएं, स्क्रीन देखते समय बार बार पलके झपकाते रहें, इससे आँखों में नमी बनी रहती है। सूर्य की रोशनी से बचना, धूप का चश्मा पहने। जब भी धूप में बाहर निकले तो आप किरणों से बचाव वाले चश्मे जरूर पहने, ये हमारे बादले वाले दिन में भी पहनना चाहिए। सफाई की आदत, आँखों को न रगड़ें, गंदे हाथों से आँखों को छूने या रगड़ने से बचे, इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। आँखें छूने से पहले हमें अपने हाथ को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। रात में मेकअप हटाकर सोएं, क्योंकि रात को सोने से पहले आँखों का जो मेकअप है उसे अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। यदि आप लेंस लगाते हैं

सोने से पहले उन्हें उतार दे और इन्हें साफ रखने के लिए सही सल्क्यूशन का उपयोग करें। कभी भी पानी से साफ ना करें। सबसे बड़ी बात कि भरपूर नींद और आराम की ज़रूरत है। हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद हमें लेनी होगी, जिससे थकी हुई आँखों को आराम मिल सके। आई चेकअप भी आपको बार बार कराएं, ताकि साल में कम से कम एक बार किसी नेत्र विशेषज्ञ से आंखों की जांच कराएं। किसी भी तरह की लालिमा, दर्द या धुंधलापन होने पर खुद से कोई आई ड्रॉप न डालें। हमारे शरीर के सभी अंग तो कीमती हैं, मगर आंख इतना कीमती है कि मानो अगर न रहे तो हमारा जीवन या अंधकारमय है। तो इस अंधकारमय को हम दूर करें और अपने दिए हुए भगवान का गॉड गिफ्टेड आँख को हम अच्छे से स्वस्थ रखें, अच्छे खान पान के साथ उसे देखभाल करें। और हम बात और भी करेंगे, मैं सुनती है प्यारा सा गाना।

श्रोताओं, तो आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जोहार पलामू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बातें करते हैं आज के इतिहास की। 13 अक्टूबर का इतिहास देश और दुनिया के कई महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा है। 13 अक्टूबर 1773 को फ्रांसीसी खगोलीय शास्त्री चार्ल्स बेसियर ने वेलपूल ग्लेशियर की खोज की थी। 13 अक्टूबर 1792 को अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस की आधारशिला रखी गई थी। 13 अक्टूबर 1895 को भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान सी के नायडू का जन्म हुआ था। 13 अक्टूबर 1911 को समाज सुधारिका और स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता का निधन हुआ था। 13 अक्टूबर 1973 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली ने

जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 13 अक्टूबर 1772 को उर्वी वायुसेना का विमान एडिज पर्वतमाला में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इससे एडिज का चमत्कार भी कहा जाता है। 13 अक्टूबर 1987 को महान भारतीय पार्श्व गायक और अभिनेता किशोर कुमार का निधन हुआ था। 13 अक्टूबर 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 13 अक्टूबर 2020 को चिली की एक खदान में फंसे 69 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। 13 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के दतिया में रतनगढ़ माता मंदिर के पास पुल पर भगदड़ पड़ने से 109 लोगों की मौत हुई थी। 13 अक्टूबर 2016 को प्रसिद्ध अमेरिकी गायक गीतकार बॉब डीलन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी। तो ये थी हमारी आज की इतिहास। हम बातें और भी करेंगे, मगर सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

और इसी के साथ जोहार प्रणाम उसे मैं आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे जोहार पलामू, प्रस्तुति स्वर था पिंकी कुमारी का, संयोजक थे श्री प्रशांत गौरव। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: संग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, तो की जाए शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं, जिंदगी में कई लोग आते हैं, कुछ लोग सिर्फ मिलने के लिए, कुछ सिखाने के लिए और कुछ हमें बेहतर बनाने के लिए। इन लोगों के द्वारा जिंदगी हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर सुविचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू। अगला संदेश मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, अरजान और अबान अब्बासी। और गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहल्ला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रंभारानी निषाद, निखिल कुमार निषाद, नैतिक कुमार निषाद और कुमारी पुष्पांजलि निषाद के साथ साथ स्वप्निल कुमार निषाद। इदो ग्राम इंदु पोस्ट कारकल तालुका जिला उडुपी कर्नाटक राज्य से एच सिद्धार्थ जी ने लिखा है, उमंग के हर कार्यक्रम श्रोताओं के ज्ञान के विस्तार को बढ़ावा देने में बेहद सहायक है। अनजान नए नए विचारों पर रोशनी फैलती है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि ऐसे ज्ञान से भरे कार्यक्रम अधिक से अधिक प्रसारित करें। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। कच्छ भुज से जगदेश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी। आप सभी श्रोताओं का हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमें संदेश भेजा। और आप सबसे हमारा निवेदन है, उमंग के साथ जुड़े रहिए उमंग से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए हमारा उमंग कार्यक्रम। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम ये भी जानिए श्रृंखला में आपके लिए लेकर आते हैं नई नई जानकारियाँ। तो इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ आविष्कारों की, खासकर ऐसे छोटे छोटे आविष्कारों की जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। आज हम एक ऐसी चीज की कहानी लेकर आए हैं जो इतनी छोटी है कि उंगलियों के बीच में आसानी से छिप जाए, लेकिन उस छोटी सी चीज ने इंसान के लिए आग जलाना बेहद आसान बना दिया। श्रोताओं, आप समझ गए होंगे ना, हम बात कर रहे हैं माचिस की। जी हाँ, माचिस। इसे हम लगभग रोज देखते हैं, डिब्बी खोली, तीली निकाली और घिसी, बस आग जल गई। सब कुछ कितना सामान्य लगता है ना, लेकिन श्रोताओं, क्या कभी आपने सोचा है कि ये छोटी सी बारूदी तीली बनी कैसे? हमारा उत्तर होगा शायद नहीं। तो प्रस्तुत है आज की कहानी इसी छोटी सी तीली की बड़ी यात्रा की। तो श्रोताओं, पहला सवाल ये उठता है कि जब माचिस नहीं थी तो लोग आग कैसे जलाते थे? ये जानना तो सच में बहुत रुचिकर होगा ना। हजारों हजार वर्षों तक आग जलाना एक मेहनत का काम था। आदिकाल में लोग चकमक पत्थरों को टकराकर, लकड़ी रगड़कर या चिंगारी पैदा करके आग जलाने की कोशिश करते थे। ये जंगलों में यदि आग लग जाती थी तो उसी दावानल से लोग आग का लाभ प्राप्त करते थे। और हाँ, वे ये भी कोशिश करते थे कि आग को जलाए रखें। श्रोताओं, मुझे तो आज भी याद है कि पहले गांव के कुछ घरों में लोग घूरे पर या आंगन में आग जलाए रखते थे और पूरा गांव उनके पास आग मांगने के लिए आता था, है ना? याद है आपको? ये आपसी मेलजोल और सहयोग की भावना का एक अनूठा उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन जरा सोचिए, अगर बारिश का मौसम हो, लकड़ियां गीली हो और तुरंत आग चाहिए, तब कितनी परेशानी होती होगी। और तब इंसान जरूर सोचता होगा कि काश कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे आग जल जाए। और यही इच्छा धीरे धीरे अलग अलग प्रयोगों का कारण बनी। तो आइए जानते हैं पहली माचिस कब और कैसे बनी। श्रोताओं, एक खास बात आपको बता दें कि आज की तरह आसानी से असुरक्षित जलने वाली माचिस अचानक किसी एक ही दिन में नहीं बनी। कई वैज्ञानिकों और

आविष्कारकों के प्रयोग के बाद इसका विकास हुआ। तो आइए चलते हैं 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। यूरोप में एक ऐसी रासायनिक माचिस बनाने के प्रयोग होने लगे जिन्हें किसी सतह पर रगड़ने से आग पैदा हो सकती थी। शुरुआती रासायनिक माचिस आज की माचिस जितनी सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे रसायन इस्तेमाल होते थे जो हवा या ताप के प्रभाव में आकर तुरंत आग पकड़ लेते थे। इसकी वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। तो फिर धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने ऐसी माचिस बनाने पर काम शुरू किया जो उपयोग में आसान होने के साथ साथ ज्यादा सुरक्षित भी हो। और फिर आती है हमारी आज की माचिस। श्रोताओं, 19वीं शताब्दी में फॉस्फोरस से जुड़ी तकनीकों और घर्षण से जलने वाली माचिस के विकास ने इस दिशा में बड़ा बदलाव किया। वैज्ञानिकों ने ऐसी लकड़ी से तीली बनाई जो खुद भी आसानी से आग पकड़ लेती थी, और फिर तीली के सिरे पर ऐसे रासायनिक पदार्थों के मिश्रण का इस्तेमाल किया गया जो घर्षण और गर्मी से आग पैदा करने में मदद करते थे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन श्रोताओं, अब प्रश्न है कि डिब्बी के किनारे वाली खुरदरी पट्टी का विकास कैसे हुआ जिस पर घिसकर हम माचिस जलाते हैं? तो आपको बता दें कि आधुनिक माचिस में तीली और डिब्बी के घर्षण वाली सतह पर अलग अलग रासायनिक पदार्थ रखे जाते हैं। तीली को उस सतह पर रगड़ने पर घर्षण से गर्मी पैदा होती है और रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण लौ जल उठती है। हम समझते हैं कि हम सिर्फ तीली घिस रहे हैं, लेकिन श्रोताओं, उसके पीछे रसायन विज्ञान की पूरी कहानी चल रही होती है। आइए श्रोताओं, जानते हैं अब एक बड़ी रोचक बात कि इसका नाम माचिस क्यों पड़ा या इसका नाम माचिस कैसे पड़ा। भारत में इसे आमतौर पर माचिस कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे मैच बॉक्स कहते हैं। मैच शब्द एक फ्रांसीसी भाषा के मैश्चे शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है दिए या मोमबत्ती की बाती, जिसे आग पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जब ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन वॉकर ने घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई तो आग सुलगाने वाली उस तीली को भी मैच कहा जाने लगा। तो मैच यानी तीली, और इसे डिब्बी या बॉक्स में रखे जाने के कारण ये मैच बॉक्स हो गया। और धीरे धीरे यही शब्द हिंदी में माचिस बन गया, है ना? खाना बनाने से लेकर मोमबत्ती जलाने तक लंबे समय तक माचिस ने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे अब तो हमारे पास लाइटर्स भी हैं, लेकिन माचिस की भूमिका अभी भी कम नहीं हुई है। जी हाँ श्रोताओ, तो अगली बार जब आप माचिस की एक तीली देखें तो याद रखिएगा, उस छोटी सी लकड़ी के पीछे सदियों की आग, मेहनत, प्रयोग और विज्ञान की कहानी छिपी है। और हाँ, बच्चों के लिए एक खास बात, खासतौर से हम अपने श्रोता विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं, आपको हम बताना चाहते हैं कि माचिस से प्रयोग करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। थोड़ी सी लापरवाही भी खतरनाक हो सकती है। विज्ञान को समझिए, उससे सीखिए और हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखिए। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी, आशा है आपको भी पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, किस ब्रिटिश रसायन शास्त्री ने पहली बार घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस ब्रिटिश रसायन शास्त्री ने पहली बार घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई? आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF टाइप कीजिए, वेबसाइट के अनुदेशों का पालन कीजिए और विकल्प पर जाकर मनचाही पुस्तक डाउनलोड कीजिए। इन्हीं पुस्तकों का ध्वनि रूप भी आपको NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो निवेदन करते हैं, इस चैनल को यानी NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। इसका शीर्षक है भारत प्यारा। कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक की एक नज्म पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा भारत भूमि के गौरव का गान किया गया है तथा बताया गया है कि हमारा देश भाषाई, भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण कितना अद्भुत और सुंदर है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर।
2: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
3: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़।

0: दिया। अर्देशीर बुजोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
0: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
2: जवानों,
3: जी सर।
2: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
3: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
2: तुमने ठीक सुना है। यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
4: जी सर।
2: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
4: जी जनाब।
2: हाथ गोला हाथ में लो।
4: ले लिया जनाब।
2: अब पिन रिलीज करो।
5: फेंको।
4: फेंका जनाब।
0: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
4: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
3: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
4: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
6: सही में
4: बहादुर सैनिक हो तुम।
0: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
7: मे आई कम इन सर?
3: यस, कम इन।
7: सर।
3: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
7: सर।
3: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
7: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
3: हाँ हाँ, कहो।
7: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
3: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
7: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
3: गो अहेड यंग मैन।
7: सर।
0: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।

0: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
1: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
2: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जनसामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
3: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
2: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
4: जी जनाब।
5: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
2: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
3: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
2: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
3: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
2: फायर।
3: सर, ये टैंक तो गया।
2: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
3: सर, ये टैंक तो गया।
2: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
3: यस सर।
1: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
0: इस तरह चौविंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोग्रांडी की ओर आगे बढ़ी। और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का। बुटूर और डोग्रांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
1: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने

0: कि तभी
1: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
0: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
1: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
0: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
1: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कार्यक्रम। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: खुशियाँ अपनाएं खुशियाँ, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अर्शद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं विविध भारती के लिए मुंबई के केंद्र।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी भाग लेने वाले गृह मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 17 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 1313 बूथ स्तर के अधिकारी, पर्यवेक्षक और 14,900 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी इस कार्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है, जबकि मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूर संचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया है कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4,77,00,000 से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106,64,00,000 वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि देवी वैष्णवी की दैवीय शक्ति असीम वीरता का प्रतीक है और वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देवी पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं और प्रसन्न होने पर मोक्ष प्रदान करती हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्कर के शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसीम के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मडारपुर के निवासी थे। दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज दिन भर यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। कई जगह यातायात मार्ग परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें मिंटो रोड, मंडी हाउस और पटेल चौक गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर, सरदार पटेल मार्ग, क्लॉट प्लेस, आउटर सर्कल शामिल हैं। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, मार्ग बदले जाने के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। 2 ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक चैंपियन और विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी दक्षिण कोरिया की आन सान एंग यंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। India will host the first BIMSTEC Home Ministers meeting today in New Delhi, where issues related to terrorism, transnational organized crime, narcotics radicalization, trafficking, illicit financial flows, and cyber threats will be discussed. In a social media post, Home Minister Amit Shah said, the historic meeting underscores the shared resolve of the BIMSTEC to strengthen cooperation in tackling common security challenges, including terrorism, organized crime. He said through decisive coordination, the members will remain committed to building a safer, stronger and more secure BIMSTEC region. The Election Commission of India, ECI, has stepped up efforts to ensure that every eligible citizen is included in the electoral rolls, with special camps and voter assistance campaigns being organized across several states and union territories. Chief Electoral Officer CEOs and District Election Officers DEOs are taking proactive measures to help voters register their names, correct personal details and resolve discrepancies in the voter lists in line with ECI instructions. Special camps are being organized at polling booths to make voter registration and correction services more accessible. Delhi Traffic Police has issued a traffic advisory for today in view of the law and order situation in New Delhi. The Traffic Police said traffic movement is likely to be affected at various stretches, including Minto Road, Roundabout Mandi House, Patel Chowk, Guru Nanak Chowk, Lodhi Road Flyover, Sardar Patel Marg and Outer Circle Connaught Place. The Traffic Police said informed that subject to the prevailing situation, diversions may be enforced at some major junctions and stretches of Delhi. Commuters have been advised to plan their journey in advance and allow additional travel time. In Jammu and Kashmir, four terrorists, including a top Lashkar-e-Tayyaba LET commander, were killed in a landmine blast along the line of control, or LOC, when they were trying to infiltrate into Poonch district yesterday. The deceased terrorists have been identified as top LET commander Mohammed Faizan, Mohammed Ishtiaq, Mohammed Waqas and Mohammed Asim. All of them were residents of Mandala, Madarpur in Hajira Tehsil of POJK's Poonch district. India has called for greater access to finance, technology transfer and capacity building to accelerate the implementation of sustainable development goals, with poverty eradication remaining a key priority. Delivering India's statement at the UN General Assembly's second committee discussion on sustainable development, Councillor Soumya Nair highlighted the country's progress in clean energy, noting that non-fossil fuel sources now account for 55% of India's installed electricity generation capacity. On the other hand, speaking at the UN General Assembly's sixth committee, Councillor at India's UN mission, R. Mithili, called for terrorist acts that meet the threshold of crimes against humanity to be covered under the proposed International Convention on the Prevention and Punishment of Such Crimes. She stressed that nations must retain primary responsibility for protecting people, ensuring accountability for grave violations and exercising jurisdiction while respecting the rights of the accused and the interests of victims. The International Monetary Fund, IMF, has raised India's GDP growth forecast to 7% for 2026-27, up from 6.4% in July. In its flagship World Economic Outlook report, the IMF said the revision in estimate comes on the back of a stronger-than-expected momentum, supported by resilient domestic demand and robust services activity. It said India stands out with upward revisions reflecting sustained momentum and growing evidence of stronger growth potential, supported by favorable demographic dynamics, expanding domestic market and continued structural reforms. Equity benchmark indices opened flat this morning amid buying in IT and realty sector shares. The Sensex opened at 71,951, up 27.05 points, and Nifty 50 began trading session at 22,364, up with 0.80 points or flat. Denmark Open badminton tournament kicks off in Odense today. Two-time Olympic medalist PV Sindhu will take on Olympic champion and world number one Aung Se-young of South Korea in the women's singles round of 32 match, while Tanvi Sharma will be up against Natsuki Nidaira of Japan today. In men's singles, Lakshya Sen and the former world number one Kidambi Srikanth will be in action today in the round of 32 matches. In men's doubles, Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will be seen in action tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
3: कोई भी अगर 6-7 दिन मान लीजिए आप थकान लग रही है तो 6-7 दिन, 7 का फिगर रखिए, 7 डेज का एक याद रखना बड़ा मुश्किल हो रहा हो, तो इस तरह जितनी क्रॉनिक बीमारियां हैं कि भाई कमजोरी लग रही है

0: कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, वजन कम लग रहा है, नींद नहीं आ रही है। शहर में तो ठीक है, दिल्ली मुंबई में है तो आप हॉस्पिटल्स में आप तुरंत, लेकिन छोटे जगह पे भी है ना, तो आसपास आजकल स्वास्थ्य केंद्र है, वहां जाके डॉक्टर को बताइए जरूर। ये तो नॉर्मल जो सिम्टम है भाई, नींद नहीं आ रही है यार, भूख नहीं लग रही है, हो सकता है नॉर्मल ही होगा, लेकिन कभी कभी वो बहुत बड़ी बीमारी का संकेत भी रहता है। और कुछ चीजें जिसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है, जितनी जल्दी हो उतने जल्दी डॉक्टर को संपर्क करना है, वो भी मैं, जैसे आपको चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सिर्फ चेस्ट डिस्कम्फर्ट नहीं, आपके जॉज में पेन हो रहा है, आपके ईयर में पेन हो रहा है, और आपको लग रहा है हेडेक हो रहा है, और आपको लग रहा है थोड़ा सा ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। और आजकल खासकर स्ट्रोक में थोड़ा भी कहीं भी आपको कमजोरी, देखिए एक जनरल कमजोरी होना एक अलग बात है, लेकिन आपको किसी, अगर विटामिन की कमी है तो सिर्फ दाएं हाथ में कमजोरी नहीं होगी, सिर्फ आपका बाएं उंगली में ऐसा कोई सेंसेशन जा रहा है तो विटामिन की कमी है, सिर्फ वहां नहीं होगा, ये स्ट्रोक का अर्ली साइन हो सकता है।
1: यानी एबनॉर्मेलिटीज पर ध्यान देना जरूरी
0: हाँ
1: है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इग्नोर नहीं करना किसी भी चीज को ना, हर चीज, हम सिर्फ शरीर को ही इग्नोर करते हैं, बाकी दीवार से कहीं पानी टपक रहा है तो अरे पानी क्यों गिर रहा है, गाड़ी में हवा कम है, हवा का कम है, मोबाइल का ये स्क्रीन क्यों, लेकिन जिस शरीर के सहारे हम सारी जिंदगी निकालते हैं ना, थोड़ा दिखाई ठीक है वो आंखों में चश्मा, वो इग्नोर करते हैं हम,
1: जो जरूरी बातें
0: हाँ
1: उनको
0: वो
1: इग्नोर
0: इग्नोर
1: करते हैं
0: करते हैं।
1: जी।
0: दांत में दर्द ठीक है यार, अरे कभी कभी वो दांत दर्द हार्ट या कार्डियक का भी तरफ आप लेके जा सकता है, बट हम लोग थोड़े इंडियन लोग हैं ना, वो खाने पे डाल देते हैं, ये गलत नहीं है, होता है ऐसा नहीं, 60-70% वैसे ही रहता है, बट हाँ ये साइन है जो कि आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि यार ये पूछने में क्या जाता है, आजकल तो इतने सुविधाएं हैं, व्हाट्सएप है, हर आदमी कहीं ना कहीं से जुड़ा है, तो आप जो भी मेडिकल से जुड़े लोग हैं उनसे आप डिस्कस तो कर सकते हैं, वो आपको गाइड तो कर देंगे, है ना।
1: डॉक्टर साहब, ये बहुत जरूरी मुद्दे पर बातें हुई और सेहतनामा कार्यक्रम का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है गाने, तो यहां एक गाने का ब्रेक लिया जाए और आपकी पसंद का पहला गाना सुनवाया जाए।
0: हाँ ये जरूरी है, ये डॉक्टर लोग के लिए भी जरूरी है और मरीजों के लिए भी जरूरी है।
1: जी
0: तो किशोर दा का एक गाना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये
1: जी
0: जीवन है इस जीवन का, बहुत बेहतरीन।
1: देखिए, मुझे तो ये पता है कि आप गुनगुनाते हैं, तो ऐसे तो नहीं बच के जाइएगा
0: थोड़ा सा गुनगुना देते हैं।
1: जी।

0: डॉक्टर संदीप, बातें हो रही हैं इंटेंसिव केयर की। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक आईसीयू स्पेशलिस्ट की दिनचर्या क्या होती है, आप किस तरह से क्या काम करते हैं?
1: इसमें थोड़ा हमारा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लेकिन ठीक है, आप डॉक्टर बने हैं
0: जी,
1: आप आर्मी हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पुलिस वाले हैं, तो थोड़ा तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। रात की नींद जरूरी है, लेकिन एक कॉल अगर किसी मरीज का आ रहा है तो आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं।
0: तो किसी भी वक्त
1: किसी भी वक्त
0: मुस्तैदी से जाना पड़ सकता है।
1: हाँ, कुछ प्रोफेशन है ऐसे, डॉक्टर हुआ, आर्मी वन हुए, पुलिस वाले हमारे हुए, ये इनका समय का क्या ही करेंगे सर।
0: जी जी बिल्कुल,
1: बाकी लोग चैन से सोए तो कोई तो जगेगा।
0: बिल्कुल।
1: बट हाँ, फिर भी हम डॉक्टर हैं हम लोग, तो हमें पता होता है कि उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो नींद कहाँ कैसे पूरी कर सकते हैं। और जैसे हर आदमी को चाहिए अपने दिनचर्या में थोड़ा योगा, थोड़ा एक्सरसाइज, खान पान का ध्यान रखना, सही वक्त पे सोना, सही वक्त पे उठना। और आजकल सबसे बड़ा ना फैक्टर हो गया है स्ट्रेस सर।
0: जी जी
1: ये आप जब मेडिकल की किताबें पढ़ेंगे ना, तो हर बीमारी के प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर में कहीं ना कहीं स्ट्रेस लिखा रहता है।
0: जी,
1: दिल की बीमारी हो, वो दिमाग की बीमारी हो,
0: थायराइड हो,
1: थायराइड हो, इवन कैंसर हो, कोई भी स्ट्रेस में है उसको कोई भी बीमारी होने की संभावना ज्यादा है, ये आप मान के रखिए। और हर को ऊपर वाला कुछ ना कुछ देता है, कोई म्यूजिक है, कोई पेंटिंग करता है, कोई गार्डनिंग, कुछ ना कुछ एक शौक रखिए और अपने दिनचर्या में से 15 मिनट 20 मिनट निकालिए उस चीज के लिए, कम से कम डिस्कनेक्ट होइए ये स्ट्रेस से।
0: जी,
1: वो बहुत जरूरी है सर मेरे ख्याल से। इंटेंसिव केयर यूनिट तक बात ही ना आए यार, बाहरी केयर कर लेते हैं।
0: जी, मतलब जीवन में एक शांत मन और एक स्वस्थ तन के लिए बहुत जरूरी
1: बहुत,
0: है कि हम
1: बहुत।
0: टेंशन से दूर रहें,
1: बिल्कुल,
0: हम
1: बिल्कुल।
0: दबावों से दूर रहें।
1: वो जो WHO की डेफिनेशन आती है ना हेल्थ की,
0: जी
1: उसमें शारीरिक के साथ मानसिक स्वास्थ्य पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है।
0: जी जी
1: आप स्ट्रेस में हैं तो आप कुछ भी एंजॉय थोड़ी ना कर पाइएगा।
0: बिल्कुल,
1: आपका हेडेक हो रहा है तो आप कितनी भी अच्छी पिक्चर हो, कितने भी अच्छे गाने, आप एंजॉय तो नहीं कर सकते ना। किसी भी चीज को एंजॉय करने के लिए आपका स्वस्थ होना, किसी भी चीज को एंजॉय, पैसा भी है तो किस काम का, जो आप हमको ही देने के लिए रखे हैं, मतलब नहीं है ना। आप
0: बिल्कुल,
1: एज अ डॉक्टर तो सबको ये एडवाइस है कि अपने लाइफ स्टाइल पे, अपने दिनचर्या पे बहुत ध्यान रखें। और बहुत मुश्किल काम नहीं है सर,
0: जी जी
1: बहुत सिंपल ही, ऐसा कुछ आपको पहाड़ नहीं तोड़ना है। समय पे सोना है, समय पे खाना है, मानसिक तनाव से दूर रहने की कोशिश करना। दूर तो नहीं रह सकते, कोशिश कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है, सबके लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, बहुत सारी बातें अलग अलग मुद्दों पर हो रही हैं। और डॉक्टर संदीप, मैं ये, चूंकि बारिश और बारिश के बाद के मौसम के ये दिन, जहां पूरे देश में अलग अलग तरह के बुखार फैले हुए हैं जो धीरे धीरे कई परिस्थितियों में गंभीर रूप ले लेते हैं और आईसीयू तक मामला चला जाता है, इस मामले को जरा हमें समझाएं और इससे जुड़ी हुई सावधानियां बताएं।
1: हाँ, ये बहुत अच्छा, इस समय को देखते हुए बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा मलेरिया, डेंगू, जब भी बारिश होती है हमारे यहाँ, तो बारिश का तो मौसम का एक अलग मजा है, लेकिन मजा तभी तक है जब आप स्वस्थ रहेंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो उसमें भी जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि किसी भी चीज को, किसी भी साइन सिम्टम को इग्नोर नहीं करना है, और खासकर इसमें बुखार, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, उल्टी, थकावट, बारिश के सीजन में इन सब को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सिर्फ काउंटर से दवा लेके नहीं खानी है सर। बुखार अगर 24-48 घंटे है तो एक बार जरूर संपर्क करें डॉक्टर से। इसमें स्वस्थ रहने के लिए

0: सबसे अच्छा है कि आप हाइड्रेशन मेंटेन करें।
1: जिस पर आजकल ध्यान नहीं होता, क्योंकि लोग पंखे की हवा में होते हैं,
0: नहीं नहीं सर,
1: एसी में होते हैं, पानी जो है वो मोस्ट इग्नोर्ड चीज है।
0: डेंगू का ही मरीज है तो उसका हम क्या करते हैं, उसको आराम कराते हैं, उसका हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं और सिम्टम जो है उसकी वो बुखार वगैरह की दवा दे देते हैं।
1: जी जी
0: आप देखें ज्यादातर बीमारी को कुदरत ही ठीक करता, आप सहारा दीजिए। डॉक्टर का काम यही होता है कि हम सपोर्ट कर दें, बॉडी को सपोर्ट कर दें और नेचर अपने आप आपको क्योर करता है।
1: जी एक समस्या जो बहुत बड़ी है कि बुखार आया या जुकाम हुआ तो ओवर द काउंटर मेडिसिन लोग ले लेते हैं, घर पर पड़ी हुई है
0: हाँ
1: तो
0: हाँ बराबर है,
1: पैरासीटामोल उठा के ले लिया,
0: सही बात
1: है ना।
0: है।
1: तो ये जो चीजें हैं इनसे सावधान कैसे करें लोगों को, इतने सालों से ये बात चली आ रही है पर ओवर द काउंटर दवाओं का इस्तेमाल रुकता नहीं है।
0: ये बहुत बड़ी समस्या है सर, खासकर एंटीबायोटिक्स जो हम लोग मिसयूज गए और उठा के लिया है। यहाँ तो बड़े शहरों में तो ठीक है, जल्दी मिलता नहीं है, बाकी जगह तो आप जाइए और लेके आ जाइए। एक बुखार आया तो एक टैबलेट मान लिया, ठीक है, सुदूरवर्ती वर्ती क्षेत्रों में है, दूर है, एक क्रोसिन ले लिया। लेकिन अगर बुखार 24 घंटे से ज्यादा का है तो एक छोटा सा ब्लड रिपोर्ट तो करना ही चाहिए। आज के सिनेरियो में कोई भी एक्सपर्ट इसीलिए बनाए भी जाते हैं, डॉक्टर्स इसीलिए हैं। और अभी तो बहुत सुविधाएं हैं सर, अभी तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत समय लगेगा, बहुत अभी तो हर जगह स्वास्थ्य केंद्र है, थोड़ा भी है तो आपको एक सही दिशा तो मिल ही जाती है। मैं तो बिल्कुल बोलूंगा ओवर द काउंटर ड्रग्स ना लें, उसका बहुत नुकसान होता है और उसके ही परिणाम है कि आजकल आप देख रहे हैं किडनी की बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, लीवर की बीमारियां, ये सब ये जो दुरुपयोग है ना किसी भी चीज का आप मिसयूज करेंगे तो ये उसका ही परिणाम है कि आजकल बहुत इस तरह की बीमारियां आपको देखने को मिल रही हैं।
1: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और बाकी एक्सपर्ट्स ने भी बीते दिनों एक बड़ी मुहिम चलाई थी कि अगर एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं किया जाता तो एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है जो व्यक्ति को आगे के लिए दिक्कत दे सकता है।
0: मैं आपको बताऊं कि जब हम मेडिकल में पढ़ते थे 2006 तक की बात बताऊं तो उस वक्त था कि 10 20 25 रुपए के एंटीबायोटिक में आदमी ठीक हो जाया करता था। आज की तारीख में सर जो रेजिस्टेंस जो हो रहा है, लोग बोलते हॉस्पिटल का बिल आ रहा है, अरे एक दिन का एंटीबायोटिक की दवा की कीमत ही हो जाती है 10,000। हायर एंटीबायोटिक्स इतने, क्योंकि ये वही है हमने यूज कर करके, मिस यूज करके, यूज नहीं करके, हमने मिस यूज करके उसका इतना रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है
1: कि दवाएं असर ही नहीं करती,
0: असर ही नहीं कर रही है। आपको हायर एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ रहा है, वो महंगी है और प्लस जान के लिए कितना खतरा है एंटीबायोटिक। हमको भी लिखने से पहले दो बार सोचना पड़ता है, लेकिन वहां पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है, जान बचाने के लिए लिखना पड़ता है। लेकिन ये बहुत गलत है और आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही डिजास्टरस हो सकता है अगर हम अभी नहीं सुधरे। ये अभी भी वक्त है सुधर जाए, नहीं तो सिर्फ 1929 में पेनिसिलिन, उसी वक्त पेनिसिलिन आई थी जिसने सारी सृष्टि को बचा लिया था, वो स्थिति फिर आने वाली है ऐसा लगता है। जिस तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो ही स्थिति, अगर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं होते तो अभी तक सृष्टि खत्म हो चुकी होती। तो वो स्थिति हम फिर इंसान लोग पैदा ना करें।
1: ये रेजिस्टेंस क्यों होता है, एक आम आदमी को एक आम भाषा में जरा समझाइए।
0: देखिए रेजिस्टेंस का आपको वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और वही एंटीबायोटिक चल रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसका इन्फेक्शन नहीं है, किसी और का इन्फेक्शन है, दवा कुछ और ले रहे हैं तो धीरे धीरे बैक्टीरिया अपने आप को इस तरह से मजबूत कर लेता है कि सिर्फ नॉर्मल एंटीबायोटिक फिर उस पर काम ही नहीं करती है, उसको आप वक्त दे देते हैं। ये नॉर्मल भाषा में समझाने के लिए कि आपने जैसे अधमरा सांप ना छोड़ते नहीं है, बाद में आपको वो डसने वाला है, वो बैक्टीरिया का वही हाल है। आपने उसको हाफ ट्रीटमेंट पार्शियल ट्रीटमेंट करके छोड़ दिया, वो फिर बाद में जब रिबाउंड करता है ना तो वो एक नॉर्मल, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को कि बाबा खुद से एंटीबायोटिक थेरेपी तो बिल्कुल मत कीजिए आप,
1: जी
0: स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ के निरीक्षण में ही कीजिए उसको।
1: तो इस बीच में जो बातें हुई उसका सार ये है कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर केमिस्ट पर जाकर एक तो ओवर द काउंटर दवाएं अपनी तरफ से इलाज ना करें, और दूसरा ये है कि बिना बात के एंटीबायोटिक आधी अधूरे कोर्स कर लेने से जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है वो हम सब इंसानों के लिए बहुत खतरनाक बनता
0: है, बहुत बड़ा इंसानियत के लिए वॉर से ज्यादा खतरनाक ये बैक्टीरिया होने वाले हैं जिस तरह से ये हमारे सामने आ रहे हैं चीजें।
1: जी
0: इंटेंसिव केयर यूनिट पे हम देखते हैं कि ये बैक्टीरिया है तो सब पैन रेजिस्टेंस की, कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही, एक काम कर रही है सिर्फ। सपोज आने वाले समय वो भी नहीं काम किया
1: तो कुछ भी काम नहीं
0: तो
1: कर,
0: क्या करेंगे हम।
1: ये
0: एक बड़ी भयानक स्थिति होने वाली है अगर हम सही समय पे हम नहीं सुधरे तो।
1: जी डॉक्टर साहब अब यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: हाँ हाँ बहुत
1: तो आपकी पसंद का

0: डॉक्टर संदीप वर्मा से बातचीत हो रही है। ये जो आईसीयू के विशेषज्ञ हैं और अलग अलग मुद्दों पर बातें चल रही हैं। डॉक्टर साहब, वापस एक खतरनाक जो जगह आईसीयू, उसकी तरफ चलते हैं। जब कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीज आता है, मान लीजिए उसको स्ट्रोक है, अटैक है या कोई और बीमारी है, तो एक आईसीयू में तैनात डॉक्टर क्या प्रोसेस करता है, वो क्या प्रोटोकॉल होता है उसका?
1: सबसे पहला प्रोटोकॉल हमारा होता है कि उसको स्टेबलाइज करना।
0: जी,
1: एक नॉर्मल कि भाई पल्स, बीपी, ऑक्सीजन, पेशाब ठीक से बन रहा है, इतनी चीजें बेसिक हैं। तो फर्स्ट हमारा ये रहता है कि इसको स्टेबलाइज करें। इसको
0: आप लोग बहुत टेंशन के दौरान काम करते हैं, क्योंकि आईसीयू का मतलब है कि बहुत पैनिक में।
1: वो हमको ट्रेनिंग दी जाती है कि पैनिक नहीं होना है,
0: मरीज और उसके साथी भले पैनिक हो,
1: क्योंकि उस स्थिति में फिर आपका दिमाग नहीं काम करता है।
0: जी,
1: तो स्ट्रेसफुल कंडीशन होती, पैनिक से हम लोग नहीं मतलब बचते हैं कि भाई, क्योंकि अभी हमको हमारे पास टारगेट सामने है कि भाई इसकी जान बचानी है। जितना हमने सीखा है, जितना हमने पढ़ा है, उसका सही उपयोग करके इस आदमी को इस कंडीशन से बाहर निकालना है। फिर हमारी एक विशेषज्ञ की टीम होती है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे किडनी का है तो किडनी के स्पेशलिस्ट को, ब्रेन का है तो ब्रेन के स्पेशलिस्ट को, और फिर हम एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करते हैं कि स्टेबलाइज करते हुए इसकी वजह निकालनी, क्यों इस कंडीशन में पहुंचा। ट्रीट द कॉज हर का रहता है कि भाई इन्फेक्शन हुआ तो कहां से आ रहा है, यूरिन से आ रहा है, ब्लड से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, वो पता लगाना, फिर अकॉर्डिंग टू दैट उसको ट्रीट करना। यही बेसिकली इंटेंसिव केयर ही होता है कि आप पहले तो उसको स्टेबलाइज किया, उसके ऑक्सीजन को, उसके ब्लड प्रेशर को, उसके हार्ट रेट को, फिर पता लगाया एंजियोग्राफी करके भाई किस जगह से क्लॉट है, उसको वहां से दूर किया। उसमें भी स्टेजिंग होती है, वो तो बात की चीजें हैं, बट रिवार्डिंग भी बहुत है सर। जब आपका मरीज अच्छा होता है तो उससे अच्छा आपको कुछ, फिर वो पैसा दे ना दे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो जब हंस के उसके परिवार वाले बोलते हैं ना, सर आपने बचा लिया
0: जी,
1: तो उससे बड़ा रिवार्ड हम डॉक्टर्स के लिए कुछ नहीं होता है।
0: और
1: बहुत अच्छा लगता है ऐसा, हमेशा स्ट्रेसफुल नहीं, जब वो रिजल्ट मिलता है ना उसका, तो वो बहुत अच्छा भी लगता है।
0: बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। आपने अलग अलग शहरों के छोटे बड़े हॉस्पिटल्स में काम किया है और एक बड़ा अनुभव आपके साथ है, तो अपने करियर की कुछ दिलचस्प घटनाएं हमारे साथ शेयर कीजिए जो इस वक्त आपको याद आ रही हो।
1: 26/11 हुआ था, बहुत दुखद हादसा था, और हम लोग उस वक्त बॉम्बे हॉस्पिटल में थे।
0: ओहो, बिल्कुल, आप उसी इलाके में थे।
1: उसी में थे, तो इंटेंसिव केयर में हमारे कई कमांडोज भी आए थे। तो एक कमांडो ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, उनके सीने में बहुत सी गोलियां लग गई थी। तो हमने उनसे जब छुट्टी हो रही थी तो हमने पूछा, सर कैसा रहा? कहा, सर उतना दर्द तो गोली से नहीं हो रहा जितना दर्द आप जब गोली निकाल रहे थे तब हो रहा था। हमने कहा, सर आप गोली से नहीं, सर उसके लिए हम यूज्ड टू हैं। जैसा आपने पूछा पैनिक ही का, वो जब सामने से तो हमारा डर खत्म हो जाता है। वो लगता है इसको टारगेट है, ये हमारे देश का दुश्मन है, इसको खत्म करना है, तो उस वक्त हमको दर्द नहीं महसूस होता। यहाँ पे फिर हम नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग घटना थी। वो मुझे लगा कि यार, हमने पूछा कि सर आप गोलियों से नहीं डरे, आप ये जरा टांकों से डर रहे हैं? क्या डर नहीं रहे, लेकिन आपको बड़ा मजेदार एक वाक्य सुनाता हूँ।
0: जी,
1: मैं इंटेंसिव केयर में नाइट ड्यूटी में था और रवि साहब एडमिट थे,
0: संगीतकार रवि की।
1: हाँ हाँ, जो फेमस म्यूजिक डायरेक्टर।
0: जी जी,
1: तो रात का वक्त था और मैं उस वक्त अपने ट्रेनिंग में था, तो 1-2 बजे का वक्त था, तो मैं नोट्स डाल रहा था, और जैसे इंडियन लोग थोड़ा हमिंग करते हैं ना, ला ला ला ला ला ला, ऐसा करके मैं डाला। तो रवि साहब बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये गाना आपको बहुत पसंद है। कहा, हाँ बहुत अच्छा, क्या कंपोजिशन सर, पहले के कंपोजर क्या कंपोज करते थे, आपको पता है किसने कंपोज किया है? हमने कहा, हाँ एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे रवि साहब, हैं मतलब रवि साहब, आपने मेरा नाम पढ़ा क्या बोर्ड पे, नाम लिखा होता? हमने देखा, देखा हाँ आपका भी सेम नाम है। मैं सेम नहीं, मैं ही रवि साहब हूँ।
0: अरे क्या बात
1: तो बड़ा अच्छा लगा उनसे, और बहुत सी बातें बताई उन्होंने, बड़े बड़े जो हम तो सिर्फ जो सपनों में सोचते थे, जब रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, हमने पूछा जब ठीक हो गए तो कभी फंक्शन वगैरह में आते थे, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो बड़े जिंदा दिल इंसान थे,
0: कमाल के इंसान। मेरा भी उनसे एक नाता रहा है। और
1: अच्छा अच्छा,
0: वो बहुत दिलचस्प किस्से सुनाते
1: थे। हाँ।
0: उनके पास एक से बढ़ के एक किस्से थे और खुद गाने भी गाया करते थे।
1: अरे अरे, बहुत कमाल के कलाकार।
0: अभी जब गाने की बारी आएगी तो रवि जी का गाना सुना जाएगा। अभी अपनी बातों को आगे बढ़ाया जाए। आपने बताया कि एक कमांडो आए थे।

0: जब कोई बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में घायल व्यक्ति, एक्सीडेंट विक्टिम्स हों या बर्न विक्टिम्स हों, इस तरह के लोग आते हैं जो बहुत विभत्स स्थिति में भी होते हैं,
1: अपने
0: उनको कैसे संभालते हैं?
1: मैं सफदरजंग के बर्न्स यूनिट में था जब सरोजनी नगर बम कांड हुआ था।
0: ओ ओ ओ,
1: वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हादसा था वो।
0: जी।
1: और उस वक्त हमको याद है कि हम ड्यूटी खत्म करके, हमारे 3 या 4 बजे के करीब हम निकल गए थे एक दिल्ली में, हम ड्यूटी खत्म करके अपना कनॉट प्लेस में थोड़ा घूमने घामने गए थे। फिर अचानक फोन बजने लगा, हमारे सर का फोन, तुम लोग कहाँ हो? तो उस वक्त हमको ये पता नहीं था कि ये बम विस्फोट हो चुका है। अंदर से कहा हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, कुछ तो ऐसा हुआ होगा तभी सर कॉल कर रहे हैं। मैं, क्या हो गया सर? बोले, जहां भी हो, जितने भी दोस्त हो, सब भाग के सफदरजंग आ जाओ, जो जहां भी है, जो सबको फोन करो कि बहुत डॉक्टर्स की जरूरत है इस वक्त। फिर समझ में आया कि भाई बहुत बड़ा बम कांड हुआ है। मेरे ख्याल से, मुझे भी याद नहीं है, बट 200-300 लोग की डेथ हुई थी। और उस वक्त जब बॉडी सर आ रही थी ना, तो मतलब हमारा एक दोस्त था, वो देख नहीं पाया, डॉक्टर होके वो वहां पे फेंट कर गया।
0: ओहो।
1: और किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, मतलब वो इतना विभत्स, वो मेरे, मतलब आज भी जब मुझे याद करता हूं तो मेरे से रोंगटे खड़े आती है यार, वो क्या सीन था, मतलब कैसे कैसे करके। और बट ये हमारे बड़ी अच्छी चीज है हिंदुस्तान में कि सब लोग, आसपास के सभी लोग, सभी हॉस्पिटल के बगल में एम्स था और मौलाना आजाद, जो भी डॉक्टर जब भी सुना, जिधर से आया वो गाड़ी मोड़ के आ गया। और उस वक्त वो सीन अभी भी नहीं उतरता, कभी भी हम याद करते हैं ना कि वो जो हादसा जो हुआ था, वो बम विस्फोट, वो अभी भी मेरे दिमाग से नहीं उतरता है।
0: ऐसे मुश्किल हालात में भी डॉक्टर जो है अपना संतुलन बना के और लोगों को बचाने का काम करते रहते हैं।
1: ड्यूटी है सर। लेकिन हाँ, अच्छा लगता है, मैंने बताया, जब हमारा मरीज अच्छा होके जाता है, जब कोई ठीक हो जाता है, तो बहुत रिवार्डिंग है सर, उससे बड़ा इनाम और क्या मिलेगा।
0: बिल्कुल। आपने ये वादा किया था कि रवि जी से जुड़ी घटना सुनाने के बाद कि अब उनका कोई गाना सुना जाएगा, तो कौन सा गाना सुना जाए?
1: ऐ मेरे जोहरा जो भी सुनते हैं सर।

0: डॉक्टर संदीप वर्मा, अब मुंबई में आप अलग अलग हॉस्पिटल से जुड़े रहे हैं और आईसीयू यूनिट में लगातार काम कर रहे हैं। ये जो नया दौर है, इसने आईसीयू यूनिट को किस तरह से बदला है और आपके काम करने की प्रणाली को किस तरह से बदला है?
1: टेक्नोलॉजी का तो सर बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है, बहुत बहुत फायदा हुआ है। अब काफी एडवांस हो गए हैं हम लोग, मतलब हर फील्ड में, रेडियोलॉजी हो, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो, वेंटिलेटर्स की क्वालिटी हो, और मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है हर फील्ड में। इवन हम स्ट्रोक का हम वाकया आपको बताएं कि एक हम जब बॉम्बे हॉस्पिटल में थे, एक बैंक के कर्मचारी थे और वो कुछ साइन कर रहे थे और अचानक वो हाथ से पेन गिर गया उनके, तो उनको लगा कि शायद कुछ हुआ होगा। हर आदमी एक पहली बार में कैसे सोच लेगा कि वो स्ट्रोक है, लेकिन वो बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे ही था वो कार्यालय उनका। तुरंत वो लेके आया और उनका वो पूरा राइट साइड पूरा काम नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने बताया कि जो वक्त की कीमत,
0: बिल्कुल,
1: तो सही समय पे वो आ गए सर और बिल्कुल 100% रिकवर हो गए। अगर वो सही समय पे नहीं आते सर तो वो हाथ उनका हमेशा के लिए चला जाता
0: जी।
1: तो ये है वक्त, फिल्म की बात की आपने, ये है वक्त पे सही समय पे सही जगह पहुंचने का ना, ये है।
0: ये जो क्रिटिकल टाइम है किसी भी गंभीर बीमारी के मरीज को बचाने के लिए, जो एक शुरू के 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का ये जो वक्त होता है, पूरे देश में आम जनता ये कार्यक्रम सुन रही है। एक इंटेंसिव केयर यूनिट से जुड़े हुए डॉक्टर के तौर पर आप हमें ये समझाएं कि किस तरह से बिना पैनिक हुए फौरन भागना चाहिए और किस तरह से मरीज की मदद करनी चाहिए।
1: आज के सिनेरियो में एक ब्रेन का और एक हार्ट का दो चीज में आपको बहुत, क्योंकि इसमें अगर वक्त आपने जाहिर कर दिया तो काफी देर हो जाता है। ब्रेन का तो मैंने जैसे जिक्र किया कि कोई भी कहीं भी आपको कमजोरी लग रही हो, बात करने में जुबान लड़खड़ा रही हो आपकी, स्लरिंग जिसको बोलते हैं, विजन में दिखने में कोई दिक्कत हो रही है, ये सब लक्षण को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें सर।
0: मरीज तो ठीक है, लेकिन जो मरीज के साथ में
1: साथ वाले वो उनको
0: पास पड़ोस के लोग हैं।
1: हाँ हाँ, और ये जो हमारे यहाँ गुडविल में ही रहता है, जो अपनी पहले थेरेपी, फिर दादा दादी नानी की थेरेपी, फिर बगल वाले दुकानदार की थेरेपी, फिर फोन पे कहीं और से थेरेपी, इसमें जो हम 3.5-4 घंटे निकाल देते हैं जो क्रिटिकल टाइम होता है बचाने का, तो वो बिल्कुल ना करें सर।
0: तुरंत पहले तुरंत मेडिकल हेल्प
1: आप
0: के लिए दौड़ें,
1: जिस चीज के एक्सपर्ट के पास जाएं, इसके लिए बनाया गया। और मैं तो जैसे पहले भी बोला आपके इस इंटरव्यू में कि अब गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत बढ़ोतरी कर दी है, आप कहीं भी तुरंत संपर्क में आ सकते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप है, मोबाइल है, कहीं आप डॉक्टर को फोन करें
0: बजाय इसके कि नुस्खे अपनाने
1: हाँ,
0: की बजाय,
1: वो ठीक है, वो थोड़ा सा छिल गया, थोड़ा सा कट गया, थोड़ा सा पेट खराब हो गया, उसके लिए ठीक है, लेकिन जो इस तरह के वाइटल साइन है, चेस्ट पेन हो रहा है, पसीना हो रहा है,
0: झाग वाग निकल रहा है,
1: हाँ वो तो मिर्गी या सीजर या जो भी लोग समझ, वो उसमें टाइम नहीं खराब करना है सर। और कभी आप डिजीज वाइज इमरजेंसी में कभी आप रखिएगा कि भाई ब्रेन के लिए अलग, तो मैं आपको डाटा दे दूंगा कि भाई इस वक्त ये, मोटा मोटा समझाने के लिए जैसे मैंने बोला कि भाई
0: मान लीजिए कि किसी मरीज को, किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ है, तो अमूमन तो पता नहीं चलता है ना कि ये हार्ट अटैक है, तो ये जो आजू बाजू के लोग हैं, जो उसके पास मौजूद लोग हैं, मान लीजिए कोई सड़क पर ही जा रहा है और ऐसी कोई परिस्थिति होती, तो कैसे पहचाने कि ये हार्ट अटैक हो सकता है और फौरन ले जाए?
1: देखिए, जो सबको पता है चेस्ट पेन, लेकिन सिर्फ चेस्ट पेन ही नहीं, जॉ पेन, ईयर पेन, पसीना आना, और खासकर डायबिटिक पेशेंट इस बात का ध्यान रखें, जो क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना सर, उनको वो पेन वो टिपिकल महसूस नहीं होता है।
0: ओ,
1: जो भी डायबिटीज से सफर कर रहा है ना, तो वो बीच बीच में अपनी जांच करते रहे, अगर उसको पसीना आ रहा है, डिस्कम्फर्ट लग रहा है, लेकिन उसको टिपिकल हो सकता है डायबिटीज पेशेंट को वो टिपिकल चेस्ट पेन ना हो जो कि नॉन डायबिटिक पेशेंट को होता है, तो वो थोड़ा एक ट्रिकी पॉइंट है जो भी डायबिटीज सफर कर रहे हैं लोग उनके लिए। लेकिन कोई भी ऐसी जो चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट पेन, जॉ पेन, पसीना आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, ये सब चीजों को कभी टिंगलिंग हाथ से बाएं हाथ में, बट आप राइट साइड पेन को भी इग्नोर ना करें। हमको पता नहीं कि लेफ्ट का ही पेन हार्ट का है, वो कभी कभी बैक पेन भी हार्ट का होता है, और यूजुअली अगर आप टिपिकल देखेंगे तो पेशेंट पेन जो है एक जगह लोकलाइज नहीं होता, वो रेडिएट कर रहा होता है। ऐसा नहीं, वो नहीं हो सकता, हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं रह गया अभी, अभी बीमारियां काफी अपना स्वरूप बदल के भी आ रही हैं, लेकिन मोटा मोटा है कि पेन अगर रेडिएट हो रहा है जॉ की तरफ, पीछे की तरफ, तो ये अलार्मिंग साइन है, हार्ट से जुड़ी ये अलार्मिंग साइन। उसमें और भी बहुत सी बीमारियां होती हैं
0: जी,
1: उसको कभी लेंगे, लेकिन इस तरह की चीज़ अलार्मिंग है, आपको तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र एक चिकित्सक, जो भी डॉक्टर रहे जो इससे जुड़ा हुआ है, उसे संपर्क करना चाहिए।
0: स्ट्रोक से जुड़ी हुई क्या सिग्नल्स होते हैं?
1: जैसे कोई भी वीकनेस, कोई भी हाथ पैर कहीं भी वीकनेस महसूस हो रही है, कमजोरी हो रही है, आप किसी चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे हैं, आपका अगर चेहरे की सिमेट्री आपको जो है चेंज लग रही है, फेशियल डिविएशन, कोई एंगल माउथ
0: टेढ़ा मेढ़ा हो रहा
1: टेढ़ा, और आप जो आपने पहले जिस आदमी को देखा है और आपने नोटिस किया कि यार उसका चेहरे में कुछ तो
0: विरूपता
1: मतलब
0: आ रही,
1: विरूपता आ रही है, सिमेट्री कहीं भी जाती है ना सर,
0: तुरंत समझ जाना चाहिए।
1: हाँ, कहीं भी सिमेट्री जो नेचर के जो बनी हुई सिमेट्री है वो अगर डिस्टॉर्ट हो रही है, डिविएट हो रहा है, आंख ऊपर की तरफ जा रही है, आपको दिखने में दिक्कत हो रही है, ब्लरिंग हो रहा है, दो चीज दिख रही है, ये सब जो भी साइन है इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है सर, शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचना है
0: इन
1: डॉक्टर के
0: दोनों
1: पास।
0: परिस्थितियों में कितना वक्त होता है मरीज के पास, कितनी जल्दी पहुंचाना चाहिए?
1: देखिए जितनी जल्दी पहुंच जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आप टाइम खराब करते हैं, फिर फोन किया, उससे बात किया, उसने बताया फलाने को हुआ था, तो ऐसा नहीं, नहीं बाबा आसपास पहले वहां पहुंच जाए आप एक्सपर्ट के पास पहुंच जाइए, वो आपको गाइड करेगा ना, वो किसी भी रास्ता भूल जाते हैं, अगर पुलिस वाला कोई खड़ा है सिग्नल, वो सबसे अच्छा बताता है ना हमको, आप अनजान शहर में हैं और एक पुलिस वाला जो आप रास्ता भटक गए उससे पूछिए, आम आदमी डॉक्टर तो नहीं होता है, आप साइन सिम्टम आपको जैसे ही लगे कि बाबा ये कुछ तो मेरे साथ एबनॉर्मल है, ऐसा पहले नहीं होता, उस पर मत डालिए कि मैं यार आज खाना भूल गया, आज नींद नहीं हुई, उस पर मत, ठीक है भगवान करे वही हो, मैं भी चाहता हूँ, डॉक्टर भी चाहते हैं भगवान ये नॉर्मल ही हो, लेकिन 99 में एक भी एबनॉर्मल है तो आपके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना सर।
0: बिल्कुल, बहुत ही जरूरी बातें डॉक्टर साहब आपने बताई हैं, और यहां एक गाने की जगह बनाते हैं
1: हाँ हाँ बिल्कुल,
0: तो कौन सा गाना होगा?
1: यहाँ पे हम रफी साहब का एक गाना सुनेंगे,
0: ठीक है,
1: आज मौसम बड़ा बेईमान,
0: क्या बात है, आप गुनगुनाते हैं तो इस बार फिर मैं चाहूंगा कि आप गुनगुनाएं।

0: डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें मेडिकल से जुड़ी हुई हुई। एक बहुत ही दिलचस्प बात जो मुझे पता है और वो ये है कि हनुमान अंश फिल्म के जो निर्देशक हैं वो आपके साथ मेडिकल कॉलेज में थे।
1: हाँ हाँ डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी हमारा दोस्त भी है, हमारा जूनियर भी है, और उसके लिए बहुत खुशी है। उस बच्चे ने बहुत ही मेहनत किया है और बहुत शानदार उसने ये फिल्म बनाई है। और लोग बोलते हैं कि सफलता सफलता उसने जो, आज हम उसकी सफलता देख रहे हैं, उसने जो 20 साल मेहनत की है उसका ईश्वर ने उसको रिवॉर्ड दिया है। और बातें मुलाकात होती है, बट आपके माध्यम से भी हम उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, बहुत बेहतरीन काम किया है उसने।
0: क्या बात है।
1: और इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे मुंबई लाने वाला विशाल ही था।
0: अच्छा,
1: मैं दिल्ली में था और मज़ा नहीं आ रहा था काम करने में, तो कहा चलो बॉस मुंबई चलते हैं, मैं भी गा फिर लेता हूँ। वो मजाक मिला, चलो आपको कुमार सानू बना दूंगा यार, आप चलो तो मैं तो कंपोजर हूँ ही
0: अच्छा, अब वो तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए थे।
1: हाँ
0: जी
1: हाँ
0: जी जी
1: और वो गाने लिखता भी था, कॉलेज में भी बहुत अच्छा, हमारा एक छोटा सा म्यूजिकल बैंड टाइप का था।
0: अच्छा,
1: तो पहले वो हर जैसे यंग बच्चे के होते ना, रॉक स्टार बनना है बस,
0: हाँ।
1: गिटार वगैरह बजाना, गाने लिखना। और वहाँ से वो क्रिएटिविटी तो थी, लिखता भी था, गाने भी बनाता था, स्केचिंग भी बनाता था। और हम सभी बहुत खुश हैं उसके लिए कि आज उसको वो मुकाम मिला है जिसको वो जो डिजर्व करता है।
0: क्या बात है। तो मतलब एक डॉक्टर साहब से बातचीत करते हुए दूसरे डॉक्टर साहब का जिक्र निकल आया
1: क्या
0: क्या बात है। अच्छा, इंटेंसिव केयर यूनिट के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। एक चीज जो मुझे लगता है कि शायद इस पर बात करनी चाहिए, और वो आईसीयू में जो मरीज भर्ती होते हैं, जाहिर है कि परिवार जो है वो बहुत पैनिक होता है, बहुत चिंता में होता है, पर आईसीयू एक खास तरह के बर्ताव की उम्मीद करता है। वहां का एक खास अनुशासन और संयम होना चाहिए जो अमूमन देखने को नहीं मिलता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे?
1: मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए दिक्कत क्या होती है कि वो जो जोन होता है उसको सबसे हमारा रहना कि उसको इन्फेक्शन फ्री रखना चाहते हैं अक्सर। मैं आपका पॉइंट समझा कि रिलेटिव्स को मिलने नहीं दिया गया, बात सही है कि कोई स्ट्रेस में है अंदर भी और आईसीयू के बाहर भी, बट वो फॉर द टाइम बीइंग ना हमको उसको शांत रखना है, उसको स्ट्रेस फ्री रखना है, और सब उससे भी ज़्यादा हमको इन्फेक्शन फ्री रखना है।
0: बिल्कुल, सबसे
1: तो
0: बड़ी
1: सबसे
0: जिम्मेदारी है।
1: बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम बोल भी देते हैं लोग यार सेफ्टी फर्स्ट, अगर छोटा बच्चा आग छूना चाहे तो माँ उसको छूने नहीं देती है ना, वो बच्चा रोएगा, बट ठीक है हमको पता है छू देगा तो उसका नुकसान है। वैसे ही कुछ हमारा रहता है कि

0: भाई हम मानते हैं आपको बुरा लग रहा है कि आपको मिलने नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप उस कंडीशन, हमारी प्रायोरिटी है वो मरीज की सेफ्टी है,
1: उसकी
0: हम
1: जान
0: उन
1: बचाना
0: उनकी
1: है।
0: जान बचाना है। आपको देखिए वो इमोशनल होगा या आप उसको देखिए इमोशनल होंगे, आपके सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, उसके लिए भी।

0: चाहिए हाँ, कि डॉक्टर्स हाँ, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं
1: और
0: आईसीयू में खास तरह का बर्ताव किया जाए, जैसा डॉक्टर्स कह रहे हैं वैसा मान के बाहर रुका जाए
1: और
0: इंतजार किया जाए।
1: डॉक्टर कम्युनिटी से मैं ये भी कहूंगा भाई थोड़ा पोलाइट रहते हैं, पोलाइट कभी कभी देखिए हम इंसान ही हैं।
0: जी जी
1: कभी कभी हो सकता है कि हमने जो है बहुत जो उम्मीद थी उनसे जितने प्यार से बात करना चाहिए शायद मैंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से बात किया, तो वो कभी कभी हो जाता है क्योंकि हम लोग भी बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो कभी कभी हो जाता है कि जितने प्यार से वो उम्मीद कर रहे थे कि डॉक्टर बोलेंगे शायद उतने प्यार से नहीं बोला मैंने, लेकिन इंटेंशन कभी हमारा वो नहीं होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर संदीप वर्मा, बहुत दिलचस्प बातें हुई और आपने कुछ बहुत जरूरी मुद्दे हमारे श्रोताओं को समझाए आज की इस बातचीत में। विविध भारती के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम सबको मौका देने के लिए, और एक डॉक्टर की तरफ से आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें,
0: शुक्रिया।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संदीप वर्मा से यूनुस खान की ये बातचीत। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
4: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
4: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। इस समय सुबह के 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग और आज इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ मैं हूँ नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। श्रोताओं, कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती बल्कि सीधे दिल में उतर जाती हैं।

किशोर कुमार की आवाज भी ऐसी ही थी, जिसमें शरारत थी, शोक ही थी, रोमांस था और जुदाई का दर्द भी। वे गाते थे तो लगता था जैसे हर इंसान की अपनी कहानी को सुर मिल गए हो, है ना? आज उनकी पुण्यतिथि पर हम याद कर रहे हैं उस बेमिसाल फनकार को, जिसने अपनी आवाज से हिंदी सिनेमा के संगीत को एक अलग पहचान दी। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।

शिवांग माथुर और श्रद्धा श्री की आवाजों में अभी आपने सुना ये गरबा गीत। इसे लिखा ऋतिका ब्रह्म भट्ट ने और संगीत था शिवांग माथुर का।

ये गजल अभी आपने सुनी उर्दू मॉडर्न इस एल्बम से। अशोक खोसला की आवाज थी और इसे लिखा डॉक्टर राही मासूम रजा ने। जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया।

0: कभी तो नजर मिलाओ इस एल्बम का गीत अभी आपने सुना अदनान सामी और आशा भोसले की आवाजों में। रियाज उर रहमान सागर ने इसे लिखा, अदनान सामी का संगीत।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यहाँ।

0: अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में पंडित भरत व्यास का लिखा ये भजन, जिसे संगीतबद्ध किया है बाबू सिंह ने।

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में आपने सुना चांद का टुकड़ा, इस फिल्म का ये गीत। इसे संगीतबद्ध किया महेश किशोर ने। साथियों, आपको बता दें कि आज के यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सुनेंगे किशोर कुमार की अलग अलग अदाओं में गायकी के कुछ गीत। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे यानी कि विविध भारती के साथ।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, इस एल्बम का गीत सुनिए फाल्गुनी पाठक की आवाजों में। आवाज में गीत और संगीत ललित सेन का।

0: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं जय बजरंगबली इस एल्बम का ये भजन शबाब सबरी की आवाज। मनीष व्यास ने इसे लिखा है, अभिजीत गढ़वे का संगीत।

इस भजन के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने, संगीत है ललित का और एल्बम का नाम याद पिया की आने लगी।

जिंदगी की जुबान इस एल्बम से अभी आपने सुनी ये गजल, आवाज पद्मश्री पद्मजा फेनानी जोगलेकर की। संदीप गुप्ते ने इसे लिखा और महेश खानोलकर ने इसकी धुन बनाई। इसी के साथ आज के रंग तरंग कार्यक्रम से अब दीजिए नेहा अगरकर देसाई को इजाजत। नमस्कार। रंग

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आए ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि भारत की क्षमताएं अन्य देशों के लिए भी अवसरों के नए द्वार खोलें।
1: इनोवेशन की पावर भी ऐसी ही है, एक आइडिया को प्रोडक्ट में बदलना, एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलना, ये अपने आप में एक बड़ी क्षमता है। लेकिन जब यह अवसर समाज के अधिक से अधिक लोगों को मिलता तो शक्ति का संतुलन बनता है और इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भारत की स्टार्टअप जर्नी इसी बदलाव का उदाहरण है।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सहायता की है।
1: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है।

0: सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो। और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: श्री मोदी ने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2000 के बाद से स्टार्टअप के लिए भारत में काफी विस्तार हुआ है और स्टार्टअप्स की संख्या 2,50,000 को पार कर गई है। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगे। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया है। ये लोग राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। पूर्वी दिल्ली में 3 नए प्रदर्शन स्थल रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान सूचित किए गए हैं। नेपाल में आई बाढ़ के कारण मध्य क्षेत्र में ट्रैकिंग और पुल ढहने से विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक विदेशी ट्रैकर्स फंस गए हैं। काठमांडू से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में गोरखा जिले में तड़के हुए भूस्खलन के बाद आज अधिकारियों ने 12 विदेशियों सहित 321 लोगों को सुरक्षित बचाया। सेना ने कहा है कि नदी का जलस्तर कम होने के बावजूद बचाव अभियान कल भी जारी रहेगा। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत भी आज अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में आज 0.6% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 433 अंक की वृद्धि के साथ 72,357 पर था, जबकि निफ्टी 22,490 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल, स्वीकारे नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार।

तो साथियों, आप समझ ही गए होंगे इस धुन को सुनकर कि आज हम क्या बातचीत करने वाले हैं। साथियों, किशोर कुमार एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और दिल में संगीत की लहरें उठने लगती हैं। कभी उनकी आवाज हमें हंसाती है, कभी प्यार के खूबसूरत एहसासों में ले जाती है, तो कभी आंखें नम कर देती है और कभी ऐसा सुकून भी देती है जैसे भागदौड़ की जिंदगी में कुछ पल ठहरने का बहाना मिल गया हो। आज का ये सफर किशोरदा के इन्हीं अलग अलग रंगों के नाम है। तो आइए सुरों के इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं नमक हलाल फिल्म का ये गीत, आवाज किशोर कुमार और साथियों की। इस गीत को लिखा है प्रकाश मेहरा ने और बप्पी लाहिड़ी का संगीत।

Mm-hmm.

हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं यादों के महफिल कार्यक्रम में मस्ती भरे गीतों के साथ। साथियों, किशोरदा की आवाज में एक ऐसी शरारत थी जो उदास चेहरे पर भी मुस्कान ले आए। उनके गानों में कभी बेफिक्री, कभी नटखटपन, तो कभी ऐसी मस्ती होती थी कि पैर अपने आप थिरकने लगे। तो चलिए जिंदगी की फिक्रों को कुछ देर किनारे रखकर माहौल को थोड़ा मस्ती भरा बनाते हैं और आइए सुनते हैं डॉन फिल्म का ये गीत, आवाज किशोर कुमार की, अनजान की रचना और धुन बनाई आनंद जी कल्याण जी ने।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे

0: किनारे वाला छोरा गंगा किनारे वाला।
1: कटी पतंग फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं, आवाज किशोर कुमार की। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: और आइए अब आपको सुनवाते हैं आराधना, इस फिल्म का गीत आवाज किशोर कुमार की, आनंद बख्शी के बोल हैं और सचिन देव बर्मन का संगीत।

0: रहना।
1: साथियों, प्यार के एहसास को शब्दों में बयां करना आसान नहीं, लेकिन किशोरदा ने अपनी आवाज से इसे बेहद खूबसूरत बना दिया। कभी पहली मोहब्बत की झिझक, कभी किसी का इंतजार, तो कभी दिल की अनकही बातें, उनके रोमांटिक गीत हर एहसास को अपना सा बना देते हैं।

0: की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: हर कहानी का अंत खुशियों से हो ये जरूरी नहीं। किशोरदा ने अपनी आवाज में बिछड़ने की कसक, अधूरी मोहब्बत और तन्हाई के दर्द को कुछ इस तरह पिरोया कि हर गीत दिल की कहानी लगने लगता है। आइए सुनते हैं ऐसे ही कुछ नगमे जो अनगहे जज्बातों को आवाज देते हैं।

अमर प्रेम इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज किशोर कुमार की, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, राहुल देव बर्मन का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं अमानुष फिल्म का गीत, आवाज एक बार फिर किशोर कुमार की। इंदिवर की रचना है ये और श्यामल मित्रा ने इसे संगीतबद्ध किया है।

आंधी फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गुलजार ने इसे शब्दबद्ध किया है और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं हैं, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर बस आंखें बंद करने और उनमें खो जाने का मन करता है। किशोरदा की आवाज में एक ऐसा अपनापन और ठहराव था जो मन की हलचल को धीमा कर देता है। तो आइए अब सुनते हैं ये ऐसा ही एक गीत जो दिल को सुकून और मन को राहत देता है। घर फिल्म का ये गीत है, आवाज किशोर कुमार की, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

तो साथियों, आज के इस संगीतमय सफर में हमने किशोर कुमार की आवाज के कई रंग महसूस किए। कहीं मस्ती थी, कहीं मोहब्बत, कहीं दर्द और कहीं दिल को छू लेने वाला सुकून। यही तो खासियत थी किशोरदा की, वे हर एहसास को अपना बना लेते थे और फिर उसे हमारे दिलों तक पहुंचा देते थे। उनकी आवाज आज हमारे बीच भले ही पहले की तरह मौजूद ना हो, लेकिन उनके गीत हमेशा हमारे साथ रहेंगे। किशोरदा को सुरों भरा नमन। और आज के इस कार्यक्रम से अब नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। स्वीकार करें नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। साथियों, आज का दिन हिंदी सिनेमा की दो अनमोल शख्सियतों की याद दिलाता है। आज अशोक कुमार जी की जयंती है, जिन्होंने अपने सहज अभिनय से भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी। वहीं किशोर कुमार जी की पुण्यतिथि हमें उनकी आवाज के उस जादू की याद दिलाती है जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। इन्हीं यादों के साथ आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफर की जो कभी पटरियों पर दौड़ता है तो कभी जिंदगी के रास्तों पर

0: चलता है। साथियों, इबारत आपने फेसबुक पर पढ़ ही ली होगी और हमारे सभी श्रोता साथी फेसबुक पर हमसे कमेंट्स द्वारा जुड़ भी गए होंगे। यदि कोई छूट गया है तो आइए उनके लिए एक बार इबारत फिर पढ़ देते हैं। कहते हैं जिंदगी भी एक रेलगाड़ी के सफर जैसी है, जहां कुछ लोग हमारे साथ चलते हैं, कुछ रास्ते में मिलते हैं और कुछ किसी स्टेशन पर उतर जाते
1: हैं। चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
2: आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति पर गृहमंत्री ने इस दिशा में सामूहिक संकल्प का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी आतंकी नेटवर्क को पनाह, भर्ती, प्रशिक्षण, धन या पड़ोसी देशों के विरुद्ध गतिविधियां चलाने के लिए क्षेत्र में कोई जगह न मिले। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से दो दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया है। ये लोग राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। पूर्वी दिल्ली में तीन नए प्रदर्शन स्थल रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान सूचित किए गए हैं। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत भी आज अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 554 अंक बढ़कर 72,479 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 176 अंक की वृद्धि के साथ 22,540 पर पहुंचा। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये दिन साहस, शांति और दिव्य शक्ति के प्रतीक देवी चंद्रघंटा को समर्पित है। उन्होंने सभी के लिए सुख, समृद्धि और सफलता की कामना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said the centre has embodied the principle of power to empower in its governance approach and work culture. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi, Mr. Modi said India's progress is rooted in collective growth and shared opportunities. Mr. Modi stated that digital power has opened up greater opportunities for India.
1: Bharat, mother of democracy hai. Bharat mein 100 se upar bhashaein hain. Kareeb 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं, 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
3: The Prime Minister said India's economic growth is taking place on a strong foundation amidst global uncertainty. He said the GDP growth stood at 7.8% in the first quarter of this financial year. Mr. Modi highlighted that India had lifted 25 crore people out of poverty over the past decade.
1: Power ke purpose par jo focus hai, yahi soch governance mein bhi zaruri hai. Sarkar ke paas authority hai. लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
3: India is hosting the first Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation, BIMSTEC Home Ministers meeting in New Delhi. This historic meeting highlights the collective commitment to combating terrorism, transnational organized crime, narcotics, radicalization, human trafficking, illicit financial flows, and cyber threats. Speaking on the occasion, Union Home Minister Amit Shah said, BIMSTEC has emerged as an important platform for regional integration, economic cooperation, and collective security. He said India has always been committed to peace and human welfare, guided by the principle of Vasudhaiva Kutumbakam. Mr. Shah reiterated that India respects the sovereignty and territorial integrity of all countries and believes in the peaceful resolution of disputes. Reaffirming India's policy of zero tolerance towards terrorism, the Home Minister called for a collective commitment to ensure that no terrorist network finds space within the region for shelter, recruitment, training, financing, or activities against neighboring countries. Principal Secretary to Prime Minister P.K. Mishra has said data collection and analysis are essential for evidence-based policy making, particularly in the era of artificial intelligence. Addressing the Ministry of Statistics and Programme Implementation Conclave at Bharat Mandapam in New Delhi today, Mr. Mishra said data would form the foundation of India's development journey. He added that India had undergone major transformation over the past decade, with significant progress in infrastructure, digital public services, financial inclusion and entrepreneurship. Canadian Foreign Minister Anita Anand will be on a two-day visit to India from today. During her visit, she will meet External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and Skill and Development and Entrepreneurship Minister Jayant Chaudhary tomorrow. Canada's High Commissioner to India, Christopher Kuta, said Canada is looking to strengthen bilateral trade with India through a proposed free trade agreement, greater investment and increased movement of people between the two countries. In Nepal, more than 100 foreign trekkers are stranded at various locations after flooding over the weekend swept away hiking trails and bridges in the country's central region. Authorities rescued 321 people, including 12 foreigners today, after a pre-dawn landslide in Gorkha district about 100 kilometers west of Kathmandu blocked the Budhi Gandaki River, triggering downstream flooding. Rescue and relief operations are underway. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.8% higher in the afternoon session today. Sensex climbed 554 points to 72,479 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को एमआरपी के 30% तक सीमित करने का लिया निर्णय। एसआईआर के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट मार्च पर भाजपा ने उठाया सवाल, कांग्रेस ने प्रदर्शन से किया इनकार। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सभी कर्मियों के सितंबर तक के लंबित मानदेय और प्रोत्साहन राशि का विलंब भुगतान का दिया निर्देश। राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद ने 53 कैदियों की समय पूर्व रिहाई का प्रस्ताव खारिज किया। कहा, रिहाई बाद दोबारा अपराध होने या कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर लिया निर्णय। और रांची में आयोजित अस्मिता वेटलिफ्टिंग सिटी टूर्नामेंट में महिला भारोत्तोलकों ने किया शानदार प्रदर्शन, अपने अपने वर्ग में जीता गोल्ड मेडल। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को एमआरपी के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी है। न्यायालय ने दवा क्षेत्र में दवाओं की कीमतों की व्यापक समीक्षा का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार उन कैंसर दवाओं की सूची अधिसूचित करेगी जिन पर लाभ की सीमा लागू होगी। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट मार्च को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का नेतृत्व

0: वक्त बिखर चुका है। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाना। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रदर्शन करना कहीं से भी उचित नहीं है।
1: संवैधानिक संस्था में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटना है, एक ही रास्ता है, महाभियोग लाइएगा और पार्लियामेंट में उनको इम्पीच करिएगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया याचिका सुनेंगे, आप SLP फाइल करिएगा, आप रिट पिटीशन फाइल करिएगा और आपके तरफ से कोई वकील जाएंगे केस लड़ने के लिए, तरह से धरना प्रदर्शन करके जो है सुप्रीम कोर्ट जाता है।
0: वहीं कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन नहीं था बल्कि देशवासियों का गुस्सा है और लोकतंत्र बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है।
2: कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये लोगों का आक्रोश है और हम एक लोकतंत्र बचाने के लिए इस प्रकार की चीजों पे हमको सड़क आना पड़ रहा है, जहाँ पे जनता सर्वोपरि है, ना उनकी बातें सुनती है ना उनकी जो आवाज है उनको कैसे वो दबा रही है।
0: स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सभी कर्मियों के सितंबर तक के लंबित मानदेय और प्रोत्साहन राशि का अविलंब भुगतान करने का निर्देश दिया है। कल आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने टीबी मरीजों की लंबित पोषण राशि, आउटसोर्स कर्मियों के भुगतान में तेजी लाने, HRIS से भुगतान और स्वास्थ्य बीमा मामलों के शीघ्र निपटारे का निर्देश दिया। साथ ही गढ़वा और जामताड़ा में आवंटित राशि से कम खर्च पर नाराजगी जताते हुए NHM के पुनर्गठन की प्रक्रिया 10 दिनों में पूरी करने को कहा। देवघर जिले के DDC पीयूष सिन्हा ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और अभियंताओं का वेतन रोकने तथा उनसे स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया है। समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कागजी कार्रवाई तक सीमित रहने की बजाय कार्यक्षेत्र में सक्रियता दिखाने और पेयजल आपूर्ति से जुड़ी योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने खराब जल मीनारों और हैंड पंपों की सूची 2 दिनों में कार्यालय में जमा करने को कहा है। दक्षिण पूर्व रेलवे में विकास कार्यों को लेकर झारखंड आने जाने वाली 4 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इसे लेकर 15 और 17 अक्टूबर को अलग अलग ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। इससे टाटानगर, हटिया, आसनसोल, खड़गपुर और आसपास के क्षेत्रों में यात्रा करने वाले यात्रियों पर असर पड़ेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। यह सफर जन सेवा से देश सेवा के अटूट संकल्प के साथ पूरा हुआ है। इसी सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण पर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण का यह समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज की विशेष श्रृंखला का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को नए भारत उम्मीदों की पूर्ति का सशक्त माध्यम बताया है।
3: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत की नई उम्मीदों की नई आवश्यकताओं की पूर्ति का एक सशक्त माध्यम है। इसके पीछे कड़ी मेहनत है। हर क्षेत्र, हर विद्या, हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है। अब हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से लागू करना है और ये काम हम सब मिलकर करेंगे।
0: पाकुड़ जिले में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को धरातल पर उतारने के लिए सरकारी शिक्षकों के स्कूलों को प्रशिक्षण देकर इस नीति के सफल क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। जिले के विद्यार्थी कहते हैं कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
4: नीति 2020 का सफल क्रियान्वयन करना सरकार और विश्वविद्यालयों की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर विकसित भारत के संकल्प को साकार करना है तो इस

0: दिशा में एनईपी 2020 के एक एक बिंदुओं का सफलता पूर्वक क्रियान्वयन आवश्यक है।
1: प्रत्येक स्कूल और कॉलेजों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण रोजगार पारक शिक्षा मिले। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी समान अवसर प्राप्त हो और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को सक्षम बनाए, आत्मनिर्भर बनाए और राष्ट्र के निर्माण में उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो।
2: झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद ने कुल 53 कैदियों की समय पूर्व रिहाई का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। जिन प्रमुख कैदियों की समय पूर्व रिहाई रद्द हुई है उनमें वासेपुर के फहीम खान, रांची के अनिल शर्मा और सुरेंद्र बंगाली उर्फ सुरेंद्र सिंह रोतोला शामिल हैं। सजा याफ्ता कैदियों की समय पूर्व रिहाई को लेकर राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद का फैसला राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर अहम है। जमशेदपुर में आगामी त्योहारों में लोगों के सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि जांच के दौरान खाद्य पदार्थों में गड़बड़ी मिलने या नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अविनाश किस्को और संजय कुमार ने बताया कि ठेले खोमचों से लेकर रेस्टोरों और होटलों तक जांच की जा रही है।
3: दुर्गा पूजा को देखते हुए विभागीय आदेशानुसार मिठाई, पनीर, मसाला आदि सभी की जांच हो रही है। हम लोग लगभग 14-15 सैंपल कलेक्ट किए हैं और जांच हेतु लैब को भेजा जाएगा।
4: कितना खाद्य प्रतिष्ठान है, कौन सा कलर इस्तेमाल करे, कितना दिन का ये लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करे, तेल इस्तेमाल करते हैं फ्राई होने के लिए और वो तेल जो फ्राई हो चुका होता है वो कितना दिन तक ये लोग इस्तेमाल करते हैं, पीसी मीटर बोलते हैं, जिसमें खासकर ये ध्यान दिया जाता है 25% से कम हो टोटल पोलर काउंट।
2: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,29,000 रुपए प्रति किलो है। और झारखंड वुशु एसोसिएशन के चेयरमैन चंचल भट्टाचार्य और डॉक्टर प्रसाद पासवान ने रांची में अस्मिता वेटलिफ्टिंग सिटी टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में महिला भारोत्तोलकों में परी कुमारी, कुसुम कुमारी, धनपति कुमारी, स्मृति बेग, अंजलि कुमारी और प्राची पांडे ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। मौके पर आचार्य कुलम के प्राचार्य सुभाष कुमार और भाजपा नेता अमित चरण ने विजेताओं को पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को एमआरपी के 30% तक सीमित करने का लिया निर्णय। एसआईआर के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट मार्च पर भाजपा ने उठाया सवाल, कांग्रेस ने प्रदर्शन से किया इनकार। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सभी कर्मियों के सितंबर तक के लंबित मानदेय और प्रोत्साहन राशि का अविलंब भुगतान का दिया निर्देश। राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद ने 53 कैदियों की समय पूर्व रिहाई का प्रस्ताव खारिज किया। कहा, रिहाई बाद दोबारा अपराध होने या कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर लिया निर्णय। और रांची में आयोजित अस्मिता वेटलिफ्टिंग सिटी टूर्नामेंट में महिला भारोत्तोलकों ने किया शानदार प्रदर्शन, अपने अपने वर्ग में जीता गोल्ड मेडल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: सफर कहाँ गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, लगता है ये सफर थोड़ा और लंबा होना चाहिए था। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला गीत आपको सुनवाते हैं शोले फिल्म से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत। और आपको बताना है इस शब्द में छुपा, क्षमा कीजिए, इस गीत में छुपा वो शब्द।

बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने, शब्द था स्टेशन, जो इस गीत में शामिल था और हमारी इबारत में भी। एक साथी ने लिखा है, यादगार सफर का आनंद लिया जब ट्रेन गुजर रही थी सुरंग से, वो भी सबसे लंबी, करीब 14 किलोमीटर लंबाई से गुजरना हुआ। अगस्त 2026 में जब वंदे भारत ट्रेन में श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से श्रीनगर स्टेशन की ओर वापसी में मेरी धर्मपत्नी और मैंने सफर किया था। बाबा अमरनाथ जी के पवित्र गुफा के दर्शन लिए, रास्ते में चेनाब नदी के ऊपर सबसे ऊंची ब्रिज से भी ट्रेन गुजर रही थी। कई सुरंगों और ब्रिजेस से ट्रेन गुजर रही थी जिनको देखकर हम भी आनंदित हो रहे थे। कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं श्रोताओं जो हमारी जहन में बस जाती हैं, हमें याद हो जाता है पल पल की कैसे गुजरा था और कितना खूबसूरत था। चलिए इस कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत।

अंदाज फिल्म का ये गीत था किशोर कुमार की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। साथियों, एक साथी लिख रहे हैं कि रेलगाड़ी का सफर बेहद रोमांचक, आरामदायक और यादगार अनुभव माना जाता है। खिड़की के पास बैठकर बाहर बदलते नजारे, खेत खलिहान, पहाड़, नदियां और छोटे छोटे स्टेशंस को देखना मन को सुकून देता है। जी हाँ, ये तो एक बड़ा ही खूबसूरत एहसास है जिसे जब तक खुद अनुभव ना किया जाए तब तक उसमें कुछ आनंद ही नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात लिखी है आपने। एक साथ ही लिखते हैं, जीवन को समझने के लिए बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एक रेलगाड़ी के सफर से बखूबी समझा जा सकता है। हम सभी इस संसार रूपी स्टेशन पर आते हैं, जीवन की गाड़ी में सवार होते हैं और अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलते हैं। ये यात्रा केवल एक दूरी तय करना नहीं बल्कि अनुभवों का एक विशाल संग्रह है। और आप सभी ने यह भी बिल्कुल सही पहचाना है, इस गीत में शब्द था सुहाना। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत पराई। शब्द रचना शैलेंद्र की, शंकर जयकिशन की धुन।

0: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
1: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
0: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहां रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: तो इस संदेश से पहले जो गीत आपने सुना उसमें शब्द था रोशनी। साथियों, एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली नेहा जी और सभी गुणी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। किशोर दा हमारे ही शहर खंडवा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। मुंबई में उनके निधन के बाद उनकी इच्छा अनुसार उन्हें खंडवा लाया गया था, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। अब ये तो कहना चाहिए कि एक ऐसा अवसर था जो आप उस शहर के थे और इसलिए इसका आप इसमें शामिल हो सकें, और बड़ी मुश्किल से कभी ऐसे अवसर मिलते हैं जहां हम किसी ऐसी महान हस्ती की यात्रा में शामिल हो पाते हैं। और किशोर कुमार जी के भी कुछ जो उनके साक्षात्कार हुए, उनकी बातों में हमें कई जगह पता चलता है कि उन्हें अपने शहर खंडवा से बेहद प्रेम था और उनकी हर बातों में ये बात झलकती थी कि वे वापस खंडवा आना चाहते थे। आइए अगले कमेंट की ओर बढ़ते हैं। अगला कमेंट हमें किया है एक साथी ने, लिखा है, मेरा सबसे लंबा सफर था जब बेटे की बारात लेकर कटक से अल्मोड़ा जाना था। राजधानी एक्सप्रेस से कटक से दिल्ली करीब 24 घंटा, फिर 12 घंटे बस द्वारा दिल्ली से अल्मोड़ा। हम 35 बाराती खूब मौज मस्ती करते गए और वापस उसी रास्ते आए। एक साथी ने लिखा है, नेहा जी, जिंदगी के इस सफर में मेरे बचपन से आज तक जो विश्वसनीय साथी रहा है वो है विविध भारती मुंबई, जिसके प्रोग्राम्स जो मैं रेडियो पर सुनते हुए अपने जीवन के सफर को सुरीला बनाता रहा हूं और आगे भी जितनी सांसें मिली हैं तब तक बनाता रहूंगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप सुनते रहिए विविध भारती, और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत तलाक फिल्म से। आशा भोसले और मन्ना डे की आवाजें, प्रदीप ने इसे लिखा है, श्री राम चंद्र का संगीत। शब्द आपको पहचानना है कौन सा है।

आप सभी ने शब्द बिल्कुल सही पहचाना है, ये शब्द था किरण। एक साथी लिख रहे हैं, जिंदगी का सफर एक खूबसूरत नदी की तरह है जो कई मोड़ों और उतार चढ़ावों से होकर गुजरती है। इस रास्ते में कई लोग लहरों की तरह मिलते हैं और कुछ यादें बनकर पीछे छूट जाते हैं। कभी मुश्किलें चट्टान बनकर सामने आती हैं तो कभी खुशियों के झरने सुकून देते हैं। हम अक्सर किनारे यानी कि मंजिल तक पहुँचने की जल्दी में बहते पानी के आनंद को भूल जाते हैं। मंजिल तो तय है लेकिन असली सुकून हर पल को मुस्कुराकर जीने और इस सफर में यादें बटोरने में है। आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत, आवाज एक बार फिर किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है परिचय, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

मुसाफिर शब्द आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना है। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानी।

0: सृजन की बातें साझा करेंगे, सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और एक साथी ने लिखा है, एक बार रेल से सफर के दौरान हमारे कोच में आग लग गई थी। बाहर से लोग चिल्ला रहे थे कि गेट खोलो। मेरे मामा जी जो मुझे लिवाने आए थे बोले सब अंदर आना चाहते हैं, चुपचाप सो जाओ। इतने में मुझे खिड़की के पास आग की लपटें दिखाई दी। मैंने दौड़कर गेट खोल दिया, सब सुरक्षित बच गए। पर आज भी याद है, आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, ये बात सुनकर तो हमें भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। लेकिन आपकी सूझबूझ ने उस घटना को टाल दिया कह सकते हैं, तो ये सूझबूझ कभी कभार बहुत जरूरी होती है। एक साथी ने लिखा है, मुझे तो रेलगाड़ी की यात्रा इतनी अच्छी लगती है कि मैं हवाई यात्रा को छोड़कर रेलगाड़ी की यात्रा करना पसंद करती हूँ। मेरे ऑफिस से मुझे बीकानेर से मुंबई तक का हवाई यात्रा का अवसर मिलता है, लेकिन मैं रेलगाड़ी से ही जाती हूँ, तो सब मेरे कलीग्स और मेरे परिवार वाले मेरी हंसी भी उड़ाते हैं कि हवाई यात्रा छोड़कर आप रेलगाड़ी में जाती हैं। रेलगाड़ी से खिड़की से झांक कर एक एक स्टेशन देखना, धरती से धरती तक का मिलन, धरती से आकाश का क्षितिज पर मिलन, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक साथी ने लिखा है, मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन से जब भोपाल की तरफ चलते हैं तो ट्रेन बहुत सारी सुरंगों और हरे भरे जंगलों के बीच से गुजरती है। वो जंगल की छटा बरसात के समय बहुत ही रोमांचक होती है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का गीत। किशोर कुमार की आवाज, साथ दिया है मोहम्मद रफी ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। पहचानिए शब्द।

याद शब्द आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना। एक साथ ही लिख रहे हैं, जिंदगी का सफर बहुत खूबसूरत है, इसमें कभी खुशी मिलती है तो कभी गम का सामना करना पड़ता है, कभी रास्ते आसान होते हैं तो कभी मुश्किलें हमारा हौसला परखती हैं, लेकिन यही उतार चढ़ाव जिंदगी को जीने का सही मतलब सिखाते हैं। एक साथ ही लिख रहे हैं, जिंदगी का ये सफर वाकई बहुत ही अजीब है, बंद मुट्ठी आए थे खुले हाथ जाना है, जो धन मान सम्मान कमाया वो छोड़कर एक दिन चले जाना है, न साथ लाए थे न साथ आएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, इसलिए हमें जीवन में हमेशा सेटिस्फाइड होना चाहिए, हमें हमेशा ये लगना चाहिए कि हमें जो मिला है वो काफी है, यानी कि जितना मिला जैसा मिला वो अच्छा है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है।

भी लिख रहे हैं, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, बस सुरीला सफर का भी थोड़ा सा सफर बाकी है, मगर हम सोच रहे हैं काश सुरीला सफर का सफर और बढ़ जाए। गीत बहुत सुंदर बज रहे हैं। तो दोस्तों, रेलगाड़ी की तरह जिंदगी का सफर भी चलता रहता है, कुछ यादें और कुछ लोग हमेशा साथ रह जाते हैं। आज किशोर दा और दादा मुनि को याद करते हुए इसी खूबसूरत सफर को यहीं विराम देते हैं। अब दीजिए आज्ञा नेहा अगरकर देसाई को इस कार्यक्रम से। नमस्कार।

0: hikers are stranded at various locations after flooding over the weekend swept away hiking trails and bridges in the country's central region. Authorities rescued 321 people, including 12 foreigners, today after a pre-dawn landslide in Gorkha district, about 100 kilometers west of Kathmandu. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over the Andaman and Nicobar Islands today. IMD said heavy rainfall and thunderstorm accompanied by hailstorm are also likely to prevail over Jammu and Kashmir and Ladakh till tomorrow. Indian opener Shefali Verma was named the ICC Women's Player of the Month winner for September 2026 following incredible title-winning outings in the Women's Asia Cup and the Asian Games with the bat and clutch contributions in high-stakes matches. On the other hand, Indian captain Shubman Gill was named ICC Men's Player of the Month for a record fifth time following his outstanding performance in the one-day international series against the West Indies. Denmark Open Badminton Tournament kicks off in Odense today. PV Sindhu will take on Yvonne Lee of Germany in the women's singles round of 32 match this evening, while Tanvi Sharma will be up against Natsuki Nadera of Japan. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India's economic growth is taking place on a strong foundation amidst global uncertainty, addresses Bloomberg New Economy Forum in New Delhi. Home Minister Amit Shah hails BIMSTEC as an important platform for regional integration, economic cooperation and collective security. UPI merchant discount rate on select person-to-merchant transactions to be implemented after Diwali. IMF raises India's GDP growth forecast to 7% for 2026-27. Canadian Foreign Minister Anita Anand to arrive on a two-day visit to India from today, and Shefali Verma and Shubman Gill named ICC Women's and Men's Player of the Month for September 2026. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच ₹2000 से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से दो दिन के भारत दौरे पर, और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है।
2: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है, और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है।
2: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना हो, क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।

0: श्री मोदी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही। उन्होंने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो। और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत के नवाचारों का काफी विस्तार हुआ है।
1: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के कृपया इसे फिर से सुन लें। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया।
2: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। यह एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी की समस्या मानवाधिकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
2: मानव तस्करी भी हमारे साझा सुरक्षा और मानव अधिकारों के समक्ष गंभीर चुनौती है। पीड़ितों की पहचान, बचाव, सहायता, पुनर्वसन और सुरक्षित वापसी में सहयोग हमारे सामूहिक प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहना चाहिए।
0: श्री शाह ने खुफिया जानकारी, कानून प्रवर्तन, वित्तीय निगरानी और सीमा प्रबंधन एजेंसियों के बीच त्वरित सहयोग और समन्वय की जरूरत पर बल दिया। श्री शाह ने आतंकवादियों को मिलने वाले धन और संगठित अपराध से निपटने में मनोनीत नोडल एजेंसियों के जरिए खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और बेहतर समन्वय पर भी बल दिया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रूपये से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPI ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए आज यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। IMF की प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अनुमानों में ये सुधार सुदृढ़ घरेलू मांग और मजबूत सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक वृद्धि को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2027 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर 7% रहने के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई मुक्त व्यापार समझौतों से वैश्विक आर्थिक गतिविधि को बल मिलेगा

0: और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी। भारत के कोस्टारिका के सैनजोस में स्थित नए रेजिडेंट मिशन ने कार्य करना शुरू कर दिया है। यह मध्य अमेरिका में अपने राजनयिक दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि मिशन भारत और कोस्टारिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मिशन आपसी राजनीतिक जुड़ाव को सुगम बनाएगा, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेगा। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से दो दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कोटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री तथा उद्योग और व्यापार मंत्री कारेल हावलेचक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति का और विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए आंकड़े एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
1: नई दिल्ली में भारत मंडपम में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक सम्मेलन में श्री मिश्रा ने कहा कि आंकड़े भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया ताकि आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया में एक रूपता लाई जा सके और समान परिभाषाओं तथा मानकों को अपनाया जा सके। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े इसीलिए भी आवश्यक हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण की प्रगति को मापा जा सके और एक समृद्ध, समावेशी, नवोन्मेषी और सतत राष्ट्र बनने की दिशा में देश की प्रगति का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम बता रहे हैं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को कैसे स्थापित किया गया है।
2: 2014 से केंद्र सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर भारत को एक नए राजनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार क्षेत्र में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में 70% से अधिक की भारी कमी आई है। सुरक्षा के माहौल में ये बड़ा सुधार बोडो, कार्बी और उल्फा गुटों सहित सशस्त्र समूहों के साथ हुए एक दर्जन से अधिक ऐतिहासिक शांति समझौतों का परिणाम है, जिसके चलते 10,000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को कई क्षेत्रों से हटाया गया है। इस सुरक्षित माहौल का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार ने क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश किया है। पीएम डिवाइन जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से 8 राज्यों में बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है, जिसमें हर मौसम के अनुकूल राजमार्गों, नए रेलवे नेटवर्क और हवाई अड्डे तक शामिल है। 2023 में अपने असम दौरे के दौरान श्री मोदी ने कहा था कि पूर्वोत्तर भारत देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक बनने की राह पर है।
3: असम में नॉर्थ इसमें सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। लंबे समय तक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपसा नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों में रहा है, लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आपसा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। बीते 8 सालों के दौरान नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में करीब 75% की कमी आई।
2: विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का यह समग्र दृष्टिकोण पूर्वोत्तर भारत को एक सीमांत इलाके से राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक विकास इंजन में तेजी से बदल रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली में 5 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन

0: चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन और महत्वपूर्ण मैचों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड 5वीं बार आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। डेनमार्क बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से ओडेंस में शुरू हो गया है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु पहले दौर के मुकाबले में जर्मनी की यवोन ली से मुकाबला करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और के श्रीकांत भी आज अपने अपने पहले दौर के मुकाबले खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 598 अंक बढ़कर 72,523 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 189 अंक की बढ़त के साथ 22,552 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है अपना सबसे पसंदीदा चैनल, मनोरंजन चैनल विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदा बहार नगमे। आइए कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं। किशोर कुमार की आवाज में फिल्म का नाम हाउस नंबर 44। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा है और सचिन देव बर्मन का संगीत।
2: बंसिया बजाई, अरे कैसी बंसिया बजाई, श्यामा सुध बिस राई, तरे रे तरे रे तरे रे रे,
3: भूल गया यार,
2: तरे रे तरे रे तरे रे रे,
4: ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा।

दुनिया के बोझ को सर से उतार दे, चिंता के भूत को बंदूक मार दे। क्यों भाई मैंने ठीक कहा, हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, अरे तब फिर मैंने ठीक कहा। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहरा।

0: बाटे के बूट पर है। दुनिया की गाड़ियाँ चलती है झूठ पर, दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर। क्यों भाई मैंने ठीक कहा?
1: हाँ हाँ तुमने ठीक कहा।
0: अरे तब फिर मैंने ठीक कहा, ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में।

0: ना फजूल है, जिंदगी उसी की है जो कि डैम फूल है। हाँ, दुनिया के फेर में पढ़ना फजूल है, जिंदगी उसी की है जो कि डैम फूल है। क्यों भाई मैंने ठीक कहा?
1: तुमने बिल्कुल ठीक कहा।
0: ऊंचे

अभी आपने ये गीत सुना फिल्म उड़न खटोला से, आवाज लता मंगेशकर की थी। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में नई दिल्ली फिल्म।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: यह ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री 420। इस फिल्म का गीत आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और मुकेश की। शैलेंद्र ने इस गीत को रचा है और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: बांगाली छोकरा करू प्यार को
1: नमस्ते। 2:55 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। जमशेदपुर में कल भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुए टकराव के विरोध में आज जिला भाजपा ने साक्षी स्थित जुबली पार्क गोलचक्कर पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में विधायक पूर्णिमा साहू, जिला अध्यक्ष संजीव सिन्हा और प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले समेत कई नेता शामिल हुए, जिन्होंने लाठीबाजी और पत्थरबाजी की घटना पर कड़ी नाराजगी जताई।
3: जो जेएनयू में उनके जो मणिपुर के सांसद हैं उनके ऊपर 11 छात्राओं के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जिसपे कांग्रेस पार्टी ने अब तक चुप्पी साध कर बैठी हुई है। जो नारी है लड़ सकती हूँ की बातें करते हैं, जब नारी लड़ने जाती है पढ़ने जाती है तो उनके साथ ये व्यवहार करते हैं। यही सवाल लेकर जवाब मांगने हम पहुँचे थे की आखिर आपकी पार्टी चुप्पी क्यों साधी हुई है।
2: पलामू के पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन राम को ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर प्रदेश भाजपा ने प्रसन्नता व्यक्त की है। रांची में भाजपा नेताओं ने उनसे मुलाकात कर बधाई दी। पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. रविंद्र राय ने इसे पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय बताया।
4: भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता माननीय श्रीमान ब्रजमोहन राम जी को महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने राज्यपाल का दायित्व देकर उड़ीसा भेजा है। ये हमारे राज्य के लिए गर्व का विषय है और इस राज्य में एक निष्ठावान कार्यकर्ता को यह महत्वपूर्ण पद मिला है। झारखण्ड के दबे कुचले समाज में इसका एक बहुत ही सकारात्मक संदेश जाएगा।
2: प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की याचिका सिर्फ फोटो खिंचवाने का मौका थी, जिसमें 14 गलतियां थी। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी का अदालतों पर दबाव बनाने का एक लंबा इतिहास रहा है। भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए झामुमो नेता मनोज पांडे ने इंडिया गठबंधन के मार्च का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि एक भ्रष्ट व्यक्ति को हटाने के लिए लोकतंत्र के तहत भारी भीड़ जमा हुई थी। श्री पांडे ने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन से ठीक पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने छात्रों की पिटाई की, जिसमें पुलिस

0: वहीं निदेशक किरण कुमारी पासी ने कैंपस को पूरी तरह ड्रग फ्री बनाने की प्रतिबद्धता जताई।
1: नशा मुक्त झारखंड अभियान के अंतर्गत आज यह कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें विभिन्न सरकारी डिपार्टमेंट्स के प्रतिनिधिगण आए हुए हैं। उद्देश्य बस एक है कि झारखंड नशे से मुक्त हो और इस नशे से मुक्ति के लिए सभी डिपार्टमेंट्स का समन्वय कन्वर्जेंस आवश्यक है।
0: जमशेदपुर के अरका जैन विश्वविद्यालय गम्हरिया में ईएलसी फेस्ट के जिला स्तरीय ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार द्वारा किया गया। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य युवाओं को चुनावी साक्षरता के प्रति जागरूक करना है। पश्चिमी सिंहभूम और गिरिडीह जिलों में हुए अलग अलग हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिमी सिंहभूम के हाट गम्हरिया में कार और ट्रेलर की टक्कर में छत्तीसगढ़ के 3 लोगों की जान चली गई और 2 घायल हो गए। उधर गिरिडीह के मुफस्सल में सड़क हादसे में 2 युवकों तथा बेंगाबाद व राजधनवार में 2 महिलाओं की मौत हुई है। हजारीबाग जिला प्रशासन ने त्योहारों के मद्देनजर बड़कागांव क्षेत्र में होटलों और ठेलों पर सघन जांच अभियान चलाया। उपायुक्त हेमंत सत्ती के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में गोलगप्पों और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए रखा प्रतिबंधित मिटानील येलो रंग बरामद कर नष्ट किया गया। अधिकारियों ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्या हाल है मंजरी जी? खूब गरबा दांडिया खेल कर आ रही हैं ऐसा लग रहा है, मतलब रात को।
2: जी बिल्कुल, जश्न ही ऐसा है कि त्योहार का समय चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, तो ऐसे में तो शुरू हो गई है सब जगह पे डांडिया खेलना, गरबा खेलना।
1: और जुनून सा होता है कि बहुत सारी महिलाओं को हमने देखा, अरे हमें तो नहीं आता है और हमें तो पैरों में दिक्कत है, तकलीफ है, हम नहीं करेंगे, लेकिन जब वो
2: ये 9 दिन आते हैं
1: सखियों और सखाओं के साथ वो मैदान में उतरती हैं तो बिल्कुल शुरू हो जाते हैं, फिर जुनून छा जाता है, फिर तो समय का भी ख्याल नहीं रहता है। इसका स्वरूप थोड़ा बदल रहा है ना
2: जी,
1: बल्कि जो पहले था गरबा दांडिया का जो स्वरूप डांस का तरीका था, अब उसमें बहुत

0: सारी मिलावट भी हो गई है, तो
1: बिल्कुल
0: हमारे श्रोता इस बारे में क्या सोचते हैं, हम चाहते हैं कि वो बताएं अपनी बातें।
1: बिल्कुल। और मुहावरों की दुनिया में अपना उल्लू सीधा करना, इसके बारे में भी हमारे साथियों ने संदेश भेजे हैं, और भी बातें करेंगे वो।
0: और मंजरी जी, माँ की अलमारी में बहुत कुछ छिपा होता है ना।
1: बिल्कुल
0: हम याद होगा बचपन में कि जब माँ बड़ा सा बक्सा खोलकर बैठती थी तो हम सब घेर के बैठ जाते थे, भाई
1: बिल्कुल
0: बहन पूरे परिवार के सदस्य, और देखते थे कि इसमें क्या है। उनके पुराने पुराने कुछ गहने जेवर और कुछ पुरानी चीजें, कुछ छोटा सा पाउच, कुछ पर्स, और उसमें न जाने क्या क्या रहता था, और वो पुराने कपड़े निकाल के देखना, फिर धूप दिखाना रख के बड़े से चारपाई पर,
1: चाहते थे।
0: तो ये सब बड़ी अजीब सी बातें थी, और अब जैसे खत्म हो रही है, लेकिन माँ की अलमारी में एक कुछ और भी छुपा होता था।
1: बिल्कुल, उनकी यादें, बहुत सारे एल्बम होते थे, और जो आपने बोला ना, पोटली होती थी, दुर्जनिया होती थी, और एक काजल लगाने वाली चांदी की होती थी, लंबी सी डंडी होती
0: चांदी
1: थी,
0: की सुपारी भी होती
1: हाँ,
0: थी,
1: चांदी की सुपारी,
0: पायल,
1: बिछिया तो कितनी सारी निकलती थी
0: गुड्डी
1: उसमें, मतलब वो
0: लेकिन
1: टूटी फूटी भी, साबुत भी।
0: उन्हीं सब के बीच जो छूटा रहता था उनका सपना,
1: बिल्कुल
0: उनका अधूरा सपना, क्योंकि एक जमाना था जब माँ के हिस्से में सिर्फ त्याग और बलिदान आता था, कि
1: बिल्कुल
0: वो त्याग की मूर्ति जो होती थी वो माँ सबसे अच्छी माँ कहलाती थी,
1: सही बात
0: है ना,
1: है
0: कि
1: जी।
0: कितना कुछ सब पूरे परिवार के लिए करना लेकिन खुद के लिए कुछ
1: आपने
0: नहीं
1: बिल्कुल
0: करना।
1: यादों को एकदम ताजा कर दिया है कि हम उस दौर में चले गए, उनके अलमारी तक पहुंच गए
0: तो आपके साथ साथ,
1: कि
0: मतलब हम सबके
1: हमारे
0: साथ
1: साथ
0: साथ
1: साथ
0: हमारे श्रोता भी यादों की अलमारी खोले, और माँ के जो अधूरे सपने माँ की अलमारी में छिपे, उनके अधूरे सपने, इस बारे में हमारे श्रोता टिप्पणी करें विविध भारती
1: बिल्कुल।
0: के फेसबुक पेज पर जाकर।
1: और सखी विशेष में हम बात करने वाले हैं महिला उद्यमी अंकिता गावा के बारे में, जो सोशल समोसा और फिबी की संस्थापक भी हैं। और आज क्योंकि शारदीय नवरात्र का पर्व है, तो हमारे सभी साथियों ने बधाइयां भी भेजी हैं, और आज माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, लोग हवन करते हैं, अच्छे श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, देवी की आराधना करते हैं, और भक्ति में डूब जाते हैं।
0: सुनते हैं ये गीत।

0: नौ दुर्गा फिल्म का गाना सखियां और सखा सुन रहे थे, और खास बात यह है कि ये चित्रगुप्त के स्वर में था। हम संगीतकार के रूप में चित्रगुप्त को जानते हैं, बहुत कम श्रोता जानते हैं कि उन्होंने गाया भी है, तो ये उन्हीं के स्वर में था। रमेश सी पांडे का गीत था और एस एन त्रिपाठी का संगीत था।
1: क्या बात है। और हम लोग बात करने वाले हैं सखी विशेष में महिला उद्यमी अंकिता गाबा के बारे में, और जिसके आज के समय में महिलाएं न केवल स्टार्टअप की शुरुआत कर रही हैं बल्कि कंपनी भी संभाल रही ममता जी, और बल्कि हजारों लाखों लोगों को नौकरियां देकर उनका नेतृत्व भी कर रही हैं। और आज एक ऐसी महिला की सफलता और मेहनत की कहानी लेकर हम आए हैं, और जिन्होंने एक या दो नहीं बल्कि इससे ज्यादा स्टार्टअप्स की नींव रखी और उन्हें सफल भी बनाया। अंकिता गाबा जो एक इंटरनेट उद्यमी और सफल बिजनेस वुमेन है।
0: ये एक ऐसा नाम है मंजरी जी जिन्हें इंटरनेट उद्यमी का खिताब भी मिल चुका है। उन्होंने सोशल समोसा
1: और सुपर माउस
0: फीवी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की नींव रखी, और 4 अप्रैल 1985 को महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मी अंकिता गाबा बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल आया करती थी। वे अपने जीवन में कुछ अलग और नया करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने विल्सन कॉलेज मुंबई से बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया, और बाद में उन्होंने वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से MBA की डिग्री भी हासिल की।
1: बिल्कुल, और पढ़ाई के दौरान ही साल 2007 में अंकिता गाबा ने भारतीय सोशल मीडिया एजेंसी सुपर माउस की नींव रखी, जिसके बाद साल 2010 तक इसके CEO के तौर पर काम किया। इसके साथ ही अंकिता ने साल 2008 में इंडस्ट्री में भी करियर की शुरुआत की, और उन्होंने टी सीरीज के साथ ही कई प्रसिद्ध हस्तियों के लिए PR मैनेजमेंट का काम भी किया इन्होंने।
0: और 2011 में उन्होंने अन्य संस्थापकों के साथ मिलकर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल समोसा की नींव रखी। इस पोर्टल पर सोशल मीडिया से जुड़ी जानकारियां प्राप्त की जाती हैं, और ये प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया विज्ञापन मार्केटिंग अभियानों और केस स्टडीज से जुड़े आर्टिकल्स यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं।
1: और साल 2015 में इस पोर्टल को प्राइवेट इन्वेस्टर नाम की कंपनी को बेच दिया गया था। इस समय तक ये कंपनी 3 से 4 करोड़ की लगभग बन चुकी थी, और इसके बाद साल 2015 में गेट जेलाइज की को फाउंडर बनी, और एक साल बाद उन्होंने 2016 में आईजेनेरियो में पार्टनर एंड बिजनेस हेड के रूप में भी काम की शुरुआत की। यहां लगभग 2 साल तक काम करने के बाद ओरो वेल्थ में मार्केटिंग डिपार्टमेंट की वाइस प्रेसिडेंट बनी, और उसके बाद मनी फ्रेंड की मार्केटिंग हेड और महिला बनी, वेबसाइट की कंटेंट एंड कम्युनिटी हेड के रूप में भी आपने काम किया।
0: और 2023 में अंकिता गाबा ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर फीवी की स्थापना की। ये एक ऐसा पोर्टल है जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स से जुड़ी खबरें दी जाती हैं। इस पोर्टल को पूरी तरह से सोशल मीडिया से जो प्रभावित होते हैं उन्हें समर्पित किया गया है।
1: जी, और आज अंकिता गाबा डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही हैं। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ कर दम पर एक नहीं बल्कि कई स्टार्टअप की शुरुआत करके उन्होंने उसे सफल बनाया। और अंकिता गाबा के पुरस्कार उपलब्धियों के बात करें तो सोशल समोसा वेबसाइट को वेब समिट 2013 के टॉप 10 स्टार्टअप में जगह मिल चुकी है, और एक्सचेंज 4 मीडिया द्वारा IDMA 2013 के लिए सोशल समोसा को टॉप 5 डिजिटल स्टार्टअप में शामिल किया गया है। और इसके साथ ही 2013 में उन्हें सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है,
0: और वैश्विक शीर्ष 100 सोशल मीडिया एजेंसियां और सलाहकार के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। और अंकिता गाबा सोशल मीडिया के क्षेत्र में अपने एक्सपीरियंस और नए नए आइडियाज साझा करती हैं, और केवल स्टार्टअप्स की ही शुरुआत नहीं की बल्कि कई लोगों को वो नौकरी भी दे चुकी हैं इसके माध्यम से। उनकी सफलता ये सीख देती है कि एक छोटा सा इनोवेटिव आइडिया के दम पर कैसे बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। आज अंकिता गाबा कई महिलाओं को प्रेरणा दे रही हैं, और अब सुनवाते हैं एक गाना।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जब आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: मंजरी जी, ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं और ये संदेश हमने सुनवाए अपने अपने श्रोताओं को, और हमने अपने श्रोताओं से कहा था कि गरबा और दांडिया का स्वरूप बदल रहा, तो उसमें अपने उद्गार लिखे, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि गरबा डांडिया के बदलते रूप में इतना ही कहना है कि घर मोहल्ले के चौराहे से पारंपरिक भक्ति अनुष्ठान से निकलकर अब कमर्शियल ग्लोबल रूप ले चुका है, जिसमें भक्ति भाव कम है और टिकट ज्यादा होता है।
3: बिल्कुल सही बात लिखी है, क्योंकि जब हम जाते हैं देखने तो वहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे उसके टिकट के बढ़ा दिए गए, और साथ साथ वेशभूषाओं पर भी बहुत सारा खर्चा होता है। देखा जाए बाजार में भरे पड़े हैं सामान और लोग खरीद भी रहे हैं, ऐसा नहीं, तो खर्चा भी बहुत तेजी
2: और
3: से होता है।
2: दोस्ती भी यहाँ पर बहुत परवान चढ़ती है, खास तौर से उसमें कई बार गलत रिश्ते भी पनप जाते हैं।
3: बिल्कुल,
2: लड़के लड़कियों के बीच, कम उम्र के लड़के कम उम्र की लड़कियों को, जहाँ पर बहुत गलत सही का फर्क नहीं पता होता है, उनके बीच एक रिश्ता एक नाता तय होता है, तो वो रात भर गरबा के बहाने निकल के बाहर जाते हैं और मौज मस्ती करते हैं, वो भी ठीक नहीं है।
3: बिल्कुल, उससे वो गलत ही प्रभाव पड़ता है, बाद में पता चलता है कि दोस्ती हुई और बाद में दोस्ती में दरारें आ रही, तो ये सब चीजें बहुत हो रही हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि पहले के जमाने में गरबा गांव के मैदान में एक ही जगह सब मिलकर करते थे, अब तो हर जगह होने लगा है। पहले कम आवाज होता था, अब बड़े बड़े स्पीकर आ गए और शांति सुकून तो गायब ही हो गए। पहले चनिया चोली और केडियो ड्रेस थे, अब वो ड्रेस तो है पर साथ में अंग प्रदर्शन भी होने लगा है। कुल मिला के पहले जो भक्ति भाव था वो अब मतलब कहना चाहिए अच्छा नहीं लगता है, ऐसी चीजें पहनने में दिखावे में हो गई हैं। और मेरी बात करूं तो पहले मैं भी गरबा करने जाता था, पर अब सिर्फ देखता हूं, गरबा करने का मन नहीं होता है बिल्कुल, क्योंकि आज के फैशन के दौर में इतनी चीजें निकल आई हैं, डिजाइनर चीजें आ गई हैं, कपड़े आ गए, तो लड़कियां उसकी तरफ भागी जा रही हैं।
2: पूरा बाजार भरा होता है,
3: बिल्कुल
2: इस समय बाजार में जाए तो वही चानिया चोली और घाघरा मिलता है, और जैसे होड़ सी मची हुई है कि हम उससे ज्यादा अच्छा पहन लें।
3: बिल्कुल,
2: और रंगों के हिसाब से जो कपड़े पहने जाते हैं उसमें लोगों को और दिक्कतें आती, कि वो एक दिन पहना गया और फिर अगले गरबा में ही काम आता है, तब तक पता चला कि आप शहर छोड़ चुके होते हैं, आपका करियर बन चुका है, वगैरह वगैरह।
3: और बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी भी मिल रही है जो सिल्वर कोटेड होती है, नकली ज्वेलरी जो है, लेकिन उसको पहनने से कई बार इन्फेक्शन का भी वो हो जाता है, लेकिन फैशन है, पहनना है तो सब पहनते
2: हैं। इसका जो उद्देश्य है मौज मस्ती
3: जी,
2: और एक दूसरे से मेल मुलाकात, एक दूसरे से स्नेह प्रेम का रिश्ता वो बना रहे,
3: बिल्कुल
2: ये उद्देश्य होना चाहिए। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि होली और दिवाली के अलावा जो पर्व सिनेमाई संगीत में सबसे अव्वल नंबर पर है वो है गरबा। हालांकि मैंने आज तक गरबा नहीं खेला, मगर अपने आसपास के माहौल को देखती हूं तो लगता है कि गरबा के साथ जिंदगी की रंगत कुछ और ही हो गई है। गरबा बस गीतों के सहारे धूमधड़ाका ही रह गया है, जीवन में आने वाले खुशी के छोटे छोटे पल को उत्सव में बदल देने की ये परंपरा बहुत पुरानी है। ये हमें ऐसी दुनिया में खो जाने का मौका देता है जहां खुशियां होती हैं और अपनों के साथ। गरबा नृत्य में हावी होता रिमिक्स कल्चर जीवन शैली में बदलाव की वजह से महज शोर और दिखावा ज्यादा है। अब तो उसमें बाकायदा भांगड़ा, पॉप, सब कुछ
3: मिक्स हो गया है। बिल्कुल,
2: और बहुत तेज संगीत। अब तो जो प्रतिबंध है कि आपको रात को 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बंद कर देना है, लोग उसका भी उल्लंघन करते हैं, लेकिन नियमों का उल्लंघन कम से कम ना करें।
3: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है, गरबा और डांडिया का ये बदलता स्वरूप ये साबित करता है कि हमारी

संस्कृत आधुनिक समय के साथ खुद को ढालने में सक्षम है। हालांकि आधुनिकता की चकाचौंध में हमें अपनी मूल परंपराओं और जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, ताकि इस पवित्र उत्सव की असल आत्मा हमेशा जीवित रहे। बिल्कुल सही बात लिखी है, हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हम सुनते हैं एक गीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
0: सखी सहेली कार्यक्रम में अब ले रहे हैं एक ब्रेक छोटा सा।

0: विविध भारती पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। मंजरी जी कहाँ गुम हो गई हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर ढूंढ रही टिप्पणियां। एक अच्छी खबर सुनिए,
1: बिल्कुल बताइए।
0: वो ये कि एक महिला को नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हुई है। वो महिला है नवनीतम नवी पिल्ले। ये भारतीय मूल की दक्षिणी अफ्रीकी जज और यूएन मानवाधिकार की प्रमुख रही है। इन्हें मिला है नोबेल शांति पुरस्कार। मतलब मिला क्या, चुना गया है भी, और वो तो बाकायदा घोषित हुआ है और जब ये सम्मानित किया जाएगा आगे चलकर
1: जी। और उन्होंने युद्ध अपराध और नरसंहार के दोषियों को सजा दिलाने के लिए आवाज उठाई, प्रयास किया। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून को मजबूत करने की ओर प्रयास किया, इसके लिए आप सम्मानित की गई।
0: और इसकी इनके बारे में और भी थोड़ी सी जानकारी दे दें। 1890 के दशक में नबी के ग्रैंड पेरेंट्स बंधुआ मजदूर के रूप में गन्ने के खेतों में काम किया करते थे। मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरह की थी। दक्षिण अफ्रीका ये गए थे और 1941 को डरबन में इनका जन्म हुआ। और पिता बस चलाते थे, यानी बस के ड्राइवर थे। उनका बचपन बहुत ही संघर्षमय रहा
1: जी। और वे दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला जज बनी। उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से डॉक्टर ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस की डिग्री प्राप्त करी। वे रवांडा के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण ICTR की अध्यक्ष रही। इसके बाद वे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की जज भी रही।
0: और इन्होंने 2008 से 2014 तक UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के रूप में कार्य किया। और इनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें हम विविध भारती परिवार की ओर से बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। अब क्या इरादा है,
1: गीत सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: मंजरी जी, फिर याद है कि माँ की अलमारी में कुछ अधूरे सपने भी छुपे होंगे, कभी टटोलने की, ढूंढने की कोशिश की आपने?
1: बिल्कुल बहुत की, क्योंकि अक्सर
0: कि
1: जब
0: सिर्फ वो अंगूठी और जेवर लेके पहनने की कोशिश
1: नहीं,
0: की?
1: मेरा तो जब वो खोल के, माँ जब बक्सा खोल के बैठती थी तो बस उनकी जो शादी का जो लहंगे की ओढ़नी थी तो वो बस हम बच्चे निकाल लिया करते थे, तो उसको मैं साड़ी की तरह लपेट के घूंघट काढ़ के डोलती थी
0: और माँ की साड़ी
1: कमरे
0: पहनने का भी एक
1: में
0: अलग सुख होता
1: बिल्कुल
0: था।
1: बिल्कुल
0: कद छोटे होने के कारण माँ की साड़ी आती नहीं थी, तो उसको दोहरा करके
1: दोहरा करके
0: या
1: साड़ी
0: फिर खुद लपेट के, साड़ी
1: पहनते
0: पहननी
1: थे
0: नहीं आती
1: जी।
0: थी तो लपेट के आईने के सामने देखना, और
1: हाँ
0: अलग अलग रूप रंग में जैसे जैसे माँ तैयार
1: बिल्कुल,
0: होती थी
1: और
0: वैसे
1: माँ
0: वैसे
1: की
0: तैयार
1: माथे की
0: होना।
1: बिंदी निकाल के अपनी लगा लेना, ये भी बड़ा शौक होता था
0: तो लेकिन
1: जी
0: उनके सपनों के बारे में, तब जब हम छोटे
1: जी
0: थे तो माँ के सपनों के बारे में सोचने के लिए हम वहां पहुंच भी नहीं सकते थे कि
1: नहीं
0: उनके
1: नहीं
0: भीतर, उनके मन
1: बिल्कुल
0: में क्या चल रहा होता है, वो सब के बारे में, पूरे परिवार के बारे में सोचती थी, लेकिन
1: बिल्कुल,
0: उनके बारे में कोई नहीं सोचता। ये हर घर की कहानी है।
1: ये अब जाके हम लोग सोच पाते कि उस समय उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी थी अपने चीजों को बताने, समेटने के लिए। तो
0: बिल्कुल। और वहां माँ की अलमारी खुलती है, वहां जो उनकी जिंदगी की बहुत सारी यादें, उनके बहुत सारे अधूरे किस्से छिपे होते थे, वहां कपड़े और पुरानी साड़ियों की तह में उनकी खुशबू बसी होती थी, और उनकी जिंदगी के बहुत सारे अधूरे किस्से भी छिपे होते थे जो गाहे बगाहे वो बताया भी करती थी, अपने बचपन की
1: बिल्कुल
0: यादें कि क्या हुआ था उनके बचपन में, उनके लिए कोई स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी तो उन्होंने खुद पढ़ाई की, ऐसी तमाम बातें माँ
1: बिल्कुल
0: के, हम सब के माँ के, और लगभग सबकी माएं एक जैसी होती थी उस समय।
1: बिल्कुल, क्योंकि वो सारी यादें जुड़ जाती हैं। और उन समय उनकी गोटे वाली साड़ी जब हम लोग देखते थे तो माँ, मतलब माँ का यही होता था कि भाई ये शादी में बनवाई थी, पापा से लड़ाई लड़ करके कितना खर्चा किया था इस पर पापा बोले थे, और अक्सर माँ ये किस्सा बताया करती थी। और अच्छे कपड़ों की वो अलमारी अलग से रखती थी जिससे वो खास मौके पर पहनने का सपना देखा करती थी। तो इस तरह की यादें होती हैं कि, और किसी भी पुराने डिब्बे में बचा कर रखी हुई चिट्ठियां, तस्वीरें या छोटी छोटी चीजें वो माँ उसको दिखाकर अपनी चीजें बताया करती थी कि उन्हें क्या अच्छा लगता है।
0: अब देखिए ना, हमारे श्रोता भी इन यादों में बिल्कुल खो गए हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि माँ से जुड़ी यादों में एक बहुत ही खूबसूरत याद कि माँ अंतिम दिनों में खूब स्वेटर बुनती थी, और बुनकर वो अक्सर उपहार में दे देती थी। अंतिम समय में उनकी सलाइयों पर वर्धमान की पिंक कलर की ऊन का एक स्वेटर था, उसे अधूरे स्वेटर को मैंने करीब 10 साल तक संभाल के रखा। अंततः मेरा मन हुआ कि मैं इसको पूरा करूं, और मैंने उस ऊन का इस्तेमाल करके खूब सुंदर सी जैकेट बनाई। और तो हमें एक बात याद है कि जब स्वेटर की बात की है तो ऊन का गोला बनाने के लिए बैठा करती थी माँ और घर की जो अन्य सदस्य होते थे सबको, और हमें, हम सबको ऊन का गोला बनाने के लिए थमा दिया जाता था कि
1: जी
0: आप भी बनाओ, और वो ऊन पूरा उसका एक गुम्फा बन जाता था,
1: हाँ,
0: संभलता नहीं था,
1: और कई बार तो
0: और
1: फिसल जाए, अगर गोला
0: बिल्कुल
1: बना भी रहे तो छोटे छोटे
0: हाँ, तो
1: हाथों से
0: कहाँ
1: फिसल गया तो
0: दूर तक
1: दूर
0: चल
1: तक
0: गया
1: चला गया,
0: वो धागा,
1: फिर वो
0: धागे के पीछे पीछे भागता
1: फिर माँ ने बड़ा
0: रहा।
1: उलझा भी देते थे, गांठ पड़ गई, फिर माँ कह रही तुम
0: हाँ,
1: रहने दो, तो
0: तो
1: लेकिन
0: और उस
1: बड़ा
0: गोले
1: मजा
0: में
1: आता था।
0: एक खास तरह की कलाकारी भी होती थी उसमें, तरह तरह के, जैसे एक सुपारी का आकार
1: हाँ
0: या फिर संतरे का आकार,
1: नहीं,
0: सेब
1: उसको
0: का आकार बनता
1: अंगूठे
0: था।
1: और छंगुनिया में ऐसे करके तिकल्ला नहीं होता है जैसे, उस तरह से वो लपेटा जाता था, तो वो भी छोटे छोटे हाथों में कितना लपटेगा तो वो भी
0: अब
1: बड़ा
0: हमारे
1: मजेदार
0: श्रोता
1: है
0: देख नहीं सकते, नहीं तो
1: जी।
0: हम ये जो अभी आपने
1: अब किया
0: एक्शन करके
1: एक्शन
0: दिखाई है ना, ये
1: किया
0: दिखा सकते थे कि मंजरी जी बाकायदा वो हाथ
1: हिला
0: ऐसे हिला के दिखा
1: करके,
0: रही
1: नहीं हमारे श्रोता बहुत समझदार है, वो सब जान गए कि तिकल्ला
0: हैं।
1: बोला है।

0: तो समझ गए होंगे। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि माँ की अलमारी में सिर्फ साड़ियां ही नहीं, उसके उनके अधूरे सपने भी तह करके रखे होते थे, जो उन्होंने शायद विवाह के पहले खुद के लिए संजोए हों। एक तह में वो लाल जोड़ा जो उसने उन्होंने अपनी विवाह के बाद कभी खुलकर पहना ही नहीं, दूसरी तह में वो किताब जिसे वो पढ़ना चाहती थी पर चूल्हे चौके की जिम्मेदारियों में वक्त नहीं मिला, और सबसे नीचे दबी वो डिबिया जिसमें मेले से लाई बिंदिया आज भी वैसी की वैसी पड़ी है। उनके अपने सारे रंग हमारे भविष्य को संवारने में घोल दिए और खुद एक फीकी सी साड़ी में सिमट गई। अलमारी खोलो तो आज भी उसमें से ममता के साथ साथ एक अनकही उदासी की महक आती है कि काश किसी दिन हमने पूछा तो होता, माँ तुम्हारा सपना क्या था। बहुत ही मतलब दिल भर आया ऐसी बातों को सुन करके।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि पुराने जमाने की माँ के लिए अलमारी यानी सिर्फ कपड़ों की या गहनों की राशि, वो तो है उनके त्याग की निशानी और अधूरे सपनों की कहानी, ऐसा हम जरूर कह सकते हैं। सामाजिक वैचारिक अनास्था के कारण खुद की इच्छाएं दबाकर कुटुंब के लिए वो त्याग की मूरत बन जाती थी, परंतु उन्हीं के ममता भरी सजग छाया में पली आज की आधुनिक माताएं ऐसी नहीं हैं। बड़ी समझदारी से परिवार और बच्चों को संजोते हुए वे खुद के सपने और कर्तव्य पूरी करती नजर आ रही हैं। दरअसल इसमें भी कोई बुराई नहीं है,
0: बिल्कुल
1: अगर हम उन परंपराओं से आगे नहीं बढ़ेंगे तो वे पीछे रह जाएंगे। आपको अगर आगे बढ़ना है और लड़कियों को खासतौर से आगे बढ़ाना है, उन्हें भी समानता से उनके हक के बारे में सोचना
0: जी
1: है, तो फिर उन परंपराओं से तो आगे निकलना होगा।
0: बिल्कुल
1: अब कहने का ये मतलब नहीं कि माँ की जो अच्छाइयां थी उसको आप हटा के दूर रख दीजिए।
0: जी, उनको तो रखना ही अपने पास।
1: हाँ
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि माँ की अलमारी सिर्फ कपड़ों या कागजों का बक्सा नहीं होती थी, वो उनसे उन अनकहे अधूरी इच्छाओं का संग्रहालय होती थी जिन्हें उसने परिवार की खुशियों के पीछे कहीं छुपा दिया होता है। उसके ये अधूरे सपने किसी मलाल की तरह नहीं होती बल्कि उस त्याग की मिसाल होते हैं जो उसने हंसते हंसते खुद पर ओढ़ लिया। उसने अपनी दुनिया को अपने बच्चों और परिवार की खुशियों के इर्द गिर्द बुन लिया और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को उन परतों में हमेशा के लिए छुपा दिया। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं उनकी, और घर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच ना जाने कितनी बार अपने सपनों को वो चुपचाप तह करके रख दिया करती, और बच्चों की खुशी, पति की जरूरतें और घर की जिम्मेदारियां उनके अपने अरमानों से आगे निकलती रहती, और उनकी अलमारी की हर तह जैसे कहती कि मैंने भी कभी अपने लिए कुछ सोचा था। और कभी अगर ममता जी उस अलमारी को ध्यान से खोलिएगा तो देखें माँ के कितने सपने उसमें मिल जाएंगे, और जिसमें उनके कोई कभी शब्द नहीं उन्होंने दिए, और अगर मिल जाए तो उसे पूरा करने की कोशिश हम सभी को करनी चाहिए, क्योंकि माँ के सपनों को उम्र नहीं बस थोड़ा सा अपनापन चाहिए होता है। और कई बार होता है कि जब उनकी अलमारी देखो तो उसमें बहुत सारे रुमाल दिख जाते हैं तह रख के, उनकी कढ़ाई के धागे दिख जाएंगे, सुई का डब्बा दिख जाएगा, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें माँ की उस अलमारी में दिख जाती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और उनके उसके साथ साथ कुछ कागजों के बीच रसीद भी मिल जाती है, जो चीज़ें उन्होंने उस समय खरीदी होंगी वो भी दबी पड़ी हैं, कुछ पन्ने फट गए उनके रसीदों के, लेकिन फिर भी उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। और इसके साथ साथ अपने बच्चों के छोटे छोटे से कपड़े, झबले, टोपी, मोजा, ये सब भी उनकी अलमारी में खूब दिख जाता है। और जब क्या कहते हैं कि उनकी तस्वीर का जो एक पोटली होती है या एल्बम होता है, उसमें भी ना जाने कितने समय के लोगों के परिवार के सदस्यों की फोटोग्राफ्स मिलती हैं, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है कितना संभाल के उन्होंने उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को रखा हुआ है।
1: और वो प्रिंट करने का जमाना भी था
0: जी
1: कि प्रिंट करवा के सहेज के रखा भी जाता था, कहीं एल्बम में लगाया जाता था या लिफाफे में करके। अभी गाना सुन लेते हैं और बातें करते हैं।

0: भाई, माँ की अलमारी में जो छुपे उनके अधूरे सपने थे, इसी तरह चांद सितारों के माध्यम से, सूरज के माध्यम से, कुदरत के माध्यम से पूरे होते थे। वो
1: बिल्कुल
0: अपने सपनों को इन्हीं तरीके से, कभी चांद की कहानी, कभी कोई कहानी सुनाकर अपने सपने पूरे कर लेते थे। तो सपन कहानियों के माध्यम से उनके सपने मुकम्मल हो जाया
1: बिल्कुल।
0: करते
1: और
0: थे।
1: ममता जी, कई घरों में उनके पास अलमारियां होती थी, माँ की दीवार वाली अलमारी होती थी, कई बार वैसी लकड़ी की पुरानी जो नक्काशीदार अलमारियां होती थी, और कई बार उनके बक्से या कोठरी में बहुत सारी चीजें होती थी, इस तरह से भी
0: अब
1: रखते थी वो लोग।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि माँ की अलमारी में पुरानी फोटो, डायरी, कॉपी और बहुत सारी यादगार चीजें रखी हुई थी। उन कॉपियों में उन्हें कुकिंग टिप्स, फिल्मों के मनपसंद गाने लिखे हुए होते
1: क्या
0: थे।
1: बात।
0: और एक हमारी सखी, इन्होंने लिखा है कि बहुत सुंदर बातचीत चल रही है, वो जो अंगूठे और उंगली में लपेटने की बात कर रही है मंजरी जी, ऐसे लपेटा हमने लोगों को, हम लोगों के भाई पतंग उड़ाने के समय जब मांझा लपेटा
1: जी
0: करते थे। भाई ये तो हमने भी ये काम किया है
1: हाँ, मांझा लपेटना भी
0: कि
1: तिकल्ला जैसा
0: हाँ वो
1: बनाते थे
0: पतंग उड़ा रहे हैं
1: जी।
0: और मांझा पकड़ो आप,
1: हाँ
0: संभालो, और उंगली कट जाती थी।
1: हाँ जैसे वो जब पूरा लपेट के निकलता था ना ममता जी, तो उसका शेप जो गुल्ली डंडा खेलते थे ना, वो जो गुल्ली होती थी वैसा बन जाता था। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि मेरे माता जी ने एक बार अलमारी में एक पोटली निकाली थी, हम तीनों भाई बहन उसको बड़े अचरज से देखने लगे कि इसमें क्या होगा। उस पोटली में पुराने सिक्के थे और हमारे जन्म से पहले के, और बहुत रेयर अलभ्य थे कुछ सिक्के और कुछ तांबे के।

0: कोई हॉल वाले तो कोई पुराने गोल, मतलब एक गोल छेद वाला सिक्का, और पुराने गोल नहीं होते थे, और राजा महाराजा के मुख्य उसमें छापे बने हुए थे, वे सिक्के उनके नहीं हमारे सपने पूरा करने के लिए रखे होंगे, मतलब वो
1: और
0: सिक्के देख।
1: एक
0: जी
1: एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाना जी सेंट बनाया करते थे, मेरी मम्मी की बड़ी बड़ी लोहे के संदूक में से आज भी उनकी खाली छोटी छोटी शीशियों से उनकी खुशबू संदूक में से आती है, जब भी वो संदूक खोले जाते हैं, जबकि वो सेंट नाना जी ने आज से कम 70-75 सालों पहले बनाए थे। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे माता जी ने एक बार अलमारी में से कोई एक पोटली निकाली थी, हम तीनों भाई बहन इसे अचरज से देखने लगे कि इसमें क्या होगा, उस पोटली में पुराने सिक्के थे, और जो आपने बताया कि
0: जी
1: सिक्के, तो इस तरह की बातें। और एक श्रोता ने लिखा है कि उन दिनों की माँ की अलमारी कहाँ हुआ करती थी भाई, हमने तो माँ की काठ की पेटी या फिर बक्सा देखा था, जिसे वही छू सकता था जो बच्चा उनके समीप रहते हुए उनका प्रिय होता था, और मैं उन बच्चों में नहीं आ पाया था, और बिल्कुल ताला बंद होता था उस बक्से में, और चाबी कहीं
0: मतलब
1: छुपा
0: इसीलिए
1: के
0: तो मैंने
1: रखी
0: बोला
1: होती
0: ना
1: थी।
0: कि सब चीजें सबके यहाँ नहीं होती
1: हाँ, एक श्रोता लिख रहे हैं कि माँ से जुड़ी
0: थी।
1: यादों में एक बहुत ही खूबसूरत याद है, माँ के अंतिम दिनों में खूब स्वेटर बुना करती थी, और हम
0: जी
1: स्वेटर की बातें कर चुके हैं।
0: बिल्कुल, और जब स्वेटर बिनती थी तो ये हमने देखा ही था कि किस तरह से वो बिना करते थे। और माँ की बहुत सारी चीजें भी होती थी घर गृहस्थी की, जिन्हें हम सोच सकते हैं कि वो भी कभी कभी उसमें चीजें दिख जाती थी उनके बक्से में रखी हुई संभाल करके।
1: अब
0: और
1: हम मुहावरों की बातें कर लेते हैं
0: जी
1: मंजरी जी, तो बताइए आपको कितने मुहावरे याद हैं, आज जो मुहावरा हमने दिया है वो याद है कि नहीं?
0: हाँ
1: बताइए।
0: अपना उल्लू सीधा करना, और हमारे साथी भी लिखते हैं कि अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे को इस बात से बताना चाहूंगा कि अक्सर हम देखते हैं कि तीर्थ स्थलों में, अन्य पूजा स्थलों में, जहाँ श्रद्धालुओं में भक्ति भावना होनी चाहिए, अत्यंत भीड़ भाड़ में भी कुछ लोग बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को भी धक्का देते हुए पहले पहले दर्शन करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, जो कि भक्ति भावना के विपरीत है। और इस तरह की बातें हमारे बहुत साथियों ने लिख करके भेजी हैं, तो हम
1: अच्छा मंजरी जी,
0: जी
1: आप तो मुहावरों की बातें बता रही हैं और शुरुआत तो हम कर चुके हैं, लेकिन अभी ये माँ की अलमारी की बात तो जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, उसमें
0: नहीं
1: से कपड़े सपने निकलते ही आ रहे हैं। अब हमारी सखी हैं, इन्होंने लिखा है, अभी अभी कमेंट लिखा है, हमें लगता है कि
0: जी
1: इस विषय पर बातें करना हमारी सखियों को बहुत मन भाया है। लिखा है कि अलमारी में उनकी साड़ियां इतने करीने से मलमल के कपड़े में लपेटी हुई रखी रहती हैं, जैसे कितनी अनमोल धरोहर है उनकी, साड़ियों में तो उनको बहुत ही ज्यादा प्रेम होता है। एक किनारे में उनकी छोटी सी पैकेट बना रहता है, छोटा सा पैकेट बना रहता है, जिसमें उनकी पुरानी तस्वीर, पुराने एल्बम और न जाने क्या क्या सहेजा हुआ रखा रहता है। काफी सारी डायरी जो उनको लिखने का शौक है, कुछ कुछ लिखती रहती हैं, वो भी उनकी अलमारी में सजी रहती है, पेन पेंसिल रबर स्केल सब कुछ एक पेंसिल बॉक्स में करके रखा हुआ है। कभी उनको पेंसिल चाहिए तो वो भी वर्क पहली भरने के लिए,
0: जी
1: और कभी गलत हुआ तो रबर भी चाहिए, शार्पनर भी चाहिए, वो सब संभाल के अपने पास रखती हैं। क्या बात है भाई, हमें लगता है कि जो माँ की अलमारी की यादें हैं वो अंतहीन हैं। अब
0: बिल्कुल
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि मम्मी की अलमारी और यादें शब्द नहीं है बयां करने के लिए, अब तो हमारे पास भी जैसे शब्द खत्म होने को हैं। और डायरी और कॉपी, बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि उनके अलमारी में, उनके बक्से में एक डायरी होती थी, और कुछ डायरी में ये भी लिखा होता था कि किसको कितना दिया गया
0: हाँ खर्चे का
1: दहेज
0: हिसाब।
1: और
0: जी
1: खर्च का हिसाब,
0: हाँ
1: और तोहफे के रूप में, जैसे शादी विवाह में
0: जी
1: शगुन के तौर पर देते हैं, तो फलाने को इतना रुपया दिया गया और उनको इतना रुपया दिया जाना है, ये
0: जाना
1: भी लिखा
0: है
1: होता था। बिल्कुल
0: बिल्कुल। और साथ
1: इतिहास
0: में
1: होता
0: किसी
1: था।
0: मेले में जाती थी तो वो भी डायरी में दिखता था कि यहाँ पे ये पानी बताशे, दही बड़ा, चटनी और आलू की टिक्की खाई और इतने पैसे ले गए थे, इतने पैसे बचे, मतलब ये सब चीजें छोटी छोटी भी वो लिख के रखती थी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम उनकी यादों को साझा करते हैं,
1: और
0: ताजा करते
1: वो
0: हैं।
1: अक्सर मुहावरों और लोकोक्तियों में बात करती थी, है ना?
0: बिल्कुल जैसे कुछ काम करने का मन नहीं है या नहीं कर पा रहे हैं तो बस कुछ ना कुछ अपना बोल दिया उन्होंने, अपनी मुहावरे कहाँ थे, तो बड़ा
1: और आज का विषय भी मुहावरा है,
0: जी
1: तो मुहावरे में हमने रखा है कि अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपने आप अपना काम निकाल के आगे बढ़
0: जी
1: जाए।
0: जी
1: और हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये पुराना और प्रसिद्ध मुहावरा है, इसका अर्थ है अपना काम सिद्ध कर लेना, और ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जिंदगी में जो अपना काम सीधा करके आगे निकल जाते हैं।
0: बिल्कुल।

0: और एक लिखते हैं कि मुहावरों की दुनिया अपना उल्लू सीधा करना, भाई इस नेक कार्य में तो प्रायः सभी लोग लगे हुए हैं, ऐसा करते रहना कोई बुरी बात नहीं बशर्ते उससे किसी का दिल ना दुखे, लिखते हैं हमारे साथी। और एक लिखते हैं कि इस मुहावरे को इस बात से बताना चाहूंगा कि अक्सर हम देखते हैं कि तीर्थ, अच्छा ये चीज़ तो मैंने पढ़ी है कि दर्शन करने जाते हैं ये वाली बात। और एक लिखते हैं कि उल्लू सीधा करने वाले मुहावरे पर ये गीत फिट बैठता है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, अपना काम निकल गया फायदा हो गया, फिर कौन तू कौन मैं, सावधान ऐसे लोगों से जो दूसरों को उल्लू बनाते हैं। कई बार हो भी जाता है तो बड़ा मन दुखता है कि कैसी लोगों की प्रवृत्ति होती जा रही है जो सिर्फ मतलब के लिए ही साथ में खड़े होते हैं, उनका मतलब निकल गया तो आपको पूछेंगे भी नहीं, पलट कर आपको देखेंगे भी नहीं, मुसीबत के समय तो आप ये उम्मीद ही मत करिए कि वो आपका साथ देंगे। तो अगर आप एक बार धोखा खा जाएं तो हमेशा के लिए उसको अपना बना लें कि इस तरह
1: पर
0: का।
1: ऐसा करना नहीं चाहिए
0: जी
1: कि अपना मतलब सिद्ध करके आगे बढ़ के और सामने वाले की मदद ना करें।
0: जी
1: और मंजरी जी, आज आपदा जोखिम नवीनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में आज के दिन को याद किया जाता है।
0: बिल्कुल
1: दरअसल अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को आपदाओं से बचाव के प्रति जागरूक करना। जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, सूखा और भूस्खलन जैसी आपदाएं बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन आपदाओं को हमेशा रोका नहीं जा सकता, लेकिन सावधानी और तैयारी से नुकसान कम किया जा सकता है।
0: बिल्कुल
1: इसकी सतर्कता की ओर ध्यान दिलाना इसका उद्देश्य है।
0: बिल्कुल। और हमें घर, स्कूल और कार्यालयों में सुरक्षा के उपायों को जानकारी देनी चाहिए, रखनी भी चाहिए। और आपातकालीन जो नंबर होते हैं उनको लिखकर जरूर आप रखें, कभी भी मुसीबत पड़े तो आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। सरकार और आम लोगों को मिलकर आपदा से निपटने की तैयारी करनी चाहिए, जागरूकता और सही तैयारी से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस दिवस का संदेश है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और आपदा के लिए पहले से तैयार रहें।
1: और अब सुनते हैं ये गाना।

0: अभिमान फिल्म का ये गाना था और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोली बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने। ये है दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित है एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई में अपने एक्टिंग के सपने को जिया है और आज एक बहुत ही पसंद की जाने वाली सीरीज पंचायत, जिसका नाम है, उसके किरदार विकास के रूप में करोड़ों दिलों में जगह बनाई है। एक ऐसा किरदार जो ईमानदार है और जिसमें कहीं ना कहीं मासूमियत भरी है और उसने लोगों को हंसाया भी है और रुलाया भी है। अपनी मेहनत और लगन से एक अलग मुकाम बनाने वाले अभिनेता चंदन रॉय जी से आज हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
2: थैंक यू सो मच मैम, और मुझे सच में यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है।
1: अच्छा, आप बात करते हैं उस सीरीज की जहाँ से आपको नाम मिला विकास का, इस किरदार का, तो ये पंचायत के साथ जुड़ना कैसे हुआ? क्योंकि शायद दिलचस्प बात यह है कि आप बहुत ज्यादा सीरियसली इसका ऑडिशन नहीं दिया था या यूं ही हो गया, कुछ तो मजेदार किस्सा है इसके साथ जुड़ा हुआ। पंचायत के साथ कैसे जुड़े आप?
2: देखिए, जब मुंबई में ऑडिशन का सिलसिला शुरू हुआ मेरा, तो जैसा मैंने कहा कि रोज सुबह, कई बार तो बहुत लंबे टाइम तक तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि मैं मुंबई आ गया हूं। सोया हुआ हूं, नींद खुली, मैंने कहा अरे मैं मुंबई में हूं, यकीन ही नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि बचपन से मुझे मुंबई जाना था, बचपन से ही सपना देखा था मैंने। इस कदर दीवानगी थी मुंबई आने का कि अगर मैं किसी ट्रेन में देख लूं कि पटना टू बांद्रा, मुझे लगता था कि जाकर के उस बॉगी को एक बार प्रणाम कर लें,
1: अच्छा
2: उसको छू लें, क्योंकि ये मुंबई जा रहा है। और जब मैं मुंबई आ गया तो रात में कभी चौक के उठ जाता था कि सच में मैं मुंबई आ गया, मैं मुंबई में हूं अभी, ये यकीन नहीं होता था मुझे। और जब मुझे लगता कि जब तुम मुंबई आ गए हो तो तुम सोए हुए क्यों हो भाई, उठो ना, जाओ ना ऑडिशन देने के लिए, करो ना वो काम जो तुम चाहते हो, तो बहुत ही सुबह उठ के थोड़ा गले के लिए कुछ रियाज कर लेता था, चूंकि थिएटर बैकग्राउंड से आया था मैं,
1: बिल्कुल,
2: और वही चावल दाल, कभी चना मूंग खा के, या सत्तू, सत्तू मेरा बहुत ही गो टू फूड है, अभी भी यकीन माने मैं सत्तू पी के आया हूँ।
1: अच्छा जी।
2: तो उस टाइम में भी ये सब सत्तू या चावल दाल खा के मैं निकल जाता था ऑडिशन के लिए
1: जी।
2: और कई बार मुंबई की तो आप जानते ही हैं उमस, इधर तो आप गर्मी भी ज्यादा होने लगी है, बट ये सब चीज फर्क नहीं पड़ता था, ना तो उस समय सनस्क्रीन था, ना तो कुछ था, बस जुनून था, जिसकी वजह से

0: पूरा शरीर चमक रहा था, है ना?
1: बिल्कुल, आपकी बातों में भी झलक रहा है उर्दू
0: हाँ
1: में।
0: जी। और मैं निकलता, जहां मुझे मिल जाए पानी पीने का, पसीने सुखाने का, वो सब चीज मैं कर लेता था। ऑडिशन जब भी मैं कहीं जाऊं और दिन में अगर एक भी ऑडिशन हो जाए तो ऐसा लगता था आज का दिन सफल हो गया मेरा। क्यों? क्योंकि जब सामने कैमरा होता था तो मुझे लगता मैं क्या कर दूं। कई बार स्क्रिप्ट हम घर से अपना कुछ मोनोलॉग तैयार करके ले जाते थे
1: जी
0: और सामने वाला रिकॉर्ड करने वाला अगर उसको मजा आ रहा है तो हम उसी में इम्प्रोवाइज करने लगते थे,
1: बिल्कुल।
0: किसी तरह इसको मैं इंप्रेस कर दूं अपने एक्ट से। ये फितूर, ये दीवानगी, ये पागलपन मेरे सर पे सवार हो गया था और ये चलता रहा मैम। बट उस समय एक चीज मेरे ध्यान में था कि ऑडिशन दो और भूल जाओ। क्यों? क्योंकि यहां लोड बढ़ जाता था दिमाग पे कि भाई मैंने बड़ा अच्छा ऑडिशन दिया, कॉल नहीं आया, पता नहीं क्या होगा। तो अपन ऑडिशन दे दे के भूल जाते थे।
1: तो पंचायत का ऑडिशन भी आपने देके भूल गए या किस तरह से यहां तक पहुंचे?
0: पंचायत के ऑडिशन में ये हुआ कि तब तक 1.5 साल हो चुके थे मुंबई में,
1: अच्छा।
0: साल 1.5 साल, और मेरे कुछ दोस्त, मेरे नहीं मतलब मेरे रूममेट के एक दोस्त,
1: जी
0: वो उनकी महफिल जमती थी मेरे घर पे। तो अंकित मैं फ्लैटमेट हुआ करता था,
1: जी
0: फ्लैटमेट क्या हम लोग समझिए कि रैन बसेरा ही था। वो एक साथ 6 7 8 लोग रह रहे हैं
1: अच्छा
0: और कमाल की बात ये थी कि 7 8 लोगों के लिए मैं ही रोटी बेलता था।
1: अच्छा रोटी का काम आपको सौंपा गया था।
0: नहीं, सौंपा क्या गया था, कोई कुछ करते ही नहीं थे। और मुझे ये था कि इस समय पे मुझे बाहर जाना है, ऑडिशन देना है, समय पे
1: जी
0: सो जाना है। तो वो सब इंतजार करते रहते थे कि चंदन आएगा तो खाने को मिलेगा। तो उन सब के लिए मैं रोटी बनाता और बाद में फिर मैं टिक्कर बनाने लगा।
1: अच्छा
0: टिक्कर जो रोटी का बहुत मोटा रूप।
1: अच्छा छोटा और मोटा रूप, छोटा और मोटा रूप।
0: हाँ जी,
1: अच्छा
0: बहुत मोटा मोटा मैं, क्योंकि मुझे
1: हाँ
0: बड़ा मुश्किल हो गया था वो,
1: जी
0: मतलब 1 1 घंटे तक रोटी बेलना, तो मैं
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: मोटा
1: जी
0: मोटा बनाने लगा।
1: जी
0: खैर, तो हाँ महफिल जमती और फिर लोग आते हैं। तो उसमें से एक मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त बन गया, लतिन। तो उन्होंने कहा कि यार चंदन तुम कल आ जाओ ऑफिस में, तुम्हारा हम इंट्रोडक्शन करवा देंगे। मैंने कहा अरे वाह, बहुत सही, इतने साल से आज तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है कास्टिंग वे में। तो उसने बुलाया, अगले दिन हम पहुंच गए वहां। कमाल की बात ये थी कि पंचायत सारे कैरेक्टर लॉक हो चुके थे, सिर्फ दो कैरेक्टर बचा हुआ था। एक एक दिन का वो काम था, एक इलेक्ट्रीशियन का और एक दूल्हे का। बोला देख दूल्हा तो तू लग नहीं रहा, इलेक्ट्रीशियन बन जा, उसका ऑडिशन है। उन्होंने स्क्रिप्ट दिया, बोला ये करके तैयार, थोड़ा सा तैयारी कर लो और आ जा।
1: जी
0: मैंने कहा ठीक है। एक दो बार पढ़ा और फिर मैंने वो ऑडिशन देखे, फिर वही बातें भूल जाओ। भूल गया फिर अपने दूसरे ऑडिशन की तैयारी घूम घूम के, कि यस ऐसे दरवाजा नॉक करता था कि भाई सर कुछ है क्या मेरे लिए, कुछ है क्या मेरे लिए। ये फिर शुरू हो गया मेरा। उस समय चंदन चंदन कुमार जो हमारे पंचायत के राइटर हैं और दीपक मिश्रा जो हमारे पंचायत के डायरेक्टर हैं, तो इन्होंने देखा मेरा ऑडिशन और उन्होंने उसी समय डिसाइड किया कि यार इस लड़के से अपन कुछ और करवाते हैं, बहुत सही लग रहा है। तब तक विकास के लिए कोई और कैरेक्टर लॉक हो चुका था।
1: अच्छा
0: तो उनके मन में आया क्यों ना हम विकास एक बार ट्राई करें इसे। तो आया विकास का ऑडिशन मेरे पास। मुझे लगा कि यार ये क्या ही, मतलब कहाँ मैं वन डे टू डे करता हूँ, इन्होंने पैरेलल लीड कैरेक्टर मुझे ऑफर कर
1: बिल्कुल
0: रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, मतलब हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अपना तो चल ही रहा है, रोज भटकेंगे फिर से। और मैं एकदम कफन बांध के आया था अगले 20 25 30 सालों के लिए, ये
1: अच्छा
0: नहीं कि मुझे फट से काम, नहीं, बहुत समय, बुढ़ापा तक, वो सोच के आया था मैं। बट आ गया पंचायत का ऑडिशन और अगले दिन चला गया ऑडिशन के लिए, दिया
1: शुरू किया
0: ऑडिशन।
1: जाए।
0: हाँ दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं।
1: अच्छा
0: तो रामनगर में उनका ऑफिस आ गया मैं मिलने के लिए। यकीन मानिए मुझे उस समय तक मैं टीवीएफ जानता भी नहीं था, कुछ
1: अच्छा
0: वीडियो मैंने जरूर देखे थे बट जानता नहीं था मैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है।
1: क्या बात है,
0: तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: क्या बात है, क्या बात है। इस तरह का कॉम्प्लीमेंट मिलना ही बहुत बड़ी बात है।
0: हाँ जी।
1: इसी बात पर कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे?
0: अरे वाह, मैं इस वक्त जो मुझे याद आ रहा है, जब मैं स्कूल शुरू किया था ना तो अक्सर फिल्म का एक गाना बहुत उस समय, आजकल तो वायरल कहते हैं, उस समय तो लोकप्रिय कहा करते थे।
1: पॉपुलर,
0: हाँ जी हाँ
1: बहुत
0: जी।
1: पॉपुलर।
0: तो एक बार आजा आजा अक्सर फिल्म का गाना है,
1: जी,
0: इमरान हाशमी,
1: सुनवाते
0: उनका
1: हैं गीत,
0: दौर था ये।
1: सुनवाते हैं गीत।
0: हाँ जी।

0: पंचायत की बात चलिए तो हम आते हैं कि आपके किरदार पर, उस किरदार के लिए कुछ तैयारी की आपने, जैसे मैनरिज्म कुछ है उसके, उसकी बोली किस तरह से बोलेगा, इसके पीछे कुछ तैयारी हुई, वर्कशॉप हुई, किस तरह से ये, क्योंकि बहुत पसंद किया जाने वाला किरदार है, जिस
1: बिल्कुल
0: हिसाब से वो स्लो, बड़े आराम से, इत्मीनान से बोलता है, चलता है, तो वो तैयारी कैसी हुई?
1: जी। तो जब स्क्रिप्ट मेरे पास आया तो जैसा वो थिएटर में मुझे बताया गया था कि जितने बार स्क्रिप्ट पढ़ोगे ना तो वो कैरेक्टर एक समय के बाद

0: खुद से बोलने लगेगा कि मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूं, मैं
1: जी
0: ऐसा हूं, तो पंचायत का जो विकास है वो स्क्रिप्ट से मैंने उठाया। मतलब
1: अच्छा
0: उसको जितना मैं पढ़ा, मतलब बहुत पढ़ा मैंने,
1: जी
0: कि अगर ये प्रधान जी से इस तरह से बात कर रहा है, ये प्रहलाद चा से ऐसी बातें कर रहा, या सचिव से ऐसी बातें कर रहा, तो ये किस तरह का कैरेक्टर होगा, इसके अंदर कैसी एनर्जी होगी, ये सब कुछ आप जब बार बार बार बार स्क्रिप्ट पढ़ते हो ना, आपको सब कुछ मिल जाता है। इस एक स्क्रिप्ट में अगर आप बार बार पढ़ो तो उसमें सब कुछ रहता है, आपको कुछ भी अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं होती,
1: बस उसमें रमना और बसना होता है
0: बस।
1: स्क्रिप्ट में।
0: तो समझिए कि विकास को इतना, मैं चूंकि वो पहला प्रोजेक्ट था
1: जी
0: तो मैं किसी तरह से कोई गलती की गुंजाइश नहीं रखना चाहता था,
1: जी
0: तो उसको बहुत पढ़ा मैंने। जैसे कई बार होता है ना कि जो बुक आपका बहुत पसंदीदा होता है, आप इतना पढ़ जाते हो कि उसके पेज थोड़े से मटमैले हो जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: हर जगह फिंगरप्रिंट होता है,
1: बिल्कुल
0: गंदे से हो जाते हैं हर जगह। तो मेरा स्क्रिप्ट भी इसी तरह से हो गया था,
1: जी
0: कहीं भी मुझे अगर 5-10 मिनट का भी समय मिलता मैं एक दो पेज पढ़ लेता,
1: अच्छा
0: इतनी दीवानगी थी मुझे अपने स्क्रिप्ट को लेकर के। तो एक तो दिमाग में ये भी था मैम कि अपन एक्टिंग नहीं करेंगे कहीं भी, जितना अच्छा, ये मेरा ना मतलब अभिनय को लेकर के मेरा अप्रोच भी हमेशा से रहा है
1: जी
0: कि लोगों को ये ना लगे कि अच्छा हेयर मेकअप करके अभी तैयार है तो अभी मुझे एक्टिंग करनी है। मैं जैसा हूं या जैसा मेरा कैरेक्टर है अपन उसी तरह से करेंगे, क्यों हम कैमरा लगते ही ये दिखाने लगते हैं कि देखो अब हम एक्टिंग करेंगे, अब तैयार हो जाओ हमें देखने के लिए। मुझे इससे परहेज शुरू से था, मुझे नहीं पता कि अच्छी एक्टिंग क्या होती है, आज तक मैं ढूंढ रहा हूं, लेकिन हाँ मुझे बुरी एक्टिंग क्या होती है इस बात की समझ बहुत पहले हो गई थी,
1: और मुझे लगता है वो समझ होना बहुत जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं उनसे बचता था, और ये था कि क्या करना है ये तो एक्सप्लोर करो, ये बहुत महासागर है, ये पूरा खुला आकाश है, क्या करना है आप ढूंढो, लेकिन क्या नहीं करना है ये पहले उस
1: पहले
0: पर
1: पता होना
0: बिल्कुल
1: चाहिए।
0: पता होना चाहिए। तो विकास के साथ भी ऐसा ही किया मैंने,
1: जी
0: अपने गांव में जिस तरह से मैं देखता था कि लोग जिस तरह से खड़े होकर के, 5 लोग अगर पुलिया पे खड़े हैं या बैठे हैं और बात कर रहे हैं, तो कितना अगर बहुत इन्वॉल्व है, उस तरह की बातें हो रही हैं, तो उनका हाथ पांव कैसे रहता है, एनर्जी कैसी होती है, मेरी ये पूरी कोशिश रही। आप देखना किसी भी फ्रेम में आपको नहीं लगेगा कि ये लड़का अलग किसी दूसरे शहर का है, या ये लड़का विकास इस गांव का नहीं है। तो इन सब पर मेरा बहुत ही मैं चाहता था कि घुस जाऊं, जैसे आप कोई शर्ट पहन लेते हो, कोई कोट पहन लेते हो और वो आपका हो जाता है, उसी तरह से विकास को मैंने पहन लिया।
1: बिल्कुल, और
0: अब
1: वो दिखता भी है। और इसके एक दो सीन है
0: जी
1: जिसकी मैं बात करना चाहूं। जैसे एक था जिसमें विकास वो बाइक पे बैठता है और पूरा पूरा पलंग उठा के सर पर और चल देता है।
0: हाँ
1: तो
0: जी,
1: इस
0: हाँ
1: तरह
0: जी।
1: के जो सीन है ये कहीं इम्प्रोवाइज्ड है या स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे पहले से?
0: नहीं, ये जो बेसिकली जो खाट जो हम सर पे उठाते हैं
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: स्क्रिप्ट में लिखा था,
1: अच्छा
0: लेकिन पंचायत में एक बड़ी अच्छी बात यह है, हमारे क्रिएटर्स जो हैं दीपक सर, अरुणाभ सर और चंदन सर जो राइटर हैं, ये अपने एक्टर को बड़ा खुला छोड़ देते हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात अभी मतलब शुरू से ही उन्होंने कहा है कि देख ये यूनिवर्स है, हमने अपने सारे कैरेक्टर को इस यूनिवर्स में उतार दिया है, मैं ये इंसिडेंट या ये इवेंट मैंने स्क्रिप्ट में लिखा है, बट ये होगा कैसे, आपको उस मोमेंट में, उस स्पेस में, उस एम्बियंस में जो समझ में आ रहा है आप करो। यही वजह है कि पंचायत में जितने कैरेक्टर हैं कई बार वो स्क्रिप्ट के बियॉन्ड चले जाते हैं और बहुत खूबसूरत चीज निकाल के ले आते हैं, है ना। और इसके लिए जरूरी है कि आप उस यूनिवर्स को समझें, अगर आप नहीं समझोगे ना तो ऐसा लगेगा एयर ड्रॉप किया हुआ ये कैरेक्टर है,
1: जी
0: सिर्फ स्क्रिप्ट बोल रहा है, सिर्फ वो लाइंस बोल रहा है, ऐसा लगेगा। तो ये छूट, ये लिबर्टी हमारे क्रिएटर्स ने हम लोगों को दिया है, और मुझे भी इंप्रोवाइज करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार जब आप जो हमारे राइटर हैं डायरेक्टर हैं उन्होंने कुछ सोचा है इस सीन को कि ऐसा रखेंगे, उनके अतिरिक्त आप कुछ कर देते हो, उनसे आगे कुछ बढ़ा देते हो अपने सीन को या अपने कैरेक्टर को, तो यकीन मानिए जब आप होटल जाते हो वापस अपने फ्रेश होकर के, नहा के अपने बेड पे आते हो, तो बड़ी खुशी मिलती है आपको कि वाह मैंने इस
1: वो
0: सीन में,
1: संतोष मिलता है
0: यस
1: कि आज क्या किया।
0: आज बड़ा अच्छा सीन किया
1: जी
0: मैंने,
1: जी जी
0: और
1: बिल्कुल
0: बहुत ही खुशी खुशी आपको नींद आ जाती है। फिर अगले दिन जब सुबह 4:30-5 बजे का अलार्म बजता है, फिर आप वही जुनून, वही पागलपन आपको काम आता है।
1: तो

0: सेट पे कैसा माहौल है आपके को एक्टर से, ऑफ स्क्रीन भी कैसा माहौल है, किनके साथ मिलना जुलना तो लगा रहता होगा?
1: देखिए, एक तो बहुत यह है कि लोगों को लगता है कि बहुत हम लोग मिलते जुलते हैं, पर्दे पे इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन मुंबई बिल्कुल उल्टा है, किसी के पास भी समय नहीं है और कई बार डर भी लगता है कि भाई कोई कहीं जाऊं पता नहीं क्या होगा, उसकी प्राइवेसी है, उसका क्या है। तो सेट पे तो हम लोग सब बहुत मिलजुल के, सब लोग, और ये सभी अभी इतने 8-9 साल का अनुभव है मेरा,
0: जी
1: सेट पे हम लोग जितनी केमिस्ट्री, और सिर्फ मैं किसी एक प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, सभी प्रोजेक्ट में यही होता है कि
0: जी
1: हम लोग सेट पे बहुत अच्छे रहते हैं, और जैसे ही हमारा पैकअप होता है हम सब अपनी अपनी दुनिया में चले जाते हैं, अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं, है ना। और ये कई बार सही भी होता है, कई बार मुझे गलत भी लगता है, बट ठीक है, मैं भी इस धारा में बह रहा हूँ, किसी के पास समय नहीं होता कि वो मिले, पुराने दिनों को याद करे, सिर्फ
0: कभी
1: का
0: कभी किसी प्रोजेक्ट में अगर फिर से उनसे मुलाकात हो, फिर वो एक मिलना अलग हो जाता है।
1: एक तो हम लोग का जो भी एक्टर होते हैं
0: जी
1: उनका बहुत रिसीविंग नेचर होता है।
0: जी
1: मान लो कि अगर आपकी एनर्जी मुझसे नहीं भी मिल रही है, आप बहुत अलग ख्यालात के हैं, मैं अलग हूं, बट जब हमारा सीन होता है तो हमें अपनी एनर्जी को मैच करके और उस वक्त को बहुत अच्छे से अपने कैरेक्टर को करना होता
0: जी जी
1: है ना।
0: जी बिल्कुल।
1: तो लोग को लगा, अरे भाई क्या है, बहुत बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है इन लोगों में। तो ये हमारा जॉब का एक सबसे पहला एक स्टेप है ये।
0: अच्छा, पंचायत के बाद क्या फर्क आया है जब आप अभी वापस गांव जाते हैं मिलने झुलने परिवार से, दोस्तों से, पहले के चंदन में और अभी वो जिस तरह से बिहेव करते हैं या मिलते झुलते हैं, कुछ फर्क है दोस्तों के बीच या बाहर के लोगों के बीच?
1: देखिए, उनके नजर उनका नजरिया बदला होगा मेरे लिए, ये तो मुझे ऐसा लगता भी है,
0: हाँ
1: बट मैं तो बिल्कुल भी अंदर से नहीं बदला हूं, मैं
0: अच्छा
1: जैसा था वैसा ही हूं, पहले भी इसी तरह से मैं सोचता था, इतना ही कूल और कॉन्फिडेंस में रहता था जितना आज है, और कभी मुझे अभी कई बार ऐसा लगता है कि ये तो होना ही था मेरे लाइफ में,
0: जी
1: तो कई बार आश्चर्य नहीं होता मुझे कि अरे।
0: लेकिन बाहर जो बाकी लोग मिलते हैं उनकी मेहमान नवाजी में कुछ फर्क आया?
1: बिल्कुल, कई बार तो उनको लगता है कि भाई ये चंदन तो आप, जैसे मुझे बहुत बुरा लगता है जब दोस्त लोग अजीब बिहेव करते हैं,
0: अच्छा
1: हाँ उनको लगता है कि अरे इसको ऐसे मत बोलो, इसको ऐसे बैठाओ, इसके लिए थोड़ा
0: कुछ
1: पहले
0: कुछ
1: चंदन
0: बुरा
1: को,
0: लग जाएगा। अच्छा
1: हाँ तो मुझे लगता है ओ हेलो, मैं वही चंदन हूँ भाई, ऐसा क्यों तुम बिहेव कर रहे हो, जैसा पहले थे वो सही रहो। तो लोगों का नजरिया बदला है, लेकिन मेरा तो बिल्कुल भी, जैसा मैं पहले था
0: अच्छा
1: आज भी वैसे ही हूँ, घर जाऊं या कहीं भी जाऊं
0: जी
1: मैं वही कहा कि ये मेरा जॉब है अभिनय करना, लोगों को लगता है कि अरे ये तो पर्दे पे आ रहा है ये सब चीजें, बट ये मेरा जॉब है, और बहुत ही संजीदा और गंभीरता के साथ, जितना एक डॉक्टर इंजीनियर आर्मी ऑफिसर अपने काम करते हैं उसी शिद्दत के साथ, उसी मेहनत के साथ, उसी ईमानदारी के साथ हम लोग भी काम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आपसे बहुत बेहतर हैं या ऐसा कुछ, कुछ भी नहीं। हाँ बट कई बार होता है कि कैमरा देख करके लोगों को थोड़ा सा रोमांच फील होता है, मैं समझ सकता हूं कि वो अगर वो ऐसा सोचते हैं तो बुरी बात नहीं है, लेकिन ये मेरा एक जॉब है, मैं बस एक जॉब कर रहा हूं, मुझसे बेहतर काम जो सरहद पे हैं, जो डॉक्टर हैं, जो
0: बिल्कुल।
1: इंजीनियर हैं, वो या जो प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, वो मुझसे ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, उनका योगदान समाज में मुझसे कहीं ज्यादा है।
0: क्या बात है, बिल्कुल। सुनवाते आपके पसंद का एक गीत
1: बिल्कुल सुनेंगे हम,
0: जरूर बताएं,
1: हर घड़ी बदल रही है
0: रूप
1: रूप
0: जिंदगी,
1: जिंदगी की,
0: बिल्कुल सुनवाते हैं
1: है
0: गीत।
1: ना।

0: अभी हम बात करते हैं गुलमोहर
1: ओ
0: की।
1: वाह,
0: गुलमोहर में आपने काम किया और उसमें मनोज बाजपेयी जी के साथ काम किया, शर्मिला टैगोर जी भी स्क्रीन पर थी आपके साथ। उससे जुड़े कुछ खास अनुभव किससे आप सुनाना
1: यस
0: चाहें,
1: यस यस,
0: कैसा लगा उनके साथ काम करके और कैसा अनुभव रहा?
1: बिल्कुल। गुलमोहर मेरे फिल्मी करियर के लिए एक ऐसा है फिल्म जिसको मैं हमेशा याद रखूंगा। हालांकि जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आया था तो मैंने मना ही कर दिया था।
0: अच्छा, क्यों?
1: हाँ, क्योंकि कैरेक्टर मुझे सही नहीं लग रहा था कि यार मैं इस तरह का कैरेक्टर तो नहीं करूँगा। बट हमारे जो डायरेक्टर हैं राहुल चिटेला, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि सुनो एक बार मुझसे मिलो, करना ना करना बात की बात है, पहले एक बार मिलो। मैं मिला और मुझे ये था कि अगर मैं जाऊंगा तो ये तो मना ही लेंगे,

0: जी
1: बट मैं बहुत जिद्दी रहूंगा अपने जिद पे कि भाई मुझे नहीं करना। और गया बांद्रा में उनके ऑफिस, और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं करना चाह रहे हो। मैंने कहा सर मैं ये गेट कीपर इस तरह का कैरेक्टर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे एक डर भी था कि अगर मैं इस तरह करूंगा तो लोग मुझे इसी तरह के कैरेक्टर देते रहेंगे,
0: टाइप कास्ट कर
1: टाइप
0: देंगे
1: कास्ट कर देंगे, और अपन बहुत अंदर भरा हुआ है मामला,
0: जी
1: तो फंसना नहीं है किसी एक कैरेक्टर में। उन्होंने कहा कि देख चंदन करना तो तुम्हें ही है ये कैरेक्टर, हाँ बोलो ना बोलो, अब तुम ये बताओ कि इस कैरेक्टर को और कैसे, तू क्या क्या नहीं चाहता है इसमें, और इसमें हम और क्या कर सकते हैं। एक नया लड़का उस फिल्म में, इतने दिग्गज लोग, मनोज वाजपेयी सर, शर्मिला टैगोर, तलत अजीज, अमोल पालेकर, वहां पे मेरे जैसा लड़का एक बोल रहा है कि सुनो मैं पूरे फिल्म में कभी कुछ जो कॉस्ट्यूम है ना वो वर्दी वाला गेट कीपर का वो नहीं पहनूंगा, पूरे फिल्म में कुछ काम नहीं करूंगा मैं, कुछ उठाना हुआ कुछ ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तो करोगे क्या?
0: हाँ
1: मैंने कहा मैं पढ़ाई करूंगा, मैं एक ऐसा लड़का जो गांव देहात से आया है दिल्ली में, और इस शहर में वो इंग्लिश पढ़ना चाह रहा है, तो कुछ ऐसा कैरेक्टर रखते हैं। राहुल कमाल का, बहुत कमाल के इंसान, वो मेरी हर बात को मानते चले गए। उन्होंने बोला बस मैं यही चाह रहा हूँ, यही करो,
0: अच्छा
1: और पता नहीं क्यों मेरी सारी बातें उन्होंने मान ली, और मैंने वो फिल्म किया, और मुझे अब मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं गुलमोहर में हूँ, क्योंकि पता नहीं इतने दिग्गज लोग के साथ फिर दोबारा कब काम करूंगा।
0: बिल्कुल
1: और जैसे शर्मिला मैम, मुझे एक और घटना याद आ रही है कि एक तो मेरा लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया था इस एक्शन, मतलब एक ऐसा
0: हाँ एक
1: सीन
0: सीन
1: था
0: में
1: वहां पर,
0: जी
1: कुछ झड़प था, आपसी झड़प, उसमें मेरा को एक्टर, उन्होंने मुझे पैर पे मार दिया था, तो मेरा लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, और मनोज सर को लगा कि मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ
0: अच्छा
1: जबकि मैं दर्द के मारे
0: जी
1: तड़प रहा था। तो एक पॉइंट के बाद जब मैं अपना लाइंस नहीं दिया उनको, तो वो आए और उनको लगा सच में ये कुछ तकलीफ में है, दर्द में है, और आकर उन्होंने फिर मुझे उठाया और तुरंत एम्बुलेंस ला के मुझे भेजा गया हॉस्पिटल। बट मुझे याद है कि शर्मिला मैम का जब रैपअप हो रहा था लास्ट डे उनका, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि अरे चंदन को बुलाओ, चंदन को बुला, और उन्होंने केक कट करके वो एक छोटे से प्लेट में रख करके मेरा वेट कर रही थी कि
0: अच्छा
1: मैं चंदन को खिलाऊंगी पहले, आई डोंट नो। और मुझे था कि भाई बड़े लोग हैं, अपना केक कट हो रहा है, मैं उधर कहीं स्पॉट बॉय लोग के साथ कहीं बैठ के अपना बैठा था, तो प्रोडक्शन भागा भागा है, अरे सर आपको ढूंढा जा रहा है। मैंने कहा मुझे कौन ढूंढ रहा भाई, शर्मिला मैम। तो जब मैं वहां गया तो मैम ने वो प्लेट मुझे दी, अपने हाथों से खिलाया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब
0: जिन्हें
1: ये,
0: पर्दे पे बचपन से
1: हाँ
0: देखा
1: जी
0: और वो आज अपने हाथ से आपको केक खिला रहे हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: क्या बात है।
1: मैंने क्या, मेरे दादाजी ने भी उनकी फिल्में देखी होंगी, मेरे पिताजी ने भी देखी होगी,
0: जी जी
1: और
0: बिल्कुल।
1: मैं उनके साथ काम किया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।
0: और मनोज वाजपेयी जी के साथ भी अपने स्क्रीन
1: हाँ
0: शेयर
1: जी
0: किया
1: हाँ जी हाँ
0: है,
1: जी।
0: उनसे क्या कुछ, कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसा
1: एक
0: किस्सा।
1: तो हाँ मुझे एक एक एक सीन याद आ रहा है कि मैं और शांति, एक सीन चल रहा था, वो किचन में थी और फिर वो मेरे पास आती हैं, तो मनोज सर, सीन चल रहा था, मनोज सर वहीं पे चेयर लगा करके बाहर बैठ गया, उस दिन उनका सीन भी नहीं था, मुझे लगा यार क्यों बैठे हुए हैं ये, भाई मैं नया एक्टर हूँ, मैं मतलब इनसिक्योर हो जाऊंगा, मैं मतलब मुझे डर लग रहा था उनको देख के कि
0: जी
1: मैं, जिनको भाई जो इतने कमाल के एक्टर हैं उनके सामने मुझे एक्टिंग करने के लिए बोल रहा है, नहीं प्लीज आप चले जाओ, मेरे मन में यही चल रहा था।
0: अच्छा
1: और किसी तरह वो सीन बहुत अच्छा हो गया, और फिर जब सीन खत्म हुआ तो सर आए मेरे पास, उन्होंने कहा तू कहाँ से है? मैंने कहा सर मैं तो बिहार से हूँ। अरे बहुत सही, या थिएटर करते हो? मैंने कहा जी सर। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, और उन्होंने ऐसे पीठ पे एक बार ऐसे थपथपा के वो चले गए। फिर तो हमारा पहला उनसे जो हम कह सकते हैं मुलाकात, इस तरह से हुआ मनोज सर के साथ मेरा जी।
0: यहाँ पर आपकी पसंद का गीत कौन सा सुनवाना चाहेंगे आप?
1: इस वक्त मैं अपने पसंद का गाना सुनना चाहता हूँ,

0: इतनी दिलचस्प बातें हो रही है आपके साथ।
1: हाँ जी,
0: और अब आते हैं हम चंपारण मटन करके
1: क्या बात।
0: एक शॉर्ट फिल्म थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: FTI की फिल्म है ये,
0: हाँ
1: रंजन इसके डायरेक्टर हैं, और ये पहली ऐसी फिल्म है जो बज्जिका में बनी है। लोगों को लगता है कि बिहार में सिर्फ भोजपुरी, मैथिली है ना, लोगों को लगता है कि बिहार में सिर्फ भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन ऐसा
0: जी
1: नहीं है। भोजपुरी के अलावा भी कई क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं। एक बड़ा खूबसूरत एक कहावत है बिहार में कि कोस कोस पे पानी बदले, तीन कोस पे बानी, है ना, मतलब
0: तीन
1: हर,
0: कोस पे भाषा
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: बोली बदलती
1: हाँ
0: है।
1: जी। और बज्जिका मेरी मातृभाषा है, मेरी दादी, मेरे दादा, मेरे घर में आज भी जब अगर आपके सामने मेरा फोन आ जाए तो मैं अपनी माता जी से, पिताजी से बज्जिका में ही बात करूंगा।
0: अच्छा,
1: तो इस भाषा में अगर मुझे मिले फिल्म करने के लिए तो मैं कैसे छोड़ सकता था। और ये FTI की फिल्म थी, बहुत प्यारी फिल्म इन लोगों ने बनाई। हालांकि मैं उस समय लगातार शूट चल रहा था, तो 15 दिन का एक गैप था। मैंने कहा इस बीच ये फिल्म हम शूट करेंगे, स्टूडेंट फिल्म है, मजे मजे में मैं चला गया था। क्योंकि एक आदत होती है ना कि आप OTT के लिए काम कर रहे हो या फिल्म कर रहे हो, और अचानक से एक स्टूडेंट फिल्म करने के लिए चले जाते हो, जहाँ पे बहुत सारी चीज ना, आपको होटल अच्छा मिलेगा, ना वैनिटी मिलेगी
0: एक
1: कोई,
0: अलग तरह का अनुभव।
1: हाँ जी। बट मैं FTI इसलिए चला गया था इस फिल्म को करने के लिए, उसके दो कारण थे। पहला कि थोड़ा सा मुझे ना एक ब्रेक चाहिए था, जो मेन स्ट्रीम में काम कर रहा हूँ उसे मुझे एक ब्रेक चाहिए था, मुझे लगा कुछ मजे करके आ जाएंगे बच्चों के साथ। दूसरा कारण ये कि FTI में मैंने बहुत पहले राइटिंग के लिए अप्लाई किया था, मुझे ये था कि एक्टिंग के लिए तो मेरा होगा नहीं, तो क्यों ना अपन राइटिंग में चले जाएं। क्योंकि मैं उस समय दैनिक जागरण में जॉब करता था कंटेंट राइटर, तो मैं सोचा कि यहाँ पर भी राइटिंग करके यहाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर मैं पूरे दिन एक्टिंग वाले स्टूडेंट के साथ बैठा रहूंगा, उन्हीं के क्लास में बैठा रहूंगा, थोड़ी भगा देंगे क्लासरूम से, बैठूंगा वही एक्टिंग सीखता रहूंगा। बट उस समय मेरा वेटिंग एक रह गया राइटिंग में, और सच पूछी तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने कुछ पैसे कमाए थे मुंबई आने के लिए, तो उधर खर्च हो जाते हैं, तो बेहतर है कि, तो ये दो कारण थे। और बड़ी अच्छी फिल्म उन लोगों ने बहुत प्यार से बनाया, सब बच्चे ही थे, तो 6 या 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार से हमने ये शूट किया, और बहुत इम्प्रोवाइज भी किया हम लोगों ने। बट ऐसा हमने कुछ सोचा नहीं था कि ये
0: अच्छा,
1: फिल्म स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो जाएगी और फाइनल राउंड से बाहर हो जाएगी। कहाँ, अब हम लोग गांव देहात में छोटे छोटे नाटक करते थे, ऑस्कर के लिए हमारी फिल्म नॉमिनेट हो जाएगी, ये किसने सोचा था।
0: बिल्कुल।
1: बट ठीक है, विधाता को जो मंजूर है, अपन उस पथ पे चल रहे हैं।
0: हाँ, और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म गई है।
1: बिल्कुल,
0: इसके साथ ही आरजे बस्तर फिल्म
1: हाँ।

0: जी
1: उसके बारे में भी कुछ बताए, वो भी मेरे ख्याल से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे गई है।
0: बिल्कुल
1: एक तरफ ये पंचायत जो मासेस के लिए
0: हाँ
1: है और
0: जी,
1: एक तरफ ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म, दोनों में काम करने का फर्क कितना है?
0: बहुत खूबसूरत सवाल है मैम ये। मैं इस तरह की फिल्में इसलिए करता हूं ना, इससे मुझे सुकून और बहुत शांति मिलती है,
1: अच्छा
0: बहुत प्यार मिलता है। आरजे बस्तर, मैं बस्तर में गया शूट करने के लिए, एकदम बिहर जंगल में, चारों तरफ धान की खेती है, और बस्तर बहुत खूबसूरत जगह। जितना भी हम लोग बाहर सुनते हैं कि बस्तर में ये, बस्तर में पूरा बस्तर लाल रहता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। कहीं कोई डर नहीं, कहीं कोई भय नहीं, बहुत ही सपोर्टिव लोग और बहुत प्यारे लोग। मैं पहली बार जीवन में आदिवासी भाइयों से मिला, इतना खातिरदारी करते हैं, ऐसा लगता है कि जान निकाल के रख देंगे आपके स्वागत के लिए।
1: अच्छा
0: तो जब आरजे बस्तर में शूट कर रहा था, तो एक तो कहानी बड़ी अच्छी, मनीष मानिकपुरी वहीं के रहने वाले हैं, बहुत कमाल के डायरेक्टर, वो आदिवासी लड़की की कहानी है जो रायपुर में काम करता है, दिहाड़ी मजदूर है, और उसको एक लड़की से प्यार है, और अपने प्यार के खातिर वो किस तरह से किस हद तक जाता है। और चूंकि आदिवासी में ना, वहाँ महिलाओं पुरुष में कोई ऐसा कुछ है नहीं, वो सब एक समान है, तो वहाँ की महिलाएं भी बहुत सशक्त होती हैं, सारे घर में जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है वही लेती हैं। तो इस फिल्म में भी यही है, जो हमारे अपोजिट हैं उनका ये है। अच्छा, उनको भी आरजे बनना है,
1: अच्छा
0: और मैं पीछे पीछे हूँ, उनका कंधा थामे हूँ कि आपको जो बनना है बनो, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत है। और अपने मोहब्बत के लिए उसका जो कैरेक्टर है रमेश, वो हद से गुजरने के लिए तैयार है। बहुत बहुत प्यारी कहानी।
1: चलिए, यहाँ पर आपके पसंद का एक गीत हम सुनवा देंगे अपने श्रोताओं को।
0: हाँ जी, हाँ जी।

0: अभी हाल फिलहाल आपकी फिल्म आई गांधारी और आखिरी राइड,
1: हाँ जी, हाँ
0: ये कुछ
1: जी,
0: अलग हटके रोल है जो अब तक आपने किया है,
1: हाँ जी।
0: क्या अलग है, कैसा अनुभव रहा?
1: गांधारी तो मैंने इसलिए कर लिया था क्योंकि इसके डायरेक्टर देवाशीष मखीजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त, और मैंने इनको इनका काम जोरम में देख रखा है, और जैसा मैं चाहता था वैसी फिल्म बनी नहीं। और गांधारी करने का एकमात्र उद्देश्य ये भी है क्योंकि मैं थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर करना चाहता था, है ना। तो मुझे लगा ये एक बेबी स्टेप है थोड़ा सा नेगेटिव वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए।
0: एक कदम है वो बस।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसीलिए मैंने वो फिल्म करी। बट ठीक है, हमारा काम सिर्फ अभिनय करना होता है। जैसे ही हमारा रैपअप होता है, खत्म हो जाता है सब कुछ कट के बाद, है ना। बाकी ये फिल्म एडिट टेबल पे फिर से फाइनल बनती है, और बहुत सारे एक्सटर्नल एलिमेंट भी होते हैं जो फिल्म को प्रभावित करते हैं। मेरे हिसाब से गांधारी के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। और आखिरी राइड वो भी बहुत मेरे दिल के करीब वाली फिल्म है, इसलिए क्योंकि कहानी बड़ी अच्छी है इसकी, और अनुराग कश्यप सर ने इनको इस फिल्म को प्रेजेंट किया है। और मुझे याद है कि ये फिल्म भी मैं कहीं और, मेरा शूट था पहाड़ पे किसी और दूसरे फिल्म को लेकर के, लेकिन डेट नहीं मैनेज हो रहा था, मतलब क्लैश हो रहा है डेट, तो मैंने उस फिल्म को छोड़ के आखिरी राइड करना पसंद किया जिसमें बिल्कुल भी बजट नहीं था। बट मेरे लिए कहानी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं एक ऐसे स्टेज में हूँ जहाँ पे अपने पसंद का काम कर सकता हूँ। मेरे लिए अब कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, अच्छी कहानी इंपॉर्टेंट है।
0: अपनी पसंद रख सकते हैं अब आप
1: बिल्कुल
0: सामने।
1: बिल्कुल।
0: बिल्कुल।
1: क्या
0: और ऐसा कौन सा किरदार है जो आप के मन में है कि ये तो मुझे करना है, इस तरह का अगर कुछ किरदार है चाहते हैं? नेगेटिव शेड तो आपने कहा कि नेगेटिव, कोई ऐसा आइडल कि इस तरह का किरदार तो मुझे पर्दे पे उतारना है जब कभी मौका मिले?
1: बिल्कुल, ऐसे तो बतौर अभिनेता अभी तो मतलब मुझे ऐसा लगता है अभी तो बहुत नया हूँ, अभी तो बहुत सारे कैरेक्टर करने हैं, बहुत सारे चीज़ों को जानना है, समझना है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर ना एक बहुत गंभीर अभिनेता है जो आना बाकी है।
0: सीरियस रोल।
1: हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि कॉमेडी हो या बाकी चीज़ें हो वो सब तो ठीक है, बट जो मेरा कोर एक्टर है वो एक बहुत ही गंभीर है, बहुत संजीदा है। जैसे अगर आप समझना चाहें तो मैं एक उदाहरण दूं कि अगर आप हीट देख रहे हो, रॉबर्ट डिनर और अल पचिनो की फिल्म है जिसमें दोनों एक साथ बैठते हैं, इसमें चोर और पुलिस की कहानी है, और दोनों जब एक टेबल पे बैठते हैं,
0: जी
1: और वो मेरे ख्याल से 10-11 मिनट का वो सीन है, मैं कई बार उस गंभीरता को महसूस करता हूँ कि मुझे भी कुछ इस तरह कैरेक्टर करना है अपने इस करियर में। इतनी ही स्क्रिप्ट को जज्ब करके, एक एक लाइन को महसूस करके, उस गंभीरता के साथ मैं अपने कैरेक्टर को करूं, मैं ऐसा चाहता हूं।
0: हम भी चाहते हैं कि आपके मनपसंद का किरदार, कैरेक्टर, रोल आपको मिले, संजीदा रोल भी मिले और हम उसमें भी आपको देखें।
1: बिल्कुल, और मैं आपको निराश नहीं करूंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ऑडियंस को, अपने दर्शकों को हमेशा सरप्राइज करता रहूंगा।
0: बिल्कुल। जाते जाते हम एक सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी एक छोटे जगह से आए हैं और यहाँ पर आके आपने अपना मकाम बनाया है। तो जो उभरते कलाकार आते हैं, दो तरह के होते हैं कई बार, प्लान ए और प्लान बी लेकर चलते हैं कि हम ये कर रहे हैं, अभिनय में ट्राई कर रहे हैं, ये नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम ये भी कर लेंगे, इसको भी ऑप्शन लेके चलते हैं। कई बार ऐसा होता है नहीं, पूरी शिद्दत से आते हैं लेकिन थक हार भी जाते हैं, वापस लौट भी जाते हैं। तो आपके ख्याल से आप क्या सलाह देना चाहते हैं उनको, यहाँ पर टिके रहना, अपना मकाम बनाना, क्या कहना चाहेंगे?
1: सबसे पहली बात कि दूसरों की बात आप ना सुने। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपके अंदर एक बड़ा कमाल का आर्टिस्ट है, आप मुंबई चले जाओ या इस फील्ड में जाओ, मत सुनो किसी की बात। आप अपने आप से पूछो, क्या वो एक्स फैक्टर है आपके पास, क्या वो हुक पॉइंट है आपके पास जिसकी वजह से आप मुंबई में रह सकते हो या इस फील्ड में पूरी जिंदगी अपने आप को दे सकते हो। ये

0: बहुत जरूरी है खुद से पूछना, दूसरे की बातों पे बिल्कुल भी आप मत जाइए। एक बात और कि कभी भी ग्लैमर और मुंबई में ये पैसा, शोहरत, नाम, ये सब देख कर मत आइए। ये आर्ट है। अगर अपने आप को इस आर्ट में समर्पित कर सकते हो तो आओ। बहुत सारे जो हमारे नौजवान दोस्त हैं वो गलती यही करते हैं, उनको चाहिए ग्लैमर, उनको चाहिए बड़ी बड़ी चीजें, बट वो आर्ट से कुछ लेना देना है ही नहीं, और वो अपने जीवन का बहुत ही गोल्डन टाइम बर्बाद कर देते हैं। मुंबई में एक ऐसा ये एज है, ऐसा समय जिस वक्त आपको आपके घर वालों के लिए देना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, बजाय आप यहाँ पे अपना समय एक तरह से बर्बाद ही करें, क्योंकि आपने देखा नहीं खुद को, जाना समझा नहीं,
1: जी
0: है ना। और मुझे एक बात और आप लोगों से कहनी है कि दोस्त, सफलता असफलता कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट है खुश रहना। और मुझे ये लगता है कि देख, जिंदगी एक ही मिली है, जिंदगी है तो ये सारे गोल हैं, सारे एम हैं, आपके जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। तो प्लीज अपने आप को जानिए, समझिए, उस डायरेक्शन में काम कीजिए। अगर सच में आपके अंदर ये काबिलियत है कि कुछ कर सकते हैं, तो प्लीज आप मुंबई या जहां कहीं भी हो इस फील्ड में आ जाइए, क्योंकि अच्छे आर्टिस्ट की बड़ी भारी कमी है मुंबई में।
1: बिल्कुल
0: आपका आना बहुत जरूरी है, इस इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, और इस समाज के लिए बहुत जरूरी है कि अच्छे आर्टिस्ट आए, चाहे वो किसी भी फील्ड के आर्टिस्ट हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, पेंटर हो, गीतकार हो, संगीतकार हो, जो भी हो,
1: जी,
0: अगर आप कमाल के हैं तो इस इंडस्ट्री में आपकी बहुत जरूरत है।
1: ये बहुत ही सुंदर सलाह दी आपने। और चंदन जी, आपने अपने एक्टिंग का सफर तो हमारे साथ साझा किया ही, साथ ही निजी अनुभव और बड़ी ईमानदारी से वो छोटी छोटी बातें हमारे साथ शेयर की है, जो हमें बहुत अच्छी लगी है। और पूरी उम्मीद है कि जितने लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं, उन्हें एक इंस्पिरेशन मिली है और उन्हें बहुत ही वो प्यारी प्यारी सलाह मिली है आपकी
0: जी
1: तरफ से। आपके जो भी भविष्य के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारी सी बातचीत के लिए।
0: शुक्रिया। और मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहा हूँ,
1: क्या कहना
0: और
1: चाहेंगे?
0: यहाँ बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने मुझे विविध भारती के ऑफिस में बुलाया है, और यहाँ आना किसी सपने से कम नहीं है मेरे लिए। ऐसा लगता है कि बरसों का एक देखा हुआ, एक बालमन में देखा हुआ सपना आज मेरा पूरा हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से मिलके, विविध भारती के इन दीवारों को देख करके, इन माइक, ये लाइट, ये सब कुछ देख करके। आपको शायद यकीन ना हो कि जब 2:30 बजे मेरा स्कूल छूटता था तो सीधे मैं घर आता था, अपना रेडियो सेट उठाता था, सखी सहेली सुनता था, उसके बाद पिटारा, और फिर रात्रि सेवा में मैं जब जयमाला से शुरू करता था तो गुलदस्ता होते हुए फिर गजल वाले प्रोग्राम, और फिर पता नहीं कब मेरी आंखें लग जाती थीं, और कभी मेरी मम्मी, कभी मेरे दादा, कभी मेरी बहन आकर के बंद करते थे रेडियो, या कई बार सुबह तक वो रेडियो चलता रहता था।
1: जी
0: मुझे याद है कि मैं रेडियो से इस कदर स्नेह रखता था बचपन में कि मेरे गली में, आंगन के बगल में गली था, अमरुद का पेड़ हुआ करता था, उसमें मैं कई बार उस अमरूद के पेड़ पे अपने
1: बिल्कुल
0: ट्रांजिस्टर को लेकर के चढ़ जाता था, और ऊपर ही कहीं पेड़ के तने में बांध करके रेडियो चल रहा होता था, और मैं अमरूद वही नमक लेके खाता रहता था,
1: क्या बात
0: है
1: है।
0: ना। तो रेडियो इस तरह से मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। आज भी सूट पे जाता हूँ, या किचन में होता हूँ, या घर में, कहीं भी रेडियो मेरे घर के किसी न किसी एक कोने में बज रहा होता है। रेडियो मुझे लगता है मेरा बचपन का दोस्त है,
1: बिल्कुल
0: एक ऐसा दोस्त जो हर वक्त मेरे लिए अवेलेबल है।
1: बिल्कुल, हमेशा साथ ही बनकर,
0: बिल्कुल,
1: क्या बात
0: रेडियो
1: है,
0: सिर्फ इस देश की धड़कन ही नहीं है, ये मेरा भी धड़कन है।
1: क्या बात है,
0: यस,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच।

ये थी जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। आपने सुना दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कहा? तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल क्वेश्चन है ना वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा प्रयास।
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। बोकारो पुलिस की गश्ती को और मजबूत करने के लिए जीपीएस से लैस 53 नई मोटरसाइकिलें बेड़े में शामिल की गई हैं। पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा ने हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया। एसपी ने बताया कि जीपीएस के जरिए मुख्यालय से निगरानी रखी जाएगी, जिससे आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने और आगामी त्योहारों में सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिलेगी। गुमला में जिला समाज कल्याण विभाग और हिंडालको इंडस्ट्रीज के संयुक्त सहयोग से आज 20 दिव्यांगजनों के बीच मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। जिला प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके आवागमन को सुगम करना है, जिससे वे अपने दैनिक कार्य, शिक्षा और रोजगार आसानी से पूरे कर सकें। जामताड़ा के डीएनए एकेडमी परिसर में आज साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्टिंग के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की इस पहल पर छात्र छात्राओं को साइबर ठगी से बचने और पीड़ितों की सहायता के तरीके बताए गए। प्राधिकार के सचिव पवन कुमार ने बताया कि अलग अलग विषयों पर यह अभियान लगातार जारी रहेगा। पलामू के हुसैनाबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ दिव्यांश शुक्ल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में चोरी की 3 बाइक और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले ये आरोपी पिछले 3 वर्षों से झारखंड और बिहार में सक्रिय थे। साहिबगंज के बरहरवा में पुलिस ने घर में चल रही अवैध हेरोइन बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल और विमलेश त्रिपाठी ने बताया कि इस मामले में पश्चिम बंगाल के मालदा के 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 600 ग्राम ब्राउन शुगर, करीब 6 लाख रुपए नकद, केमिकल और गाड़ियां बरामद की गई हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: रस्मे उल्फत अपने आप से हम भी शर्मसार हैं, ये उम्र भी अजब उम्रे रायगा निकली, हम अपने ख्वाब लिए तार तार हैं, हमें खबर है कि वो बाबे उल्फत बंद हुआ, मगर वो जख्म निहा दिल में बरकरार हैं, किसी के नाम से वाबस्ता थी मताए हयात, उसका नाम लब पे मगर बे इख्तियार है।
4: वो जब याद आए बहुत

मैंने सब कागज पे लिख दिया था बहुत पहले, दिल का हर राज कह दिया था बहुत पहले। अब जो पूछोगे तो क्या बाकी है कहने को, जो कहना था कह दिया था बहुत पहले। मेरे जख्मों की गहराई ना पूछो मुझसे, मैंने हर दर्द को अपना लिया था बहुत पहले। तुमको फुर्सत ही ना थी हाले दिल सुनने की, हमने सब कुछ तो कह दिया था बहुत पहले। जिसको तुम आज भी एक ख्वाब समझते हो, वो हकीकत थी, हमने देख लिया था बहुत पहले। हमने हर रंज को किस्मत का लिखा मान लिया था, तुमको खोने का भी डर था बहुत पहले। तुमने लौट आने का वादा तो किया था हमसे, दिल ने मगर अंजाम समझ लिया था बहुत पहले।

हम टूटे ये दिल भी टूटा, चलो जाने दो, क्या सुनोगे क्या कुरेदोगे, जाने दो, दर्द की बात अगर छेड़ी तो बिखर जाएंगे, जख्म सोए हैं उन्हें मत छेड़ो, जाने दो। हमने माना कि बहुत रंज दिया है तुमने, अब न शिकवे न गिले, बस छोड़ो, जाने दो। दिल ने बरसों जिसे आंखों में सजाया था, वो ख्वाब था, अब ख्वाब समझो, जाने दो। जिंदगी फिर भी गुजर जाएगी खामोशी से, हम अगर टूट गए हैं तो गए हैं, जाने दो। जिसको अपना कहा वो अपना था ही कब, अब ये किस्सा भी हुआ पुराना, चलो

आके तुझ बिन इस तरह ऐ दोस्त घबराता हूँ मैं, जैसे हर शय में किसी शय की कमी पाता हूँ मैं। छाया गीत कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। ऐन से फकत इश्क नहीं अजाब भी होता है, दिल के जख्मों का कोई हिसाब भी होता है। दिल के बहलाने को काफी नहीं वादों की रोशनी, चश्मे तर में आलम इस्तेराब भी होता है। हर ताल्लुक को समझ लेना मोहब्बत तो नहीं, कुछ ताल्लुक में फरीब बेहिसाब भी होता है। इश्क में हर शख्स को मिलती नहीं मंजिल, राहे उल्फत में दश्ते सराब भी होता है। इश्क इंसान को फकत आबाद ही नहीं करता, इसमें आदमी का खाना खराब भी होता है।

मैंने आज फिर बैठ के तन्हाई में उजड़े दिल उदास आंखों का हिसाब लिखा। हर ख्वाब का जिक्र जो तेरे साथ देखा था, हर उस जख्म पे खामोशी का अजाब लिखा। जो लफ्ज लबों तक आके इजहार ना बन सके, उन्हें अशकों की जुबा में बेनकाब लिखा। तेरे बाद जो गुजरी दिले बेकरार पे, हर एक दिन को दर्द की किताब लिखा। ना कोई गिला ना शिकायत का बाब लिखा, मगर जो दिल ने कहा वो बेहिजाब लिखा। अब क्या उम्मीद वफा, क्या इंतजार वसल, हर एक आरजू को वक्त ने नायाब लिखा।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे FM 103 MHz पर। सायंकालीन सभा में आप सुबह का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं अपनी सभा में प्रसारित किए जाने वाली शेष कार्यक्रमों की।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 5:30 से आप सुनिएगा युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। शाम 6:00 आप सुन सकेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6:02 पर किसान वाणी कार्यक्रम। कृषकों को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी का समय होगा शाम 6:30 पर।

शाम 6:55 पर हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहां ठीक शाम 7 बजे आप सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। शाम 7:10 पर जिले में आजकल शाम 7:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या आप सुन सकेंगे। खुला आकाश का समय होगा शाम 7:45 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से आप सुनिएगा रात्रि 8 बजे। देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश का नाप सुन सकेंगे रात्रि 8:30 से। समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर। न्यूज एट 9 रात्रि 9 बजे। उर्दू में खबरें रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर हम शामिल होंगे विविध भारती के कार्यक्रम में। रात्रि 10 बजे आप सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

रात्रि 10:30 पर आप सुनिएगा एक रंग। रात्रि 11 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार। रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

युवानी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आराध्या माही। आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए फिल्मी गीतों को भी सुनवाएंगे। तो दोस्तों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज सबको सबसे पहले नवरात्र की शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे नवरात्र के दूसरे दिन माँ चंद्र घंटा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम नवरात्र के दूसरे दिन की आराध्य देवी माँ चंद्र घंटा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि यह हमें शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संदेश भी देती है। दोस्तों, माँ दुर्गा के नौ रूपों में तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा का है, जिनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप हमें वीरता, निर्भया और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा का नाम कैसे पड़ा, आइए इसके बारे में भी कुछ जानते हैं। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य, तेजस्वी और शक्तिशाली है। वे सिंह पर सवार रहती हैं और उनके 10 हाथ के विभिन्न अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। उनके हाथों में कमल, त्रिशूल, तलवार, धनुष, बाण आदि दिखाई देते हैं। उनका यह स्वरूप हमें बताता है कि जीवन में शांति और विनम्रता के साथ साथ अपनी रक्षा करने और अन्याय का विरोध करने का साहस भी होना जरूरी है। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा की पूजा की महत्व क्या है, इसके बारे में भी बातें करते हैं। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा को साहस, शक्ति और शांति का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनकी आराधना करने से भक्तों के मन में निर्भया और आत्मविश्वास का संचार होता है। उनका स्वरूप हमें सिखाता है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने मन से डर को दूर करके उनका सामना करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि जागरूकता और चेतना का भी संदेश देती हैं। जिस प्रकार घंटे की ध्वनि वातावरण से गूंजती है, उसी प्रकार हमें अपनी भीतर की शक्ति को पहचान कर जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, युवाओं के लिए चंद्रघंटा माता के विशेष संदेश क्या हैं? दोस्तों, बात करने जा रहे हैं कि युवाओं की, क्योंकि युवा किसी भी देश का भविष्य होता है। युवावस्था जीवन का वह समय है जब हमारे सामने अनेक सपने, चुनौती और अवसर भी होते हैं। कभी पढ़ाई का दबाव होता है, कभी नौकरी की चिंता, तो कभी परिवार और समाज की अपेक्षाएं हमें परेशान करती हैं। ऐसे समय में माँ चंद्रघंटा का स्वरूप हमें तीन महत्वपूर्ण बातें सिखलाता है। पहली बात, डर का सामना करना। जीवन में असफलता से डर कर अपने सपने छोड़ देना सही नहीं। यदि किसी परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए, नौकरी मिलने में देरी हो रही या किसी भी काम में बार बार असफलता मिल रही है, तो हमें निराश होने की बजाय अपनी कमियों को पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए। याद रखिए कि असफलता हमारी पहचान नहीं होती बल्कि उससे सीख कर आगे बढ़ना असली ताकत होती है। दोस्तों, दूसरी बात है अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना। माँ चंद्रघंटा का शक्तिशाली स्वरूप हमें सिखाता है कि गलत बात को चुपचाप स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। यदि हमारे आसपास किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, किसी कमज़ोर व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है या किसी लड़की के सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है, तो हमें उचित और सुरक्षित तरीके से उसका विरोध करना चाहिए। सच्चा साहस केवल स्वयं के लिए लड़ना नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर दूसरों के अधिकारों के सम्मान की रक्षा करना भी है। दोस्तों, तीसरी बात है शक्ति के साथ विवेक रखना। ताकतवर होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी ताकत का सही उपयोग करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। हमें अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप हमें साहस, शक्ति और शांति के बीच संतुलन बनाना सिखाता है। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा से मिलने वाली जीवन सीख क्या है? दोस्तों, माँ चंद्रघंटा का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में बाहरी चुनौतियों से लड़ने के साथ साथ अपने भीतर के डर, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों पर विजय पाना भी आवश्यक है। दोस्तों, यदि हम अपने मन को मजबूत बना लें, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें और दूसरों के प्रति दयालु व्यवहार करें, तो हम अपने जीवन के अनेक कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। इस नवरात्रि आइए हम सभी संकल्प लें कि हम अपने भीतर साहस, अनुशासन, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच करेंगे, विकसित करेंगे। हम किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे।

और समाज में प्रेम, शांति तथा सद्भाव बनाए रखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि चंद्र घंटा माँ की पूजा का अर्थ केवल दीप जलाना, फूल चढ़ाना और मंत्रों का जाप करना नहीं है, बल्कि उनके आदेश को अपने जीवन में उतारना भी है। जब हम भय के स्थान पर साहस, नफरत के स्थान पर प्रेम और अन्याय के स्थान पर सत्य का साथ सुनते हैं, तभी हम माँ चंद्र घंटा के संदेश को सही मायने में अपनाते हैं। आइए माँ चंद्र घंटा से प्रार्थना करें कि वह हमें सभी को साहस, विवेक, आत्मविश्वास और सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। दोस्तों, इसी कामना के साथ आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस चर्चा के बाद आइए सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आइए सुनते हैं वार्ता। विषय है अंग्रेजी भाषा का अध्ययन कैसे करें। वार्ताकार है मिथिलेश कुमार सिन्हा।
1: अंग्रेजी भाषा को प्रभावशाली ढंग से कैसे पढ़ें। किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्यक्ति में उत्साह एवं प्रबल इच्छा का होना अनिवार्य है। इसके लिए समुचित संसाधनों का उपयोग एवं उचित माहौल की तैयारी आवश्यक है। इन बुनियादी भाषा कौशल को प्राप्त करने के लिए आपको अंग्रेजी के साथ साथ खुद पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। अपने खाली समय में घर पर काम कर अंग्रेजी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। किसी भी भाषाओं में लिपि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हमारी भाषा हिंदी की तुलना में अंग्रेजी की लिपि आसान है। अंग्रेजी की समुचित जानकारी प्राप्त करने हेतु शब्दों की शब्दावली एवं व्याकरण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अत्यधिक शब्दावली की जानकारी हमारे अंदर के आत्मविश्वास को और बढ़ा देता है। आज के शहरीकरण, औद्योगिकरण एवं आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण बदलाव को देखते हुए हमें अंग्रेजी सीखना अनिवार्य है। हम समाचार पत्र पढ़कर, अंग्रेजी कहानी पढ़कर, सुनकर एवं किताबों की मदद से मोबाइल ऐप के द्वारा अपनी अंग्रेजी के समुचित ज्ञान को और आगे बढ़ा सकते हैं। रोजगार के अवसर ढूंढने के लिए अंग्रेजी एक सशक्त माध्यम है। अंग्रेजी सीखने के लिए अन्य माध्यम रेडियो पर अंग्रेजी समाचार सुनकर, कुछ मनोरंजक अंग्रेजी फिल्मों देखकर या कार्यक्रम देखकर भी सीखा जा सकता है। भारत के कई पर्यटक स्थल पर हम पाते हैं कि रिक्शा वाला, फेरी वाला भी टूटी फूटी अंग्रेजी बोल लेता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि लगातार किया गया अभ्यास एवं प्रयास एवं विदेशी सैलानियों से वार्तालाप का प्रयास। कहा जाता है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए लिखना आवश्यक है। अतः अंग्रेजी में व्याकरण की जानकारी को लिखकर वाक्य बनाकर हम अपनी जानकारी और बढ़ा सकते हैं। हमें अपने अध्यापकों के साथ एवं अंग्रेजी बोलने वाले दोस्तों के साथ बातचीत करना चाहिए तो इससे हमारे बोलने की कला में निखार आता है। किसी भी कार्य में शुरुआत में बाधा या उबाऊपन की स्थिति आ सकती है। हमें आत्मविश्वास एवं धैर्य के द्वारा सतत प्रयास कर अंग्रेजी के ज्ञान को हम बढ़ा सकते हैं। सवाल यह है कि इस भाषा को इतनी प्राथमिकता क्यों? इसका जवाब यह है कि आज के वैज्ञानिक युग में बैंकिंग के क्षेत्र में ATM, मोबाइल, कंप्यूटर, बाजार, मॉल, हॉस्पिटल, शिक्षण संस्थान एवं विदेशों में अंग्रेजी का बोलबाला है। अंग्रेजी भाषा के अगर हम आधार खोलें तो टेंस इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक शिक्षा से ही हमें स्कूल में टेंस की जानकारी दी जाती है। जो बच्चे टेंस को गंभीरता से लेते हैं वे आगे चलकर कई प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण कर जाते हैं एवं अंग्रेजी के अच्छा वक्ता भी बन जाते हैं। टेंस के बाद प्रीपोजिशन का अभ्यास जो शब्दों को जोड़ता है महत्वपूर्ण है। प्रीपोजिशन के कई पहलुओं पर अगर हम ध्यान दें, जैसे कोई भी चीज़ गति में हो तो हम इनटू का प्रयोग करेंगे, किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ हो तो उसके अर्थ में ऑन का प्रयोग करेंगे, छोटे शहर के साथ ऐट का प्रयोग करेंगे, बड़े शहर में हम रहते हैं तो इन का प्रयोग करेंगे। यह प्रारंभिक जानकारी आवश्यक है। मॉडल का प्रयोग हमारे लिखित एवं व्यवहारिक ज्ञान में भी महत्वपूर्ण है। अगर हमें आदेश लेने के क्रम में हम MI का प्रयोग करेंगे या हम May I एवं का प्रयोग करेंगे एवं योग्यता, क्षमता एवं शक्ति में कैन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार मॉडल हमारे अंग्रेजी के ज्ञान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को और मजबूत करने के लिए हमें कई विषयों पर लेख लिखकर अभ्यास करना चाहिए, जैसे विद्यार्थी जीवन, अनुशासन, विभिन्नता में एकता। अगर हम इन विषयों पर लिखने लगेंगे तो हमें शब्दावली को की आवश्यकता होगी एवं हमारा ज्ञान और व्यापक होगा। शुद्ध शब्दों का उच्चारण भी अंग्रेजी के प्रभाव को और बढ़ाता है एवं वो हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। कुछ शब्दों को अगर हम वर्तमान परिवेश में देखें तो पहले फाइनल बोला जाता था, अब फिनाले का उपयोग किया जाए। उसी प्रकार पुलिस के जगह कॉप्स का प्रयोग, पीपल के जगह गाइज का प्रयोग, ये आधुनिक इंग्लिश एवं वर्तमान में चल रहे शब्दों का अगर हम प्रयोग करें तो व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करके हम अपने व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बना सकते हैं। आज के दौर में कम्युनिकेशन स्किल सबसे लोकप्रिय डिग्री में से एक है। एक कुशल कम्युनिकेटर की आवश्यकता आज जीवन के हर क्षेत्र में है। हमें वाद विवाद प्रतियोगिता, किसी अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा, राजनीति पर चर्चा अंग्रेजी में करने से इस भाषा का ज्ञान और हम बढ़ा सकते हैं। प्रबल इच्छा, दृढ़ संकल्प एवं सतत प्रयास अंग्रेजी सीखने में मददगार साबित होती है। इस भाषा के समुचित ज्ञान से हम रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को निखार कर सफलता हासिल कर सकते हैं। आधुनिक समाज, आधुनिक तकनीक एवं दुनिया से जुड़कर अपना कार्य सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अंग्रेजी भाषा के समुचित ज्ञान से हमें विदेशों में रोजगार, पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार, होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में, सेल्स एंड मार्केटिंग के क्षेत्र में, दूर संचार के क्षेत्र में व्यापक रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है। भारत की आज़ादी में भी उस समय के शिक्षाविद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इन महान नेताओं का अंग्रेजी भाषा पर समुचित पकड़ था। आज के दौर में पहले के मुकाबले अंग्रेजी सीखना ज़्यादा आसान है, क्योंकि आज कई यूट्यूब चैनल, कई मोबाइल ऐप, गूगल साइट पर जाकर हम आसानी से अंग्रेजी भाषा को सीख सकते हैं।
0: दोस्तों, भी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था अंग्रेजी भाषा का अध्ययन कैसे करें। वार्ताकार थे मिथिलेश कुमार सिन्हा। दोस्तों, इस वार्ता के बाद अब हम चर्चा करने वाले हैं हमारे जीवन की सफलता और असफलता से सीधे जुड़ा हुआ उस विषय का नाम है समय का सदुपयोग। जी हाँ दोस्तों, आपने एक प्रसिद्ध कहावत सुनी होगी कि समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतज़ार नहीं करती। इसका अर्थ है कि किसी समय के लिए रुकता नहीं। जो समय आज हमारे पास है वह कल वापस नहीं आएगा। हम खोया हुआ धन दोबारा कमा सकते हैं, खोई हुई वस्तु फिर से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं ला सकते। दोस्तों, इसे कहा जाता है कि समय हमारे जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति है। दोस्तों, समय का सदुपयोग क्यों आवश्यक है? साथियों, हमारे जीवन के हर व्यक्ति को हर दिन के 24 घंटे ही मिलते हैं, चाहे वह विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, खिलाड़ी हो, वैज्ञानिक हो या कोई बड़ा अधिकारी, सभी के पास समय की मात्रा समान ही है। फिर भी कोई व्यक्ति जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करता है, जबकि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाता। इसका एक प्रमुख कारण है समय का सही उपयोग। जो व्यक्ति अपने समय की कीमत समझता है वह अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति आज का काम कल टालते रहता है उसके पास धीरे धीरे काम का बोझ बढ़ जाता है और अवसर हाथ से निकल जाते हैं। दोस्तों, इसलिए एक प्रसिद्ध कहावत है कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। अर्थात जिस काम को करने का अवसर आज मिला है उसे बिना किसी उचित कारण के कल पर टालना सही नहीं। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए समय का महत्व, विशेष रूप से विद्यार्थियों और युवाओं के जीवन में समय का सदुपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी जीवन एक अवस्था है जो जिसमें हम अपने भविष्य की नींव तैयार करते हैं। इस समय सीखी गई अच्छी आदतें, अनुशासन और मेहनत आगे चलकर हमारे जीवन को दिशा देती है। आज के डिजिटल युग में मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम और मनोरंजन के अनेक साधन हमारे सामने हैं। इनका उपयोग करना गलत नहीं, लेकिन जब हम अपना अधिकांश समय इन्हीं चीज़ों में बिताने लगते हैं तो पढ़ाई, स्वास्थ्य, परिवार और अपने लक्ष्यों के लिए समय कम पड़ने लगता है। इसलिए युवाओं को समझना चाहिए कि तकनीक का उपयोग अपनी उन्नति के लिए करें, न कि अपने कीमती समय को व्यर्थ करने के लिए। यदि कोई विद्यार्थी प्रतिदिन केवल एक घंटा भी किसी नई चीज़ सीखने में लगाता है तो एक वर्ष में लगभग 365 घंटे सीखने में लगा सकता है। सोचिए, इतने समय में वह कितनी नई नई जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है, कितनी अच्छी पुस्तकें पढ़ सकता है और अपने कौशल को कितना बेहतर बना सकता है। इसलिए हमें प्रतिदिन स्वयं से एक प्रश्न

पूछना चाहिए कि आज मैंने अपने समय का सही उपयोग किया। दोस्तों, समय का सदुपयोग कैसे करें? दोस्तों, हम जानते हैं कि पहली बात है कि अपने दिन की योजना बनाएं। हमें सुबह या रात में ही अगले दिन की ज़रूरत कार्यों की सूची तैयार कर लेनी चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा काम कब करना है। दूसरी आदत है कि ज़रूरी काम को प्राथमिकता देना। हमें पहले उन कार्यों को पूरा करना चाहिए जो हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, आलस्य और टाल मटोल से बचना। कई बार हम सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, यह काम बाद में कर लेंगे, लेकिन यह आदत धीरे धीरे हमारी प्रगति में बाधा बन जाती है। दोस्तों, चौथी आदत है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना। समय का सदुपयोग करने का अर्थ यह नहीं कि हम दिन रात केवल काम ही करते रहें। पर्याप्त नींद लेना, व्यायाम करना, पौष्टिक भोजन करना और परिवार के साथ समय बिताना भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। दोस्तों, पांचवी आदत है हर दिन कुछ नया सीखना। चाहे वह कोई अच्छी पुस्तक पढ़ना हो, कोई नई भाषा सीखना हो, अपने ज्ञान को बढ़ावा देना हो या किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना हो, इन सभी कार्यों से हमारा व्यक्तित्व बेहतर बनता है। दोस्तों, समय हमें क्या सिखलाता है? दोस्तों, समय हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि जीवन में सफलता केवल सपने देखने से नहीं मिलती, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए सही समय का सही कदम उठाना आवश्यक है। दोस्तों, हम अक्सर सफल लोगों को देखकर ही सोचते हैं कि इतने आगे कैसे बढ़ गए, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि उनकी सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत, अनुशासन, धैर्य और समय का सही उपयोग होता है। याद रखिए, छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़े बदलाव लाती हैं। यदि हम प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम भी बढ़ाते हैं तो एक दिन हम अपनी मंजिल तक अवश्य पहुँच जाते हैं। इसलिए दूसरों कि अपनी तुलना करने की बजाय अपने बीते हुए कल से बेहतर बनने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जीवन का ऐसा शिक्षक जो हमें बिना बोले कुछ सिखा देता है, वह हमें अवसर देता, अनुभव देता, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है, लेकिन जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता वह कई महत्वपूर्ण अवसरों को खो देता है। दोस्तों, हम अपने समय का सही उपयोग करेंगे, आलस्य से दूर रहेंगे, अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे और हर दिन कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय की कदर करना सीखिए, हर पल को बेहतर बनाना सीखिए। जो आज मेहनत से अपना भविष्य संवारता है, वही कल सफलता का नया इतिहास रचता है। दोस्तों अभी हम चर्चा कर रहे थे समय का सही सदुपयोग के बारे में। दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस गाने के बाद अब हम बातें करते हैं सुरक्षा के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी त्यौहार का समय भी चल रहा है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपनी सुरक्षा पर और ज़्यादा ध्यान दें। सड़क पर चलने पर या यातायात चलाते समय अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा का भी ख्याल रखें। ट्रैफिक नियमों का सही तरीके से पालन करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बाइक पर चल रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं। अगर आप कार में चल रहे हैं तो सीट बेल्ट अवश्य लगा के चलें। अपनी स्पीड लिमिट सीमित रखें ताकि रोड पर चलने वाले लोगों को भी आपके कारण किसी भी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े। यदि आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग देखकर ही करें। रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट का सही प्रयोग करें और अपनी स्पीड लिमिट के साथ करें। दोस्तों, त्यौहार के समय और भी लोग ज़रूरत रहते हैं कि आप अपने और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें, ट्रैफिक नियमों का सही उपयोग करें। दोस्तों, इसी जानकारी के साथ हमारा आज का युवानी कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दें। नवरात्रि के पर्व को अच्छे से मनाएं, खुशियों के साथ मनाएं और दूसरों के साथ भी अपने इस त्यौहार को साझा कीजिए। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होता है।

साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति

0: आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो
1: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
2: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित। भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड हाईकोर्ट ने माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी से जुड़े मामले में बड़ा आदेश दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने यूजर डेटा नोट एग्जिट समस्या का सामना करने वाले सभी 20 याचिकाकर्ताओं के लिए सीटें सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 26 नवम्बर को होगी। IIIT रांची में छात्र की मौत के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय साउथ कैंपस के निदेशक प्रोफेसर रजनी अब्बी इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगी। यह कमेटी घटना के कारणों, संस्थान की बुनियादी सुविधाओं और छात्र शिकायत निवारण प्रणाली की जांच कर सुधार के उपाय सुझाएगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक दलों की शिकायतों का नियमानुसार समाधान किया जा रहा है। सरायकेला में उन्होंने स्पष्ट किया कि 30 नवंबर तक अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि विरोध की आड़ में हिंसा या पथराव करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। लोहरदगा के किस्को प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 7वीं कक्षा की छात्र की मौत हो गई। मृत छात्रा की पहचान रंगड़ा निवासी सुनीता लोहरा के रूप में हुई है। परिजनों ने विद्यालय प्रबंधन पर तबियत खराब होने की सूचना देर से देने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। बोकारो स्टील प्लांट में नियोजन की मांग को लेकर विस्थापितों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी रही। आंदोलन के दौरान शहीद प्रेम महतो की मां गोमती देवी सहित 7 आंदोलनकारियों की तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विभिन्न विस्थापित संगठन BSL के ADM भवन के समक्ष लगातार धरने पर बैठे हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है ग्रामीण।

ग्रामीण सभा सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
5: तो कहो जुगनी बहन, का हाल चाल है?
6: एकदम नगदे नगद है, और बताते कैसन है
5: हाल चाल? तो बहुत नगद है, और खेती बाड़ी भी बढ़िया से होलक, धान मन भी बढ़िया फुटलक है, और एखन पूरा भक्ति कर वातावरण है, सब बटे दुर्गा माई कर पूजा में सब लागल है।
6: गोइठ तो बड़ा नगद कहली, देखो पर्व त्योहार है, और देखो खेती बाड़ी कर बात रोरे कहत है, धान मन फूटे लगल है, तो हमरे के मौसम के जानकारी रखे बहुत जरूरी है कि नहीं?
5: काले कि ई बदले के मौसम में हमरे के मौसम कर

0: अनुमान से करे है खेती के, और किसान भाई बहन मन के मौसम कर पूर्वा अनुमान भी राखे जरूरी है।
1: इकर से किसान मन के कटाई बुआई करे के सही बेरा कर जानकारी भेटाला है कि नहीं, किसान भाई मन कर फसल के नुकसान से बचाल जा सकेला।
0: और मौसम कर जानकारी तो बढ़िया से भेटाएल, कल की सबकर हाथ में मोबाइल है और मौसम विभाग बटे से हमेशा जो है से सूचना मिलते रहे ला कि कखन रौद करी, कखन पानी आवी, कखन कतना पानी आवी, कखन हवा चली, आजकल कोनो दिक्कत न के तनिक उन खाली ध्यान रखे है अपन मोबाइल में मौसम कर बारे।
1: तो किसान भाई बहन मन हमरे के मौसम का जानकारी के राखे के बहुत जरूरी है, इकर से हमरे के खेती बाड़ी करे के लिए बहुत मदद भेटायला।
0: देखो अब उतरे गोठिया थे और इ कार्यक्रम में हमरे का जानकारी करूँ आप सके बताए दो थे। आज की बात में हमरे जानकारी करब सहजन जो कि हमरे मुनगा भी कहिल, इकर खेती से आर्थिक और स्वास्थ्य लाभ कैसे हुई से कर बारे में बतावें डॉक्टर विशाखा सिंह। कृषि विकास गीत सुनब अजीत कुमार महतोर संगी मन कर गावल। नई उम्र कर नई फसल में आज हमरे एगो किसान बिग्गा उराव से रन के भेंट भी करवाओ।
1: किसान भाई बहन मन हमरे कार्यक्रम में मुनगा कर खेती कातेर करब और इकर खेती से हमरे के मुनाफा कातेर होवी और इकर सेवन से हमरे का स्वास्थ्य कैसन बनल रही इकरे बारे में हमरे जानकारी करब और इनकर बारे में जानकारी देवें विशेषज्ञ डॉक्टर विशाखा सिंह और इनकर से बातचीत कर रहे हमरे का संगी कृष्ण जीवन पौराणिक।
0: किसान साथियों नमस्कार, आज हम जानेंगे सहजन की खेती के बारे में जिसको मुनगा भी कहा जाता है। तो ये मुनगा की खेती से हमारे किसान भाई किस तरह से अपने आर्थिक और स्वास्थ्य लाभ कर सकेंगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर विशाखा सिंह, खाद्य एवं पोषण विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र रांची। डॉक्टर विशाखा आपको हमारे स्टूडियो में स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: आप हमारे किसान भाइयों को सहजन जिसको हम लोग मुनगा भी कहते हैं इसके बारे में परिचय कर दें।
2: सहजन जिसको मुनगा भी कहते हैं इसको इंग्लिश में मोरिंगा कहते हैं
0: जी।
2: और साइंटिफिक नेम इसका मोरिंगा ओलिफेरा है। ये एक बहुउपयोगीय बहुवर्षीय औषधीय पौधा है। इस पौधे का हर एक चीज चाहे पत्ती हो, फली हो, छाल हो, जड़ हो, हर एक चीज का बहुत ही औषधीय महत्व है और इसको सुपर फूड की कैटेगरी में रखा गया है। सुपर फूड मतलब वो खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको कि हम बेसिक न्यूट्रिएंट मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण के अलावा भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं। तो मुनगा में ये सारे गुणों से भरपूर है इसलिए इसे सुपर फूड कहते हैं
0: जी। मुनगा की खेती की शुरुआत कैसे करनी चाहिए
2: जी? भारत के अधिकतर राज्यों में इसकी खेती किसान भाई बहुत सफलतापूर्वक कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि यह कम से अधिक तापमान में ये खुद को बनाए रखता है और इसमें बारिश कम या अधिक होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम वेस्ट जगह या मेड़ियों पर लगाते हैं या खाली जगह पे लगाते हैं। एक अच्छा वृक्ष होता है ये। सहजन से बिजनेस करने के पर्पज से अगर हम एक एकड़ में खेती करने की बात करें तो लगभग 6 kg बीज का जरूरत पड़ेगा और जिसकी लागत लगभग 1400 से 1500 रुपये तक आएगी 6 किलो बीज में। और इससे लगभग एक साल में 2000 किलो पत्तियां इससे निकल सकती हैं। इसको सुखाकर मार्केटिंग करते हैं और इसका बिजनेस जो 2000 किलो पत्तियों का अगर हम बोलें फायदा कितना होगा तो अगर मिनिमम इसका वैसे तो प्राइस जाता है 70 से 100 या 120 रुपए किलो तक जाता है पत्तों का। अगर हम मिनिमम 70 रुपए भी लेकर चल रहे हैं तो 140,000 रुपए सालाना मतलब उनको मिलेगा किसानों को। और अगर लागत हटा के देखें तो कम से कम 1,00,000 रुपया किसान भाइयों को फायदा होगा। ये तो पत्तियों की बात है लेकिन अगर इसका पाउडर के रूप में अगर हम इसको सेल करेंगे तो 1 किलो का 250 से 2000 रुपए किलो तक का भी पाउडर सेल होता है। इसका वेरिएशन आता है, डिपेंड करता है कि ये कितना महीन है या कितना मोटा पाउडर है या कैसी पत्ती का है, ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, उस प्रकार से इसका कैटेगरी के हिसाब से और पैकेजिंग कैसा है उस हिसाब से इसका डिमांड होता है मार्केट में। और इसको लगाने का सही समय है भी फरवरी से सितंबर तक
0: जी।
2: ये सही समय है। और इसमें इसके बीज का चुनाव करने के लिए वैसे 3 प्रकार के बीज इसके PKM1, PKM2 और OCD3 ये तीनों को हम प्रिफर करते हैं। ये अच्छी किस्में हैं जिसमें से PKM1 अगर हम लेते हैं तो इसकी पत्तियां में कड़वाहट कम होता है तो इसके मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाने के लिए बेहतर है। और OCD3

0: अगर हम फलियों का मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर होगा। तो हम क्या पर्पस से हम ये पौधे को लगा रहे हैं उस हिसाब से हमें बीजों का चुनाव करना चाहिए। बीज वहीं से सही, जहां से हमें लगे विश्वसनीय हो वहीं से लेना चाहिए। अगर कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से जानकारी ले लें कि कौन सी बीज कहां से लें। कोई कंपनी अगर प्रोडक्ट बना के और उत्पादन कर तो वो कहां से बीज लेते हैं तो उनके जानकारी से भी ले सकते हैं, या कृषि विश्वविद्यालय है या कोई और संस्था है, सरकारी संस्थाएं, उनसे भी हेल्प लेके हम अगर इसका बीज का चुनाव करें तो बेहतर होगा।
1: जी, इसका क्या क्या उत्पाद बनाया जा सकता है?
0: मुनगा का उत्पाद बनाने के लिए हम तीन प्रकार के इसमें कैटेगरी में हम बना सकते हैं। पहला तो है फार्मास्यूटिकल्स, जिसमें हम मेडिसिन के तौर पे इसको खाते हैं। इसमें हम कई औषधीय पौधों को का चूर्ण मिला के और मुनगा के साथ मिक्स करके, या मुनगा को अकेले भी पाउडर के फॉर्म में देके, टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में देके, या फिर उसके फलियों का बीज निकाल के उसका तेल से हम पीड़ा रहित जो तेल बनाते हैं वो बना के मेडिसिन के पर्पज से जो बनाते हैं, वो एक प्रकार का उत्पाद हो गया। दूसरा होता है कॉस्मेटिक्स में। कॉस्मेटिक्स में मतलब इसमें क्योंकि ये बहुत ही गुड़ों से भरपूर है तो इसमें स्किन को, हेयर को, सबको अच्छा करने का क्षमता है, तो इसको लेप बनाते हैं चेहरे का, हेयर मास्क, फेस सीरम, साबुन में इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू और क्रीम में इसको इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग प्रकार के कॉस्मेटिक पदार्थों में इसको बना सकते हैं। और एक होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में जैसे कि हम उसका लड्डू बनाते हैं, कुकीज, बिस्किट, जैसे ग्रीन टी का बैग होता है या टी बैग्स होते हैं, वैसे हम मुनगा को अन्य पदार्थों के साथ मिला के उस मुनगा चाय बनाते हैं, उसकी फलियों का अचार बना सकते हैं, और जैसे मखाना के मुनगा के पेस्ट का कोटिंग भी करते हैं, मुनगा का स्प्रे भी करते हैं मखाना के ऊपर, और चॉकलेट वगैरह बना सकते हैं, एनर्जी बार बना सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, और भी हम जो भी चीज़ घर में खाने के लिए करते हैं उसके साथ मुनगा को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम दाल खा रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो उसको हम पाउडर जो है उसको डाल सकते हैं, और दूध में डाल के, पानी में गुनगुने पानी के साथ, इवन कोकोनट वाटर के साथ भी मिक्स करके हम पी सकते हैं।
1: जी, अभी आपने पाउडर बनाने की बात की, तो इसका पाउडर बनाने की प्रक्रिया क्या है?
0: जी, मुनगा का पाउडर बनाने के लिए पहले तो हमें मुनगा की पत्तियों को लेना है। उसमें भी दो कैटेगरी करिए, जो नई पत्तियां, हरी पत्तियां हैं बिल्कुल, उनको अलग रखिए, और जो डार्क कलर की पत्तियां हैं थोड़ा नीचे वाली, उनको अलग करिए। इससे हमारे पास दो टाइप का पाउडर मिलेगा और उसका मार्केट में अलग अलग रेट होता है। उसके बाद अच्छे से उसको नमक के पानी में पहले धुलेंगे, और धुलाई करने के बाद उसको फिर सादे पानी में धुलेंगे, और उसके बाद अच्छे से अगर हमारे पास सन ड्राई होना है तो मतलब धूप में सुखाइए, या फिर कोई मशीन के द्वारा, या सोलर ड्रायर है तो सोलर ड्रायर, जैसे ड्राइंग मशीन हो गया, ओवन ड्राई, ट्रे ड्रायर हो गया, या सोलर ड्रायर है तो वो अच्छा है। सन ड्राई उस केस में मतलब अगर गर्मियों में कर रहे हैं तो ऊपर से कोई कपड़े का टेंट टाइप का बना के मतलब छाए में करिए, उसको सेट ड्राई कहते हैं। तो सेट ड्राई करने से अच्छा रहेगा, न्यूट्रिएंट लॉस कम होता है, उसका पोषक मान्य बना रहता है। तो वो ड्राई करने के उपरांत अगर उसका जब 5% तक उसका मॉइस्चर रह जाए, मतलब जब उसको हम मुट्ठी से दबाएं तो कुरकुरा हो और पाउडर बन जाए, वैसा अगर हो जाए तो उसके बाद उसको हम पल्वराइजर में या फिर कोई पीसने वाली मशीन में या घर के मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। वैसे छोटा पल्वराइजर आता है अगर बिजनेस पर्पज से कर रहे हैं तो पल्वराइजर में पीसने के बाद उसको अलग अलग छलनियों से छानते हैं, जैसे 50 मेश साइज, 60 मेश साइज, मतलब उसकी जाली का साइज के हिसाब से उसमें नंबर लिखा रहता है। जो कमर्शियल पर्पज से करते हैं तो उसका अलग अलग मेश साइज आता है, तो उसके हिसाब से हम अलग अलग कैटेगरी में महीन पाउडर को अलग कैटेगरी, फिर उससे मोटा और सबसे मोटा, ऐसे करके हम 3-4 कैटेगरी में चाल सकते हैं। और उसको फिर मुनगा का पाउडर का अगर बेचने के, बिजनेस करने का अगर सोचे तो उसका जिप पाउच या सील करके और लेबलिंग करके हम मार्केट में पाउडर भी अच्छे से सेल हो जाता है, सेल कर सकते हैं।
1: जी, तो ये तो अभी पाउडर बनाने की प्रक्रिया आपने बताई, इसका बाजारीकरण कैसे करेंगे?
0: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर इसका बाजार बहुत अच्छा है। राष्ट्रीय स्तर पर तो हम पाउडर और अन्य उत्पाद के रूप में भी बनाकर कर सकते हैं। बहुत सारे जैसे किसान भाई लोग अपने आसपास के मार्केट में दे सकते हैं, दुकानों पर रख सकते हैं, या किसी संस्था से अगर मिल लें जो डायरेक्ट पत्ते को या सूखे पत्ते को डायरेक्ट लेना चाहे तो ये बहुत अच्छा होगा कि उनको वो क्लस्टर में लगा के, कुछ एकड़ में लगा के और डायरेक्ट कंपनी को दे रहे हैं इसके उत्पाद बना के, या जो इसको विदेशों में बेचते हैं तो कंपनी का लेबल लगा के वो विदेशों में बेचते हैं, वो भी अच्छा है। और अंतर्राष्ट्रीय में भी अगर हो सके तो बहुत अच्छा है। इसमें बाहर देशों में इसका बहुत डिमांड है, खासकर वहाँ पर जहाँ पर कि कुपोषण के जो

0: मतलब आदिवासी लोग जो कुपोषण के शिकार होते हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका, जर्मनी, यहाँ पर इन मुनगा का बहुत डिमांड है। और हमारे किसान भाइयों को भी, जो बच्चे महिलाएं कुपोषित हैं, उनको भी इसका सेवन जरूर करना चाहिए।
1: जी, तो अभी आपने बताया मुनगा के पाउडर बनाने के लिए, इसका बाजारीकरण करने के लिए मुनगा के सेवन से क्या क्या लाभ हो सकता है और इसका सेवन कैसे करें?
0: हम जो कुछ भी खाते हैं अगर उसमें हम मुनगा का पाउडर डाल लें, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला है कि वो हफ्ते में 3 दिन पराठे के आटे में मुनगा डाल के खाते हैं, तो मतलब उनका मुनगा वाला पराठा हो गया। तो हम भी रोटी, चपाती, सब्जी, दाल कुछ भी खाते हैं, दाल में भी जब तड़का डालते हैं, जैसे हम करी पत्ते का डालते हैं, वैसे मुनगा का पत्ता डाल सकते हैं। फ्रेश पत्ते को भी खा सकते हैं, सलाद के रूप में खा सकते हैं, इसका ड्रिंक, इसको ग्राइंड करके जूस निकाल के भी पी सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, साग बना सकते हैं, या पानी में घोल के, दूध में घोल के किसी भी प्रकार से इसका सेवन कर सकते हैं। और इसका स्वास्थ्य लाभ तो इतना है कि हम कुछ भी कहें वो कम है। इसमें दूध से कई गुना अधिक इसमें कैल्शियम है, 1440 मिलीग्राम इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम 176 है, और आयरन बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में, एनीमिया को दूर करता है, खून को बढ़ाता है, खून को पतला करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है शरीर में, ब्लड प्रेशर की जो समस्या होती है उसको कम करता है, हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, शुगर को कम करता है, हमारे चेहरे, स्किन और जो भी इन्फेक्शन से रिलेटेड जो भी बीमारी है उसको ठीक करता है, कैल्शियम अच्छा है तो हड्डियों को बहुत अच्छा मजबूती देता है, इसमें अच्छा मैग्नीशियम है तो सारे जो भी नसों से संबंधित समस्याएं हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, बाल का बढ़ना, आँख की रोशनी के लिए, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ए है, गाजर से भी अधिक और पालक से अधिक इसमें विटामिन ए है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और उसमें जो भी पेट से संबंधित समस्याएं हैं, कब्ज है, ब्लोटिंग है, और या फिर जो भी हमें गैस बनता है, वो सब के लिए इसका सेवन हम किसी भी रूप में करें बहुत ही लाभदायक होगा। लीवर की गंदगी को निकालने के लिए बहुत अच्छा है, इस वजह से जितने भी इन्फेक्शन, स्किन की बीमारियां, उसके लिए बहुत अच्छा होता है, और कैंसर तक को ये ठीक करने की क्षमता रखता है। तो ये बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर और बहुत ही अच्छा सुपर फूड है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत होती है, तो सबसे बड़ी बात कि रोग को दूर करता है और नया रोग ये बनाता नहीं है।
1: मुनगा का फूल से क्या बना सकते हैं?
0: मुनगा के फूल से हम अचार बना सकते हैं, उसको सुखा के उसको भी हम इसी तरीके से जैसे दाल बना रहे हैं तो उसमें तड़का डाल दें, मुनगा के फूल का साग भी बना सकते हैं। सबसे अच्छा है कि लंबे यूज के लिए हम अचार बना लें और उसको रिहाइड्रेट करके एयरटाइट डब्बे में रख दें, मतलब कि उसको अच्छे से साफ सुथरा करके, धुल के और अच्छे से धूप में सुखा के, एकदम उसका पानी जब खत्म हो जाए, 2% तक उसका वाटर कंटेंट रह जाए, तब उसको हम एयरटाइट डब्बे में रख लें, और जब भी हमको साग बनाने की, सब्जी बनाने की जरूरत हो, इसको गर्म पानी में डाले और वो पानी लेके सोख लेगा, फिर से वो फ्रेश हो जाएगा, नॉर्मल ताजा हो जाएगा और उसके हम सब्जी बना सकते हैं। तो उसको सालों भर यूज करने के लिए उसका हम ड्राई करके रख सकते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विशाखा सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को सहजन, जिसको हम लोग मुनगा भी कहते हैं, इसकी खेती से आर्थिक एवं स्वास्थ्य लाभ कैसे हो, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार, धन्यवाद।
2: तो एखन हमरे मन के बड़ा नगद जानकारी दिलाए कि सहजन कर खेती से हमरे के आर्थिक सहायता कातिर हो सकेला और इकर से स्वास्थ्य हमरे कर कैसन बढ़िया रह सकेला, इकर बारे में बड़ा बेस जानकारी भेटालक। और इनकर बारे में जानकारी दिलाए डॉक्टर विशाखा सिंह और इनकर से बातचीत कर लें हमरे के संगी कृष्ण जीवन पौराणिक।
1: अब देखो, जानकारी कर बाद में तने रीझ रंग भी करे चाहिए का?
2: एकदम नगद गोठ रे कहले।
1: तो आओ हमरे एगो गीत सुना थी, कृषि विकास गीत,
2: कलाकार अजीत कुमार महतो और संगी मनकर गावल गीत।

0: तो बड़ा बढ़िया गीत रहे, अजीत कुमार महतो और संगी मनकर गावल गीत।
1: आगे कार्यक्रम में हमरे किसान बिग्गा उड़ान से करल गोइठ के सुनब और इनकर से गोठिया है हम बेकर संगी कृष्ण जीवन पौराणिक।
0: किसान भाई बहन मने आज हमारे साथे हैं एगो प्रगतिशील किसान बिग्गा उड़ाव। तो बिग्गा जी और के जोहार कर रहे थे,
2: जोहार।
0: रावर रहे वाला कहाँ कर रहे थे?
2: हम हमारा नाम बिग्गा उड़ाव है, ग्राम चितरकोटा वड़का टोली पोस्ट पाली थाना रातू जिला रांची कर किसान ही।
0: तो रावर कितना दिन से खेती किसानी कर काम करे लगे?
2: खेती किसानी कर काम जो है ना, जब से हम जवान रही से समय से खेती में एंगेज ही हम, ताकि खेती से बहुत हमके पहचान भी बन गया है कि खेती हम करते हैं, सब जाने कि प्रगतिशील किसान, जैसे कृषि विभाग से भी कई तरह से हमके पहचान बन जाए।
0: तो रौर बाबा किसान रहे और खेती किसानी में उतर गए हैं ना। एखन रौर ठिना कितना जमीन है?
2: जमीन हमारे जगह 10 एकड़ जमीन है।
0: 10 एकड़ जमीन है, तो 10 एकड़ जमीन में पूरे में रौर खेती करी ला?
2: पूरे में खेती करी ला।
0: और का कर खेती करी ला?
2: एखन तो दो इन में धान लगा ही, जते डाँड हो उकर में टमाटर हो बैगन हो बीन लगा ही, 3 एकड़ में स्वीट कॉर्न मक्का लगा कर सारा तैयारी हो जाए है।
0: अच्छा, तो टमाटर कर खेती रौरे कर ली है तो कितना जगह में कही रही?
2: 1 एकड़ में टमाटर है।
0: 1 एकड़ में, और 1 एकड़ में टमाटर की खेती कर ली है तो कैसे कैसे कर ली है से हमारे किसान भाई बहन के बढ़िया से विस्तार से बताओ शुरू।
2: 1 एकड़ में टमाटर लगा ही, 1 एकड़ कर खेत के पहले तैयार कर ली, खेत के तैयार कराल कर बाद में उकर में पूरी तरह से दार बनाए दे ही, जिके बेड का है ना, बेड बनाए के पूरा उकर में ड्रिप सिस्टम लगाए दे ही, ड्रिप सिस्टम कर बाद ऊपर से मल्चिंग भी कर ही प्लास्टिक कर, और उकर बाद में करीब करीब 20 जून आसपास में टमाटर के लगाए ही।
0: अच्छा,
2: और पूरा ड्रिप कर साथ व्यवस्था, उस समय थोड़ा थोड़ा गर्मी भी रहे, लगाल कर बाद धूप में लगलग किया रहे बड़ा दिक्कत हो जाए, लेकिन फिर भी कुआं में कुछ पानी रहे उकर से जीवित रख ली और टमाटर के जिंदा रख के एखन के प्रोडक्शन बढ़िया कर रही।
0: टमाटर अब तैयार हो गए?
2: निकला थे आई जो करीब करीब 3 क्विंटल बाजार लाइन रही।
0: अच्छा,
2: रेट भी बढ़िया मिल लग 25 रुपया।
0: तो टमाटर की खेती जैसे एखन किसान भाई मन मन कर रहे हैं और टूटत भी है, तो एखन रोग मन भी लागलक हुई टमाटर?

0: रोग लाग है, कि एखन जे फंगस रोग लगेल नहीं, उकर से उकर पौधा के सिकुड़न आ जाएला, सिकुड़ेला उकर से एक होते होते बहुत फैलेला। इकर जे दवा दे ही एखन जैसे फफून फॉस्फोरस केर ये दवा दे ही कार्बनडाजिम, माइकोजिम, एमिस्टर टॉप, रेडियोमिल और एमेस्टाटो, ये दवा से ही उनके साफ हो गए।
1: टमाटर में कैसे मालूम हुए कि बीमारी लगल?
0: टमाटर में बीमारी लगे कि खेत में जब जाई तो उकर इके देखी ला खेत का अथी के टमाटर पौधा के, तो फंगा जब लग गए उकर पौधा सिकुड़न में आ जाए पता चल जाए।
1: तो इतना बढ़िया जो रौरे टमाटर के खेती कर ली है, तो टमाटर कर कौन किस्म के रौरे लगा ली है?
0: ये टमाटर है ना, ये टमाटर के हम इन छत्तीसगढ़ से के गच्छी मंगाए ही, क्योंकि यहाँ का जो लोकल टमाटर है ना वो हम इन सदा में लगाए ला, इके तो ड्रिप में लगाए से लेके छत्तीसगढ़ से मैं मंगाए बीचा के। ये गच्छी का दाम पड़े 12 रुपया।
1: अच्छा, गाछी मंगाए,
0: गच्छी मंगाए रही।
1: आवे वाला समय में एखन और कौन खेती कर तैयारी करत है?
0: एखन आवे वाला दिन में 3 एकड़ में स्वीट कॉर्न मक्का लगाकर पूरा तैयारी हो जाए है।
1: 3 एकड़ में? तो 3 एकड़ में रोरे मक्का एखन लगाओ, तो उकर खेत कर तैयारी रोरे कैसे करो?
0: खेत कर एखन जो 2-3 बार जोताई कर दे ही, एक बार टोड़ो हार से और एक बार रोटावेटर से खेत कर जोताई हो जाए, घास कुछ हल्का फुल्का है और 1-2 बार जोताई कर देवे, घास सफा हो जाए, उकर बाद में खेत कर तैयारी गोबर गिराए दे ही, दार बनाए देवे, दार में रासायनिक खाद और गोबर दे देव और उके उकर बाद में ढाप दे, ढपल कर बाद में ऊपरे से मकई कर दाना हो के घुसाए दे, उके जन्मे सुविधा हुई, बहुत जल्दी जन्म जाए, जन्मल कर बाद में जैसे जन्मल और पौधा प्रोडक्शन के नीचे जाए नहीं, उतना रंग ऊपरे भी उके दिखे हरा भरा।
1: और घर में खाद का क्या प्रयोग करी?
0: खाद का तो कहीं DAP और गोबर खाद ही दे ही।
1: गोबर खाद, गोबर खाद से बढ़िया हो?
0: बढ़िया हो एकदम।
1: और ये जैसे रौरे बीज के गिराए दिली और पौधा जैसे नजग गेलक, इकर देखभाल कैसे करी?
0: देखभाल तो खेत में किसान तो रोज जाए नहीं, कहीं के कौन कोई कोना में कोई रोग तो नहीं लग है। खेत में जैसे किसान जाए तो चारों सिर देखे लगे, कहीं फफूंदनाशक तो नहीं लग है, तो किसान तो देखते ही दवा मारे लो खेत में। तो
1: तो स्वीट कॉर्न में सबसे बढ़िया माटी कौन सा हो?
0: इखन जो मिट्टी हो नहीं, जैसे दोमट मिट्टी हो, दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी, इकर से मकई कर जड़ के सहेक ले या थोड़ा मोड़ा गर्मी से भी के सहेक कर उके पावर मिले लगा, कि बलसुआ टाड़ में नहीं उकर में बहुत जल्द सूख जाएला नहीं। लाल मिट्टी और दोमट में उसको सहन मिले लुके, नमी रहे लुकर में, नमी बनाए रखेला।
1: तो 3 एकड़ में जैसे रोरे मकई कर खेती कर ली, ये कितना दिन लग जाए लेकर तैयार हो?
0: 3.5 महीना लग जाए।
1: 3.5 महीना जब ये तैयार हो जाएला, तो जैसे एखन लगा ली और 3.5 महीना कर बीच में कैसे कैसे उकर देखभाल करी?
0: इकर देखभाल करते रहो के जैसे 1 फीट हो गए मकई नहीं, तो के पूरा कोड़ा करे है उके, कोड़ा करके एक बार हल्का हल्का DAP और यूरिया देख के मिला के पूरा एकदम दार कर किनारे किनारे दे देवे फणहेदना हेदना, उकर बाद में पूरा मिट्टी के उकर एकदम सहन को रुके, ताकि गिरे लोड संभाए उतना मिट्टी दे देवे उके, उकर बाद में के पूरा मिट्टी में चढ़ाए देवे उके।
1: 3 एकड़ में जैसे खन रौरे मक्का कर खेती करब, तकर में पूंजी कत लग जाए?
0: पूंजी मोटा मोटी 30-35 हजार रुपये लग जाए खन।
1: अच्छा, 30-35 हजार। और आमदनी कितना हो जाए?
0: आमदनी जब इके बेचब नहीं, तब तो एखन तो रेट भी बढ़िया मिली हमके बुझाली, इस समय के रेट भी बढ़िया रहेला, मकई के बारे समय खत्म हो जाएला, ये जब एखन कर मकई निकली नहीं, ये कम किसान एखन मकई लगाए नहीं, रेट बढ़िया मिली कर 2-3 लाख रुपये, तो फायदा अपन आसान से हो जाए।
1: 30-35 हजार लगा ली और
0: 3.5 लाख रुपया
1: कमा ली, ती तो बहुत बढ़िया इनकम है किसान भाई के खातिर।
0: रेट भी बढ़िया एखन मिली नहीं।
1: जोताई कर का साधन है?
0: जोताई तो अपन गाड़ी है, साधन है पूरा, जखन जैसे मौका मिली उसने जोत दिली, तो अपन गाड़ी है तो ट्रैक्टर,
1: अपन ट्रैक्टर
0: है।
1: और गाय बैल कर प्रयोग करी? लेकिन
0: गाय बैल भी है, गोबर अपन घर में भी है। तो
1: अच्छा, तो बीघा जी रौरे हमारे स्टूडियो में आली और किसान भाई बहन मन के अपन खेती बाड़ी कर अनुभव शेयर कर ली, तो इकर ले बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जोहार जोहार।
2: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना
3: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा

0: केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: तो इकरे संगे किसान वाणी कार्यक्रम कर बेरा सिरालक। ई कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,
4: और प्रस्तुति रहे प्रभु सरनकर।
3: तो सुनोया भाई,
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए, प्रस्तुत है खेती बारी।

खेती बाड़ी सुनने वाले तमाम किसान भाई बहनों को प्रदीप का नमस्कार। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कचरा अपघटक के बारे में, जिसे अंग्रेजी में वेस्ट डिकम्पोजर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कचरा अपघटक के बारे में सबसे पहले किसान भाई जान लें कि हमारा जो देश है, इसमें प्रतिवर्ष लगभग 6,20,00,000 टन जैव कचरे का उत्पादन होता है। न केवल कचरे की मात्रा में वृद्धि हुई है, बल्कि एक अवधि में कचरे की प्रकृति में भी काफ़ी बदलाव आया है। भारतीय शहरों में प्रति व्यक्ति कचरे का प्रतिदिन उत्पादन 200 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक होता है। प्रत्येक गांव औसतन प्रतिदिन लगभग 2 टन कचरा पैदा करते हैं, जो बड़े पैमाने पर गाय के गोबर, गाय बांधने के स्थान का कचरा और फसल अवशेष से उत्पन्न होता है। इसके अलावा यह भी पाया गया है कि प्रतिवर्ष गौशालाओं में 1,00,00,000 टन गोबर का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त लगभग 11,00,000 टन प्रतिवर्ष उच्च कोटि का कचरा चीनी उद्योग से उत्पन्न होता है। विकासशील देशों में ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में कृषि और शहरी ठोस कचरे का प्रबंधन चिंता का मुख्य कारण है। वर्तमान में ऐसे कचरे को आमतौर पर जला दिया जाता है या उन्हें सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए गाजियाबाद में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ने कचरा अपघटक नामक एक उत्पाद विकसित किया है, जो कुछ लाभकारी सूक्ष्म जीवों से निर्मित किया गया है और इसके जो प्रयोग हैं वह अभी तक सफल रहे हैं। किसान भाई, जैसे कि सभी प्रकार के कृषि और बागवानी फसलों में रोगों से लड़ने के लिए जैव कचरे की शीघ्र कंपोस्टिंग, ड्रिप सिंचाई, पत्तों पर छिड़काव के लिए जैविक कीटनाशी के रूप में तथा फसल के अवशेषों की कंपोस्टिंग के साथ साथ बीज उपचार के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। कचरा अपघटक में उपस्थित सूक्ष्म जीव प्राथमिक चयापचयों का उत्पादन करते हैं, जो सूक्ष्म जीव विरोधी यौगिकों के सहायक हैं। यह कई तरह के रोगानुरोधी द्वितीयक चयापचयों का भी उत्पादन करता है, जिनमें पॉलीकिड्स और अल्केन्स साममेद शामिल है। यह रोगानुरोधी चयापचयों को, जो कि किसी खेत में बीमारियों को नियंत्रित करता है, में सहायक होता है। इसके अलावा यह ग्लूकेनस और B1 और B3 ग्लूकेनस एंजाइम भी पैदा करता है, जो पौधों की रक्षा तत्व को सहायता देता है। कचरा अपघटक की विशेषताएं भी है किसान भाई, आप वह भी जान लें। यह सरल और विश्वसनीय है, उपयोग करने

लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। लगभग इसका जो है जीवन काल है वह 3 वर्ष तक का होता है। सभी फसलों के लिए प्रयोग किया जा सकता है और स्वच्छ भारत अभियान के लिए जैव कचरे को जैविक खाद में परिवर्तित करके एक अत्यधिक प्रभावकारी अपघटक के रूप में भी कार्य करता है। यह कम लागत लगभग 20 रुपए प्रति बोतल के हिसाब से मिल जाता है। किसानों द्वारा एक बोतल के प्रयोग से प्रति वर्ष 1,00,000 मीट्रिक टन से अधिक जैविक खाद का उत्पादन किया जा सकता है। एक बोतल वेस्ट डीकम्पोजर से और अधिक वेस्ट डीकम्पोजर का निर्माण, वेस्ट डीकम्पोजर किसानों को छोटी सी बोतल में दिया जाता है और वे खुद किसी भी अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किए बिना इससे और अधिक वेस्ट डीकम्पोजर तैयार कर सकते हैं। किसान भाई, अगर हम बनाने की बात करें इसका, तो इसके लिए 2 किलोग्राम गुड़ लेकर इसे 200 लीटर पानी भरे प्लास्टिक ड्रम में मिला दें। अब कचरा डीकम्पोजर की एक बोतल लें और इस बोतल में उपस्थित सामग्री को गुड़ वाले प्लास्टिक ड्रम में डाल दें। ड्रम में कचरा डीकम्पोजर को अच्छी तरह घोलने के लिए एक लकड़ी की छड़ी से इसे ठीक तरह से मिलाएं। एक कागज या कार्डबोर्ड द्वारा ड्रम को ढक दें और प्रतिदिन इसे 1 से 2 बार हिला दें। 5 दिनों के बाद ड्रम में मौजूद घोल की ऊपरी सतह झागदार और घोल मटमैला हो जाएगा। किसान भाई, एक इसमें ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जो निर्मित घोल से है वह बार बार वेस्ट डीकम्पोजर का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए 20 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर घोलकर 2 किलो गुड़ के साथ एक ड्रम में 200 लीटर पानी में मिला दें, फिर यह 7 दिनों में तैयार हो जाएगा। प्रतिदिन उसे घुमाते रहें 1 से 2 बार। यह तो हो गया किसान भाई कचरा अपघटक की बात। अब हम लोग बात करेंगे कि इसको जो है स्वस्थ जो है कंपोस्ट इसको कैसे तैयार करना है। कचरा डीकम्पोजर के उपयोग से तैयार होने वाली जो खाद होती है वह सूखी, गहरे भूरे रंग की और गंध रहित होती है। यह गर्म भी नहीं होती और बहुत अच्छी गुणवत्ता युक्त होती है, जो उच्च जैविक कार्बन की मात्रा और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होती है। यह मक्खियों और कीड़ों को आकर्षित नहीं करती है, जो वास्तव में स्वस्थ खाद के लिए एक अच्छा संकेत है। आमतौर पर खाद कंपोस्टिंग के मामले में किसानों और आसपास के लोगों द्वारा समस्याएं देखी जाती है, जो कंपोस्टिंग के क्षेत्र में रहने वाले समुदाय के लिए परेशानी पैदा करती है। मौजूदा खाद बनाने के तरीकों के साथ कुछ आम शिकायतें जैसे बदबू या ग्रथित पत्तियों या घास की क्लिपिंग डीकम्पोज नहीं हो पाती है, मक्खन सिरका या सड़े अंडे की तरह दुर्गंध आती है, अमोनिया की तरह गंध, ये कई तरह की समस्याएं आती रहती है। लेकिन अगर अपशिष्ट डीकम्पोजर को तकनीक से अपनाया जाता है तो इस प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होती है। तो बनाते समय आपको सावधानी बरतनी है और जो है कचरा अपघटक से आपको लाभ भी लेना है, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ जो कचरा है उसे जला दिया जाता है या कहीं फेंक दिया जाता है, तो वैसी गलती ना करें। आप इसका सदुपयोग करके अपने खेत में पुनः आप इसका इस्तेमाल करके बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई, ये थी बात वेस्ट डीकम्पोजर की। आइए अब सुनते हैं भेंट वार्ता। धान फसल में कीट एवं रोग प्रबंधन, भेंट वार्ता कर रहे हैं डॉक्टर राजीव कुमार, कृषि विशेषज्ञ पलामी, और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी भाई संतोष।

0: सफर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। किसान भाइयों, कार्यक्रम के आरंभ में आज हम लोग बातें करेंगे धान में लगने वाले कीट और उसके प्रबंधन की। क्योंकि हम एक मुश्त पूंजी लगा चुके होते हैं धान के खेत में और बहुत बार हम वैज्ञानिक तकनीकियाँ नहीं अपना पाते और कीट वगैरह का प्रबंधन नहीं करने के कारण भारी क्षति हो जाती है, लगाई गई पूंजी बर्बाद हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि वैज्ञानिक तकनीकियां अपनाते हुए आप कीट और रोग का प्रबंधन करें, क्या सावधानियां बरतें और रोग कौन कौन से उसमें लगते हैं, बीमारियां कौन कौन सी लगती हैं, उसका बचाव कैसे करें।
1: हम सभी किसान भाई को यहाँ पर बताना चाहेंगे कि कुछ किसान भाई तो धान का रोपाई कर लिए होंगे और कुछ का जो बिचड़ा तैयार हो गया है और वो रोपाई करने की स्थिति में है। तो जिन किसान भाई का बिचड़ा तैयार हो गया है और रोपाई नहीं किए हैं, उन किसान भाइयों को मैं सलाह, जहाँ रोपाई कीजिएगा खेत में वहाँ तक वो चला जाएगा।
0: अच्छा।
1: और दिखाई देंगे और पत्ता जो अंत में झुलस जाता है।
0: अच्छा।
1: तो झुलसने के बाद पौधे का बढ़वार प्रभावित होता है और अंत में उत्पादन भी प्रभावित होता है। तो जो किसान भाई अगर बीज उपचार करके लगाए होंगे, जो कार्बेंडाजिम से हम लोग बीज उपचार करते हैं, अगर बीज उपचार करके लगाए होंगे उनके धान के जो पौधे हैं ना, उस पर इस तरह का धब्बा दिखाई नहीं देगा।
0: अच्छा।
1: लेकिन जो किसान भाई नहीं कर पाए हैं किसी कारण से, तो वो जो है कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से बीज स्थली में ही उसका छिड़काव कर दें और जो रोपाई कर दिए हैं तो उस रोपे गए धान पे जो है इसका छिड़काव कर देने से जो यह रोग जो है आगे जो नहीं बढ़ेगा। दूसरा जो धान का प्रमुख रोग है वह झुलसा रोग है।
0: अच्छा।
1: जो पौधों पे जो है बाली निकलने का अवस्था में अक्सर दिखाई देता है, भूरे रंग का दिखाई देता है और बीज का जो है वो राख के रंग का होता है। तो अगर जो बीज उपचार कर लिए हैं तो उनका जो है इससे बचाव हो जाता है, अगर नहीं किए हैं तो कार्बेंडाजिम का छिड़काव करके इस रोग का प्रबंधन निदान पा सकते हैं। रंग होता है वो पीले रंग से संतरा के रंग का पीला दिखाई
0: अच्छा,
1: देता है।
0: अच्छा।
1: और उसका धीरे धीरे आकार बढ़ जाता है तो गहरा हरा या जैतून हरा जिसको कह सकते हैं
0: हो जाएगा।
1: हाँ, उस आकार में वो दिखाई देता है और धान के आकार से है ना 2 गुना से भी अधिक जो है उसका आकार बन जाता है और हवा के बहने पे ये छोटे छोटे मतलब पाउडर के रूप में दूसरे धान के ऊपर में चला जाता है। तो खास करके जो हाइब्रिड धान है उसका ये बहुत बड़े समस्या है।
0: अच्छा।
1: तो ऐसे में अगर उसका बचाव जो है बाली निकलने के पहले भी ये बीज उपचार करके लगाइए, बाली निकलने के पहले फफूंद नाशक जो है या तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है 10 ग्राम 25 लीटर पानी में मिला के एक एकड़ में छिड़क सकते हैं, यानी दूसरा जो है टेबुकोनाजोल के साथ है ना ट्राइफ्लोक्साइस्ट्रोबिन आता है।
0: अच्छा।
1: ये बहुत अच्छी दवा है और बहुत कारगर है, जो कि 4 ग्राम 10 लीटर पानी में अगर मिला करके हम लोग छिड़कते हैं
0: तो
1: इस बीमारी से बहुत हद तक हम निजात पा जाते हैं। इसके अलावा वो सड़ने वाला एक बीमारी लगता है।
0: अच्छा।
1: जब कल्ला निकलने का जो अवस्था होता है उस समय जो है ना इस बीमारी का प्रकोप हो जाता है और जैसे जैसे पौधा का बढ़वार होता है तो पत्ते के ऊपर में भी है ना जिसको कि वे भी रंग का कहते हैं ऊपर नीचे तरंग टाइप का धब्बा दिखाई देता है।
0: अच्छा।
1: उसका जो नीचे जो पानी से लगा हुआ भाग होता है
0: जी
1: वो सड़ जाता है। जब धान करने का अवस्था आता है तो जब हम लोग हाथ से पकड़ते हैं
0: जी
1: तो बिना हसुआ लगाए हुए है ना वो मुट्ठी में आ जाता है, तो उससे जो है भारी नुकसान होता है। तो उस तरह का अगर पहले आपके खेत में दिखाई दिए हैं तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि बीज उपचार करके लगाएं और ये जो टेबुकोनाजो और ट्राइफ्लोक्साइस्ट्रोबिन हम जो दवाई बता रहे हैं वो नाशक है, इसका प्रयोग अगर हम लोग करते हैं
0: तो लाभ हो सकता है।
1: हाँ, तो जो किनारे किनारे कल्ला निकलता है उसी समय से इसको स्प्रे करना होगा, 2 से 3 स्प्रे काफ़ी है। इससे जो है इसका प्रबंधन जो है हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो ये जो 4 धान का प्रमुख रोग जो किसान भाई अपने खेत में भी देखते

0: हैं, उसका प्रबंधन करना अति आवश्यक है। नहीं तो ये सीधे उत्पादन को प्रभावित करता है, उत्पादन जो है जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता
1: जी,
0: है।
1: अब बात कीट की आती है।
0: अब दूसरा जो है समस्या जो है कीट का है, तो कीट जो धान का फसल में शुरुआत से ही जब हम लोग धान लगाते हैं
1: जी,
0: बिचरा तैयार करते हैं उस समय से लेके काटने का अवस्था तक में ये जो है होता है।
1: अच्छा,
0: ये इसका सबसे आसान तरीका है पहचानने का। और ये जब लगता है तो पूरा खेत का खेत जो है ना नुकसान कर देता है, बर्बाद। फिप्रोनिल 0.3 g जो है 250 ग्राम 100 स्क्वायर मीटर में छिड़क देते हैं, उसके बाद उसको उखाड़ कर खेत में रोपा भी कर देंगे तो इस कीट का जो है प्रकोप
1: हो
0: नहीं होगा।
1: जी जी।
0: लेकिन जो किसान भाई खेत में रोपा कर चुके हैं उनको जो है फिप्रोनिल जो दानेदार कीटनाशक है 10 किलोग्राम 1 एकड़ में उसको छिड़कना चाहिए
1: जी।
0: तो इस वो हरा रहता है।
1: अच्छा,
0: तो ये तना छेदक का पहचान है। लेकिन अगर सारा कीट के प्रबंधन के लिए जो है अगर बीज असली में अगर फिप्रोनिल का छिड़काव किए हैं या रोपाई के बाद फिप्रोनिल खेत में छिड़काव किए हैं तो इससे जो है तना छेदक का भी प्रबंधन हो जाता है उसी से।
1: अच्छा,
0: उसके लिए फिर अलग से देने का जरूरत
1: नहीं
0: पड़ता है
1: जी।
0: उसके बाद जो है तीसरा जो है बकिया कीट, किसान भाई जानते हैं जिसको कि बोलचाल में बाकी लगिया
1: अच्छा,
0: किसान कहते हैं, जिसमें कि अक्सर पत्ता जो है ना सफेद हो जाता है
1: जी,
0: लगेगा
1: जी।
0: कि पूरा कैंची से हम लोग पत्ता को ऊपर से काट दिए हैं।
1: अच्छा,
0: तो ऊपर पहले जो साढ़ा कीट और तना छेदक के लिए हम लोग बताए हैं, अगर इसको हम लोग व्यवहार करते हैं तो उससे इस कीट का प्रकोप कम हो जाता है। दूसरा है कि जो देसी तरीका है ये जूट का रस्सी को किरासन तेल में भिंगा करके अगर इसके ऊपर से भी पार करते हैं।
1: अच्छा,
0: तो जो उसके कटा हुआ पत्ता जो झूल ऊपरी भाग से
1: जो सफेद
0: हुआ है वो नीचे पानी में गिर जाएगा। चूंकि किरासन तेल है ना वो जब पानी में गिरेगा तो उसका पेस्ट तनाव टूट जाता है।
1: अच्छा,
0: उस पे जो भी कीड़ा रहेगा वो नीचे डूब जाएगा, मर जाएगा।
1: अच्छा,
0: तो ये
1: ये आपका एक नुस्खा, देसी नुस्खा
0: है। अच्छा, जो किसान भाई इसको बहुत आराम से अपना सकते हैं।
1: मतलब जूट को आप डुबा दीजिए, किरासन
0: तेल में डुबा दीजिए और दो आदमी दोनों छोर को पकड़ के रस्सी को एक बार इधर से पार कीजिए, एक बार इधर से
1: उसको मतलब टच करते हुए
0: तो उसे क्या होगा ना कि जो लगेगा कि कुछ धागे से पत्ता लटका हुआ है तो उसमें कीड़ा रहता है।
1: अच्छा,
0: तो वो जो है रस्सी जब उसके अति में आएगा तो वो नीचे पानी में गिरेगा,
1: संपर्क में आने
0: गिरेगा ही
1: जी।
0: उसमें किरासन तेल टच करेगा, वो जब पानी में गिरेगा तो देखेंगे ना कि सात रंग में दिखाई देना लगेगा, पूरा उसका रंग जो हरा पीला लाल दिखाई देगा। और उसपे जो है जब ये कीड़ा पत्ता वाला गिरता है तो डूब जाता है पानी में और फिर वो मर जाता है। तो ये देसी तरीका है, या नहीं तो जैसे ही इसका प्रकोप होता है तो इमिडाक्लोपीड है ना जैसे शुरुआत हुआ उसका छिड़काव किसान भाई कर सकते हैं 1 ml 3 लीटर पानी में। और दूसरा जो देसी और उपाय है कि पंछी को बैठने के लिए खेत में देखते होंगे किसान भाई झाड़ी वगैरह
1: लगा देते हैं जी जी,
0: तो पंछी जो है उस पे बैठता है और उस कीड़ा को जो है ना उड़ के खा लेता है।
1: अच्छा,
0: तो इससे भी एक प्रबंधन हो जाता है। और जब धान काटने के पहले के अवस्था में है ना किसान भाई के अपने खेत में देखते होंगे कि कहीं गोल गोल टाइप का बीच बीच में धान जो है सूख जाता है।
1: अच्छा, हाँ ऐसा होता है।
0: हाँ,
1: जी।
0: अब काटने का अवस्था में ही होता है तो वो भूरा मधुआ है।
1: अच्छा,
0: जिसका बढ़वार जो है ना जिस खेत में ज्यादा नाइट्रोजन का व्यवहार किसान भाई करते हैं उसमें ज्यादा होता है।
1: अच्छा,
0: और इसका जो नीचे जो भाग होता है उस पे देखेंगे तो ये कीड़ा जो है ना कभी ऊपर कभी नीचे आगे पीछे
1: करता रहता है।
0: तो अगर हम आज देख रहे हैं कि थोड़ा सा पौधा को नुकसान किया है, फिर अगर हम उसको कल सुबह जाके देखेंगे तो एक गोलाई में अच्छा बड़े एरिया को नुकसान कर दिया रहता है। तो इसका उपाय है कि जब लग जाए तो तुरंत धान का आप कटाई कर लीजिए।
1: अच्छा,
0: दूसरा है कि जब

0: कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो पत्ता के सिर्फ ऊपरी भाग में नहीं, नोजल को पत्ते के नीचे वाले भाग में भी ले जाइए, ताकि वहाँ पे जो भी कीटनाशक है, कीट है, है ना,
1: उसका प्रभाव है।
0: तो कीटनाशक के रूप में फिप्रोनिल जो दानेदार शुरू में व्यवहार कर सकते हैं। अगर छिड़कना है तो 5 SC आता है 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। ये लगने के पहले का है, बचाव के रूप में हम लोग इसका कर सकते हैं। वैसे ही इमिडाक्लोपीड है 1 ml 3 लीटर पानी में व्यवहार कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: और ये बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला कीट है, चूंकि देखते ही देखते पूरा खेत जो है ना वो लगेगा कि पूरा खेत है जल गया है, झुलस गया है। और ऐसे स्थिति में कुछ भी जो है ना जितना उम्मीद कर रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है, उत्पादन प्रभावित होता है।
1: जी।
0: कभी कभी जो है रस चूसक कीट भी है।
1: अच्छा।
0: जो पत्ते से ये भी भूरा मधुआ भी रस चूसक ही है, और उसके अलावा भी रस चूसक कीट है जो पत्ते से हरे भाग से रस चूस लेता है,
1: अच्छा,
0: जिससे जो उसका भोजन है, चूंकि क्लोरोफिल रहता है और सूरज के प्रकाश के रोशनी में वो अपना भोजन बनाता है, तो वो भी प्रभावित होता है और किसी न किसी तरह उत्पादन को ये प्रभावित करता है।
1: तो इसके बचाव के लिए,
0: इसके बचाव के लिए जो इमिडाक्लोपीड हम अभी दवाई बताए हैं 1 ml 3 लीटर पानी में, इसके अलावा जो है नीम का भी दवाई किसान भाई घर में भी बना सकते हैं और बाज़ार में भी उपलब्ध है। उसको 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के इसको छिड़कने से ये कीट का बचाव किया जा सकता
1: सकते
0: है।
1: जी।
0: तो अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो फसल में लगने वाले कीट का और बीमारी का प्रबंधन करना अति आवश्यक हो जाता है।
1: जी हाँ किसान भाइयों, ये बातें हो रही थी धान फसल में प्रबंधन, जो मुख्य फसल है, और हमारे किसान भाई अभी इसी की खेती में मशगूल हैं और जानकारियाँ आपके साथ साझा कर रहे थे। विस्तृत जानकारियाँ जो आपने प्राप्त की आपसे साझा कर रहे थे पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय कृषि वैज्ञानिक सह कार्यालय प्रधान डॉक्टर राजीव कुमार जी। सर, आप कार्यक्रम से जुड़े और धान की खेती में किस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंधन कीट वगैरह के बारे में हमारे किसान भाई करें इससे संबंधित जानकारियां साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।
0: नमस्कार, और आपको भी धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, धान फसल में कीट एवं रोग प्रबंधन। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर राजीव कुमार, कृषि विशेषज्ञ, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियांकी पलामू, और इनसे बातचीत कर रहे थे हमारे साथी भाई संतोष कुमार। चलते चलते मौसम का हाल आपको बता दें, आज स्थानीय शहर डालटनगंज का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सुबह में आर्द्रता रही 88%, जबकि शाम की आर्द्रता 71% दर्ज की गई, वर्षापात शून्य। तो मौसम संबंधी इसी सूचना के साथ ही हमारा आज का खेती बाड़ी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में सुनेंगे आप प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
2: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
1: अरे बहन, परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर, जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
2: बहन, पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
1: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
3: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करे 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड जनहित में जारी।
5: हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले।
6: बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल की IUCD
7: कंडोम,
6: गर्भ निरोधक गोलियां।
8: खुशी का मंजर रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद।
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
9: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पाठ।

0: नहीं।
1: पैसा बढ़ाएंगे हम।
2: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, कर्नाटका के एक दंपति सुपारी के रेशे से बनी कई यूनिक प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटका में शिवमोगा में ये दंपति हैं, श्रीमान सुरेश और उनकी पत्नी श्रीमती मैथिली। ये लोग सुपारी के रेशे से ट्रे, प्लेट और हैंडबैग से लेकर कई डेकोरेटिव चीजें बना रहे हैं। इसी रेशे से बनी चप्पलें भी आज खूब पसंद की जा रही है। उनके प्रोडक्ट्स आज लंदन और यूरोप के दूसरे बाजारों तक में बिक रहे हैं। यही तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक हुनर की खूबी है जो सबको पसंद आ रही है। भारत के इस पारंपरिक ज्ञान में दुनिया सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते देख रही है। हमें खुद भी इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। हम खुद भी ऐसे स्वदेशी और लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और दूसरों को भी ये उपहार में दें। इससे हमारी पहचान भी मजबूत होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और बड़ी संख्या में लोगों का भविष्य भी उज्जवल होगा।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल।
1: बहन, मेरा बबलू तो ठीक से खाता पीता ही नहीं है, बार बार बीमारियां उसे घेर लेती हैं। समझ ही नहीं आता क्या करूं, किससे सलाह लूं?
2: अरे बहन, 104 नंबर डायल कर, जहां पर तुझे बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित चिकित्सकों से उचित सलाह मिलेगी।
1: 104 नंबर, वो क्या है बहन?
2: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन।
3: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: पर हिंसा करने वालों को दी सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। एनपीसीआई की आम जनता और व्यापारियों को बड़ी राहत, 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई मर्चेंट लेन देन पर दीपावली के बाद लगेगा एमडीआर। और रांची में नशा मुक्ति पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित, स्कूल कॉलेज के बच्चों को जागरूक करने और पुनर्वास पर दिया गया जोर। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड हाईकोर्ट ने माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी से जुड़े मामले में बड़ा आदेश दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने यूजर डज नॉट एग्जिट समस्या का सामना करने वाले सभी 20 याचिकाकर्ताओं के लिए सीटें सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। ट्रिपल आईटी रांची में छात्र की मौत के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय साउथ कैंपस की निदेशक प्रोफेसर रजनी अब्बी इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगी। यह कमेटी घटना के कारणों, संस्थान की बुनियादी सुविधाओं और छात्र शिकायत निवारण प्रणाली की जाँच कर सुधार के उपाय सुझाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पश्चिमी सिंहभूम में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की और जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर स्थित आरका जैन यूनिवर्सिटी में आज जिला प्रशासन के सहयोग से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शामिल हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है।
1: अभी SAR का प्रोसेस का बारे में सभी वोटर के इन्वॉल्वमेंट का बारे में काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, आने वाले समय में ये उम्मीद कर रहा हूँ सभी जिला भी इसी तरफ से प्रत्येक घर पर अपने इलेक्शन में जाएंगे। प्रत्येक पात्र भारत नागरिक के एनरोलमेंट का भी प्रक्रिया चल रही है, उनका समय एनरोलमेंट किया जाएगी। किसी का भी कोई दिक्कत हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन उनका मदद करते हैं उनके एनरोलमेंट प्रक्रिया का पूरा।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली में चल रहे आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। जमशेदपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाकर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है।
2: कोई भी पर्व होता है हिंदुस्तान में, हर पॉलिटिकल पार्टी सामान्यतया हर पर्वों के सम्मान करता है। उस समय कोई इस प्रकार के हम कार्यक्रम नहीं करते हैं, कोई बंदी नहीं करते उस समय, कोशिश करते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन पहली दफा ये दिख रहा है। और वो भी कब चुना है, जब नवरात्रा के समय, और अंत में फिर सारे लोग मिलजुल जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये लोग एक ही चट्टे बट्टे के लोग है।
0: पलामू के पूर्व सांसद ब्रजमोहन राम को उड़ीसा का राज्यपाल बनाए जाने पर रांची के अल्बर्टिका चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। 3 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे ब्रजमोहन राम की इस नियुक्ति पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने घोषणा की है कि 2000 रुपए से अधिक के UPI मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। त्योहारी सीजन को देखते हुए NPCI की समिति ने आज यह राहत भरा फैसला लिया है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में बात DMFT फंड और खनिज कल्याण की।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा से देश सेवा के संकल्प को साकार करने में केंद्र सरकार की योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसी का एक प्रभावी उदाहरण DMFT यानी जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट है। वर्ष 2000

0: 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस ऐतिहासिक व्यवस्था से आज खनन प्रभावित क्षेत्रों का कायाकल्प हो रहा है और प्रभावित समुदायों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। आइए सुनते हैं इस दूरदर्शी पहल पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार।
1: पहले खनिज उत्पादन का लाभ उन क्षेत्रों और राज्यों को उतना ही मिल पाता था जहां से खनन होता है। हमने इस नीति को भी बदला। केंद्र की भाजपा सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का गठन किया। इसे खनिज से हुई आय का एक हिस्सा उसी क्षेत्र में विकास के लिए लगाना सुनिश्चित हुआ।
0: प्रधानमंत्री के इसी विजन का सीधा और व्यापक असर आज हजारीबाग जिले सहित राज्य के खनन प्रभावित क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। भारत सरकार के राष्ट्रीय डीएमएफ पोर्टल के अनुसार जुलाई 2026 तक अकेले हजारीबाग जिले को लगभग 1389 करोड़ रुपए से ज्यादा प्राप्त हुए हैं। इस राशि से क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और बुनियादी ढांचे की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। आइए सुनते हैं इस जमीनी बदलाव पर हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल और कटकमदाग प्रखंड की प्रमुख कुमारी विनीता को।
2: डीएमएफटी फंड प्रधानमंत्री जी का जो है देन है। वैसे सभी इलाके जहां मेजर मिनरल्स का माइनिंग होता है वहां पे एक फिक्स्ड अमाउंट जो है डीएमएफ फंड के रूप में जमा किया जाता है जो कि उसी प्रभावित क्षेत्र के लिए काम होता है।
3: डीएमएफटी से जो कार्य हमारे क्षेत्र में हो रही है जैसे स्कूल और आंगनबाड़ी को

0: नशा मुक्त झारखंड अभियान के अंतर्गत आज यह कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें विभिन्न सरकारी डिपार्टमेंट्स के प्रतिनिधिगण आए हुए हैं। उद्देश्य बस एक है कि झारखंड नशे से मुक्त हो और इस नशे से मुक्ति के लिए सभी डिपार्टमेंट्स का समन्वय कन्वर्जेंस आवश्यक है।
1: बोकारो पुलिस की गश्ती को और मजबूत करने के लिए जीपीएस से लैस 53 नई मोटरसाइकिलें बेड़े में शामिल की गई हैं। पुलिस अधीक्षक नाथुसी मीना ने हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया। एसपी ने बताया कि जीपीएस के जरिए मुख्यालय से निगरानी रखी जाएगी।
2: पुलिस केंद्र बोकारो में 156 मोटरसाइकिल सभी थाना को वितरित किया गया है और काफी अच्छी मोटरसाइकिल्स हैं। उनको मॉडिफाई करके इन मोटरसाइकिल्स में सभी में जीपीएस लगाया गया है और साथ ही इसमें सायरन भी लगाया गया है ताकि उसको प्रभावी रूप से उसका उपयोग भी किया जा सके। साथ ही जो वरीय पदाधिकारी है जीपीएस के माध्यम एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जीपीएस को मॉनिटर कर सके ताकि पेट्रोलिंग पार्टी है वो कहाँ पर ड्यूटी कर रही है नहीं कर रही है उसकी प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सके।
1: और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पूर्वानुमान के मुताबिक 14 से 16 अक्टूबर तक सुबह में कोहरा या कुहासा रहेगा और बाद में आंशिक बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड हाई कोर्ट ने माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी से जुड़े मामले में दिया बड़ा आदेश। सभी 20 याचिकाकर्ताओं के लिए सीटें सुरक्षित रखने का दिया निर्देश। IIIT रांची में छात्र की मौत मामले का केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने लिया संज्ञान। 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पश्चिमी सिंहभूम में SIR कार्यों की समीक्षा की। विरोध के नाम पर हिंसा करने वालों को दी सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। NPCI की आम जनता और व्यापारियों को बड़ी राहत। 2000 रुपए से अधिक के UPI मर्चेंट लेन देन पर दीपावली के बाद लागू होगा MDR। और रांची में नशा मुक्ति पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित। स्कूल कॉलेज के बच्चों को जागरूक करने और पुनर्वास पर दिया गया जोर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मुझे भी सब्जी दाल दो ना।
4: नहीं, तू ऐसे ही खा, इसे भैया को खाने दे।
5: अरे अरे, आप ये क्या कर रही हैं?
6: बढ़ती बच्ची किशोरियों के साथ खान पान में भेदभाव ना करें।
5: किशोरावस्था में लड़कियों का विकास तेजी से होता है,
6: उनमें कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं,
5: माहवारी प्रारंभ होती है,
6: उन्हें अच्छा और उचित पोषक आहार की आवश्यकता होती है।
5: याद रखें, स्वस्थ बालिका ही भविष्य में स्वस्थ माँ बन सकती है।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
8: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गुमला संवाददाता।
1: गुमला जिला में दशहरा, दीपावली एवं छठ पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसको लेकर उपायुक्त दिलेश्वर महतो एवं पुलिस अधीक्षक हारिश बिन जमा की संयुक्त अध्यक्षता में जिले के शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक को लेकर पुलिस अधीक्षक एवं उपायुक्त ने बताया कि
2: आने वाले कुछ हफ्तों में हम लोग त्योहारों को मनाएंगे, दुर्गा पूजा से लेकर दिवाली और छठ, आज सभी को लेकर एक शांति समिति की बैठक आयोजन किया गया था। हम लोगों को जो दिशा निर्देश हम लोगों के मुख्यालय के द्वारा प्राप्त होता है बार बार, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें आज हम लोगों ने शांति समिति की मीटिंग में डिस्कस किया है, सारे मेंबर्स को बताया गया है, पूजा समिति के सारे लोगों की तरफ से भी अपनी बात को रखा गया है और एक बहुत ही अच्छे माहौल में प्रशासन की तैयारी पूर्ण है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हर साल की तरह इस साल भी इन त्योहारों को हम लोग गुमला जिले में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाएंगे।
3: जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न की गई जिसमें आगामी आने वाले त्योहारों के बारे में सभी शांति समिति के सदस्यों और हमारे प्रशासन के पदाधिकारियों के बीच कैसे समन्वय स्थापित हो और समन्वय स्थापित करके हमारे जिले में पूरे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से कैसे इन त्योहारों को मनाया जाए, इस पर चर्चा की गई।
1: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत से गुमला जिला के आम जनता को काफी लाभ मिल रहा है। इस संबंध में आयुष्मान भारत की जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मोनिका बताती हैं कि
4: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री अगुआ स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अभी तक हमारे जिले में 70% कवरेज है। इसका मतलब है कि 70% लोग जो गुमला में मौजूद है जिनके पास राशन कार्ड है उनका आयुष्मान भारत योजना के तहत वो हमारे अम्ब्रेला के अंदर आ चुके हैं और उनका कार्ड बन चुका है और इसका वो लाभ कहीं पे भी जाकर के उठा सकते हैं, कोई भी प्राइवेट या पब्लिक संस्थान पे जो एम्पैनल्ड है आयुष्मान द्वारा उसका वो लाभ उठा सकते हैं।
1: वहीं सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अनुपम किशोर ने बताया कि
5: हमारे पास जो भी मरीज आते हैं पहले वो भर्ती होते हैं, उनके बाद हमारे आयुष्मान के जो टीम है, आयुष्मान मित्र लोग है, वो जाके उनके पास सारा चीज उनका देखते हैं, उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास राशन कार्ड आधार कार्ड में दोनों जो नाम है वो पूरी तरह मतलब सही है, मिलान कर लेते हैं कि मैच कर रहा है, उसके बाद उसका आयुष्मान हम लोग इनरोल कर लेते हैं, उनको सारी सुविधाएं जैसे कि जो दवाइयां हमारे उपलब्ध है वो हम लोग देते हैं और हमारे डॉक्टर्स ने आवश्यकता अनुसार कुछ दवाइयां ऐसी भी लिख दी जो उनको चाहिए बट हमारे स्टॉक में नहीं है तो हम उनको बाहर से मंगा के, हमने एक दो दवा दुकानों से हेमो कर रखे है वहां से मंगा के उनको उपलब्ध कराते हैं और अगर कुछ ऐसे जांच भी है सेम तरह कि अगर कोई जांच हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है मगर उनको जांच वो कराना आवश्यक है डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार, तो वो जांच हम लोग बाहर लैब से भी करा देते हैं और हमारा प्रयास ये रहता है कि उस मरीज का एक भी पैसा पॉकेट से एक्स्ट्रा खर्च ना हो। एडमिशन होने से डिस्चार्ज तक हम पूरा ख्याल रखते हैं, उनको दवाई से जांच से संबंध कोई भी चीज एक उनको एक भी रुपये संबंध खर्च नहीं करना पड़े, वो सारी जिम्मेदारी हमारी होती है।
1: बहरहाल गुमला जिला के गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए केंद्र सरकार की यह महत्वपूर्ण आयुष्मान भारत किसी वरदान से कम नहीं है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला।
0: अभी आप सुन रहे थे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र का प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं खुला आकाश कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता। विषय है राष्ट्र कवि नामधारी सी दिनकर। वार्ताकार हैं स्वाति सहाय।

मेरा सादर अभिवादन। मैं स्वाति सहाय, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के ऐसे महान कवि की जिनकी कविता में राष्ट्र प्रेम की हुंकार भी है, सामाजिक चेतना भी है, प्रेम की कोमलता भी है और अन्याय के विरुद्ध विद्रोह की आवाज भी। जी हाँ, आज का हमारा विषय है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें साहित्य जगत में सम्मानपूर्वक राष्ट्र कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के उन महान रचनाकारों में से हैं जिनका साहित्य केवल पढ़ा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। उनकी कविताओं में हमें देश प्रेम, वीरता, संघर्ष, सामाजिक चेतना, प्रेम, सौंदर्य और मानव जीवन से जुड़े गहरे विचार एक साथ देखने को मिलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के सिमरिया गांव में हुआ था। एक साधारण ग्रामीण परिवार में जन्म लेने वाले दिनकर जी ने कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन शुरू किया। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया था। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्हें शिक्षा प्राप्त करने और साहित्य के प्रति अपने प्रेम को लगातार आगे बढ़ाने में बहुत जोर लगाना पड़ा। फिर भी उन्होंने एक अच्छी शिक्षा प्राप्त की और साहित्य के प्रति उनका प्रेम कितना है ये हम सभी जानते हैं। दिनकर जी का जीवन ऐसे समय में बीता जब भारत स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से गुजर रहा था। देश अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था। लोगों के भीतर स्वतंत्रता की आकांक्षा बढ़ रही थी और समाज में एक नई राष्ट्रीय चेतना जन्म ले रही थी। इस वातावरण का प्रभाव दिनकर जी के व्यक्तित्व और साहित्य पर भी पड़ा। उनकी कविताओं में स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की भावना बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह केवल एक काव्य पंक्ति नहीं है, इसमें जनता की शक्ति, उसके अधिकार और उसके आत्मविश्वास की आवाज सुनाई देती है। दिनकर जी की यही विशेषता है कि वे बड़ी सी बड़ी बात को ऐसे सरल और प्रभावशाली भाषा में कहते हैं कि वह सीधे लोगों के हृदय तक पहुंच जाती है। दिनकर जी को अक्सर वीर रस और राष्ट्र प्रेम के कवि के रूप में याद किया जाता है, लेकिन उनका साहित्य इससे कहीं अधिक व्यापक है। उनके साहित्य में वीरता के साथ करुणा है, संघर्ष के साथ संवेदना है, राष्ट्र प्रेम के साथ मानवता है और इतिहास के साथ वर्तमान समाज को समझने की दृष्टि भी है। उनकी प्रसिद्ध कृति रश्मिरथ इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। रश्मिरथी महाभारत के महान योद्धा कर्ण के जीवन पर आधारित है। कर्ण एक ऐसा पात्र है जो अत्यंत प्रतिभाशाली और वीर होने के बावजूद अपने जन्म और सामाजिक पहचान के कारण जीवन भर संघर्ष करता है। दिनकर जी ने कर्ण के माध्यम से समाज के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न रखा, किसी मनुष्य की पहचान उसकी जन्म से होती है या उसके कर्म और प्रतिभा से। रश्मिरथी की पंक्तियाँ आज भी लोगों को बहुत प्रभावित करती है। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। इन पंक्तियों में कर्म और सामर्थ्य के महत्व को सामने रखा गया है। कर्ण के माध्यम से दिनकर जी ने यह दिखाया है कि मनुष्य के जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उनके भीतर आगे बढ़ने की क्षमता और संघर्ष की शक्ति होनी चाहिए। दिनकर जी की एक और महत्वपूर्ण रचना है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, लेकिन इसके प्रश्न केवल महाभारत तक सीमित नहीं हैं। इसमें युद्ध, हिंसा, शांति, न्याय और मानवता जैसे गंभीर विषयों पर विचार किया गया है। दिनकर जी के साहित्य में शक्ति का भी विशेष महत्व है। उनके अनुसार शक्ति का उद्देश्य केवल विजय प्राप्त करना नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की क्षमता रखना भी है। इसी भाव को उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां व्यक्त करती है, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। इन पंक्तियों का संदेश है कि क्षमा तभी सार्थक होती है जब व्यक्ति में प्रतिरोध करने की शक्ति भी हो। दिनकर जी का साहित्य केवल वीरता और राष्ट्र प्रेम तक सीमित नहीं था। उनकी रचना उर्वशी में प्रेम, सौंदर्य, मनुष्य की भावना और जीवन के दार्शनिक पक्ष को बहुत गहराई से प्रस्तुत किया गया है। उर्वशी के लिए दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में
रेणुका, हुंकार, रसवंती, परशुराम की प्रतीक्षा और संस्कृति के चार अध्याय विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। संस्कृति के चार अध्याय में उन्होंने भारतीय संस्कृति और उनके विकास पर गंभीर चिंतन किया। इस कृति से हमें दिनकर जी के साहित्य का एक अलग पक्ष दिखाई देता है। वे केवल कवि नहीं थे बल्कि एक गंभीर चिंतक भी थे। दिनकर जी ने अपने साहित्य के माध्यम से भारतीय समाज, इतिहास और संस्कृति को समझने का प्रयास किया। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी राजनीतिक या आर्थिक स्थिति में नहीं होती, बल्कि उसकी संस्कृति, विचार और मानवीय मूल्यों में भी होती है। दिनकर जी की भाषा उनकी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक थी। उनकी भाषा प्रभावशाली होने के साथ साथ सरल और जन सामान्य से जुड़ी हुई थी। उनकी कविताएं मंच पर पढ़ी जाती थी और श्रोता उनके शब्दों से स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस करते थे। यही कारण है कि दिनकर जी की कविताएं आज भी लोगों की जुबान पर हैं। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, मानव जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। इन शब्दों में मेहनत, संघर्ष और संकल्प का बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। मनुष्य के सामने कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, यदि वह ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करता है तो वह अपने रास्तों की कठिनाइयों को पार करता है। यही दिनकर जी के साहित्य की खूबसूरती है। उनकी कविता हमें केवल भावुक नहीं करती बल्कि हमें सोचने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है। दिनकर जी को राष्ट्रकवि के रूप में विशेष सम्मान मिला। उन्हें साहित्य के क्षेत्र में अनेक सम्मान प्राप्त हुए जिनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी शामिल हैं। वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे और सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका निभाई। लेकिन दिनकर जी की सबसे बड़ी पहचान उनके पद या पुरस्कार नहीं, उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी रचनाएं हैं। आज उनके निधन के कई दशक बाद भी उनकी कविताएं पढ़ी जाती हैं, सुनाई जाती हैं और नई पीढ़ी को प्रभावित करती हैं। इसका कारण यही है कि दिनकर जी ने केवल अपने समय की बातें नहीं लिखी, उन्होंने उन भावनाओं और प्रश्नों को शब्द दिए जो हर युग के मनुष्य से जुड़े हुए हैं। आज जब हम देश, समाज, युवा शक्ति, आत्मसम्मान, संघर्ष और सामाजिक समानता की बात करते हैं तब दिनकर जी का साहित्य हमें फिर याद आता है। उनकी कविताएं हमें बताती हैं कि जीवन में संघर्ष आए तो उनसे भागना नहीं चाहिए, कठिनाई आए तो अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और अन्याय दिखाई दे तो उसके विरुद्ध आवाज उठाने का साहस रखना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर की कविता में राष्ट्र प्रेम है लेकिन साथ ही मानवता भी है। उनकी कविता में वीरता है लेकिन साथ ही संवेदना भी है। उनकी कविता में इतिहास है लेकिन उसके भीतर वर्तमान को समझने की दृष्टि भी है। और शायद यही कारण है कि दिनकर जी केवल अपने समय के कवि नहीं रहे, वे आने वाली पीढ़ियों में भी कवि बन गए। उनका साहित्य हमें यह विश्वास देता है कि शब्दों में शक्ति होती है। एक कवि की कलम समाज के विचारों को प्रभावित कर सकती है। एक कविता किसी व्यक्ति के भीतर साहस जगा सकती है और एक विचार आने वाली पीढ़ियों तक अपना प्रभाव छोड़ सकता है। रामधारी सिंह दिनकर का जीवन और साहित्य हमें यही संदेश देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मनुष्य को अपने आत्मविश्वास, परिश्रम और संकल्प को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अंत में दिनकर जी की इन पंक्तियों को याद करना चाहूंगी, मानव जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। यही दिनकर की कविता की शक्ति है, यही उनकी लेखनी का संदेश है और यही कारण है कि रामधारी सिंह दिनकर आज भी हमारे साहित्य, हमारे स्मृतियों और हमारी चेतना में जीवित हैं। आज हम जब दिनकर जी को याद करते हैं, हमें केवल एक महान कवि की याद नहीं आती बल्कि एक ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जो हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है। उनकी कविताएँ हमें बताती हैं कि जीवन में संघर्ष होना स्वाभाविक है लेकिन संघर्ष के सामने झुक जाना आवश्यक नहीं है। परिस्थितियां हमें रोक सकती हैं, हमारे रास्ते को कठिन बना सकती है लेकिन हमारे संकल्प और हमारी इच्छा शक्ति को तब तक नहीं हरा सकती जब तक हम स्वयं हार स्वीकार ना कर लें। दिनकर जी की लेखनी में यही विश्वास दिखाई देता है, एक ऐसा विश्वास जो निराशा के बीच आशा जगाता है, कमजोरी के बीच साहस देता है और मौन के बीच अपनी बात कहने की शक्ति देता है। शायद यही वजह है कि दिनकर जी की पंक्तियाँ केवल किताबों में नहीं रहती, वे लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। जब तक मनुष्य के भी

0: भीतर संघर्ष करने का साहस, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का संकल्प और बेहतर भविष्य का सपना जीवित रहेगा, तब तक दिनकर जी की कविता भी हमारे बीच जीवित रहेगी। इसी के साथ रामधारी सिंह दिनकर जी को शत शत नमन, धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खुला आकाश के अंतर्गत वार्ता। विषय था राष्ट्र कवि नामधारी सिंह दिनकर। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से, अब से कुछ ही देर में। कृपया प्रतीक्षा करें।

विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों

0: के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच आज सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में ब्लूमबर्ग के 30 वर्ष पूरे होने पर उसे बधाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियों के दौरान सरकार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर हटाने के सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। श्रीमती सीतारामन ने आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के दौरान अपने संबोधन में ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा कि बिम्स्टेक देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र का कोई भी हिस्सा आतंकवादी नेटवर्क को पनाह लेने, सदस्य बनाने, ट्रेनिंग लेने, फंड जुटाने या पड़ोसी देशों के खिलाफ गतिविधियां करने का अवसर न दे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। गृहमंत्री ने बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग के 5 अहम क्षेत्रों पर बल दिया, जिनमें ड्रग्स पर नियंत्रण, आतंकवाद रोधी और कानूनी सहयोग, भागे हुए अपराधियों की वापसी, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की जांच तथा संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण शामिल हैं। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में डॉ मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।
2: I want to strengthen my party to Tamil Nadu.
3: मैं तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं और 2029 के चुनाव की तैयारी के लिए जमीन तैयार करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने हमेशा तमिल गौरव को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि मुझे मंत्री पद से मुक्त कर तमिलनाडु भेजा जाए ताकि मैं वहां पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकूं।
2: To strengthen the party.
0: डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि मंत्रिपरिषद में पिछले 5 वर्षों के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के धैर्य, करुणा और असाधारण समर्पण को करीब से देखने का अवसर मिला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पाठ।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को बदल नहीं सकता है।
2: लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। ये कार्य लद्दाख प्रशासन और स्थानीय पक्षों के परामर्श से किया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि इन स्थानों को आधिकारिक मानचित्र में दर्ज करने का उद्देश्य उनकी सटीक पहचान सुनिश्चित करना और आम लोगों में उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चेक गणराज्य के बीच साझेदारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है।
1: इंडिया एंड चेक रिपब्लिक, भारत और चेक गणराज्य के बीच आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित गहरे और पुराने संबंध हैं। बदलते समय के साथ भी हमारी ये दोस्ती कायम रही है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं हैं।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है, वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है।
2: जो भी समाज नशे की गिरफ्त में आता है, वहाँ एक पूरी पीढ़ी के बर्बाद होने का खतरा पैदा हो जाता है। अगर हम अपने समाज को नशे से मुक्त करने में सफल नहीं होते, तो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती होगी।
0: प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मास्टर प्लान की शुरुआत वर्ष 2021 में आज ही के दिन देश के बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से की गई थी।
3: पिछले 5 वर्षों में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक एकीकृत डिजिटल नियोजन मंच से विकसित होकर एक व्यापक भूस्थानिक नियोजन प्रणाली बन गया है, जो अवसंरचना, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के विकास में सहयोग कर रहा है। इसने जीआईएस आधारित मंच के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और अवसंरचना नेटवर्क को एक साथ जोड़ा है। आज पीएम गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1800 से अधिक डेटा लेयर एकीकृत हैं, जिनमें 58 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के आधार पर इस मंच पर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली लगभग 400 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि जीएसटी परिषद जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे अमल में लाया जा रहा है।
4: 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी देश में कर व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके तहत केंद्र और राज्यों के कई करों को एक ही कर व्यवस्था में शामिल किया गया। इससे एक देश एक कर की अवधारणा को बढ़ावा मिला। जीएसटी परिषद के प्रस्तावों का उद्देश्य जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक आसान, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाना है। पिछले साल जीएसटी में किए गए नए सुधारों के तहत जीएसटी परिषद ने 4 कर दरों 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की जगह अब केवल 2 मुख्य दरें 5 और 18 प्रतिशत कर दी गई है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी के माध्यम से सरकार ने करों की जटिल व्यवस्था को आसान कर दिया है।
5: जीएसटी के जरिए हमने टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है। बिजनेस से जुड़े सैकड़ों छोटी मोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है और भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है।
4: नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 58वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि परिषद ने जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को हटाने की सिफारिश की है।
6: परिषद ने जीएसटी के अंतर्गत गिरफ्तारी के अधिकार को समाप्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने का भी सुझाव दिया है। इसका मतलब है कि 5 करोड़ रुपए से कम की राशि के मामलों में अभियोजन नहीं चलाया जाएगा।
4: 9 वर्षों में कर प्रक्रिया को आसान बनाने और कर दरों में बदलाव से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को भी मजबूती मिली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में

0: विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है, और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
0: यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सभी यूपीआई लेनदेन निशुल्क रहेंगे। एमडीआर शुल्क केवल 2000 रुपए से अधिक के ग्राहक से व्यापारी के बीच लेनदेन पर लागू होगा। व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी श्रेणी के अंतर्गत यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से प्रति माह 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को पहले की तरह लेन देन पर कोई एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार आज 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1,109 अंक चढ़कर 73,034 पर पहुंच गया। निफ्टी 359 अंक का उछाल दर्ज करता हुआ 22,722 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 50 पैसे की मजबूती के साथ 95.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और हवाई हमले की स्थिति के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय समुदाय की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। भारतीय नागरिकों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने और उड़ानों की ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने प्रागवे में विश्व स्केटिंग गेम्स में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्षीय स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी। सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेलकुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अशोक कुमार की छोटी बहन सती देवी का विवाह जाने माने निर्माता निर्देशक शशधर मुखर्जी से हुआ था। शशधर मुखर्जी ने बाद में ज्ञान मुखर्जी, राय बहादुर चुन्नीलाल और अशोक कुमार के साथ मिलकर फिल्मिस्तान स्टूडियो का निर्माण किया। अशोक कुमार भागलपुर में जन्मे थे। बाद की पढ़ाई उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में की। हालांकि अपने पिता ही की तरह अशोक कुमार भी लॉ के छात्र थे, पर उनके मन में सिने जगत में जाकर तकनीशियन बनने की तमन्ना थी। ऐसे में काम आए उनके बहनोई जो हिमांशु रॉय की फिल्म कंपनी बॉम्बे टॉकीज में कार्यरत थे। उन्होंने अशोक कुमार को बतौर तकनीशियन बॉम्बे टॉकीज में रखवा लिया। ये सन 1930 के आसपास की बात है। बॉम्बे टॉकीज उस जमाने का बहुत ही बड़ा और जाना माना नाम था। अशोक कुमार लैब असिस्टेंट के अपने काम में खुश थे और रम गए थे। ऐसे में जीवन नैया फिल्म का निर्माण चल रहा था। ये सन 1936 के आसपास की बात है। निर्माण के दौरान फिल्म के हीरो नजमुल हसन बड़े ही नाटकीय ढंग से फिल्म अधूरी छोड़ फिल्म की नायिका के साथ भाग खड़े हुए थे। किसी तरह से ये फिल्म फिर से बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। देविका रानी के साथ नायक के रूप में पेश किए गए बॉम्बे टॉकीज के लैब असिस्टेंट कुमुदलाल गांगुली, इसी फिल्म के दरमियान इनका नाम अशोक कुमार हुआ। वो ना नुकर करते रहे, पर अनिच्छा से ही सही वो बन गए इस फिल्म के हीरो। फिल्म जीवन नैया के साथ ही अशोक कुमार की एक्टिंग की गाड़ी भी शुरू हो गई।
1: रेल गाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक, बीच वाले स्टेशन बोले।

0: हाथ मंगल की हाथ, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार, रेलगाड़ी रेलगाड़ी। बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक, धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर, मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव, नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर, सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर, कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल, पटलीपट्टनम दिल्लीपट्टनम दिल्लीपट्टनम पटलीपट्टनम, ओंगोल निर्दिगोल निर्दिगोल ओंगोल, कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव, अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद, सोतनूर कोतनूर सोतनूर कोतनूर, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक,
1: जीवन नैया के बाद इसी साल यानी 1936 में एक और फिल्म देविका रानी और अशोक कुमार को लेकर बनी अछूत कन्या। सामाजिक विषय पर बनी ये फिल्म भी काफी चली और देविका रानी तथा अशोक कुमार एक हिट जोड़ी के रूप में विख्यात हो गए थे।

बाद में देविका रानी और अशोक कुमार अभिनीत कई फिल्में आईं। 1936 में ही जन्मभूमि, 1937 में इज्जत और सावित्री, 1938 में वचन और मुंशी प्रेमचंद की कृति पर आधारित फिल्म निर्मला। देविका रानी और अशोक कुमार अभिनीत आखिरी फिल्म थी अनजान, जो बनी थी 1941 में। ये फिल्म कुछ खास नहीं चली थी, परिणाम स्वरूप इसके बाद इन दोनों की एक साथ कोई फिल्म नहीं आई। इससे अशोक कुमार एक तरह से लाभान्वित ही हुए, उन्हें अब अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल गया था। अब तक वो देविका रानी के प्रभा मंडल के कारण कुछ छिपे हुए से लगते थे। उस जमाने की बड़ी ही खूबसूरत अदाकारा थी लीला चिटनिस, जो एक जानी मानी मॉडल भी थी। बाद वाली पीढ़ी ने लीला चिटनिस को रोती हुई मजबूर माँ के रूप में ही देखा हुआ है। उन्हें जानकर जरूर आश्चर्य हो सकता है कि लीला चिटनिस कभी खूबसूरत मॉडल भी रह चुकी हैं। खैर, तो लीला चिटनिस के साथ अशोक कुमार की जोड़ी बन गई। हालांकि लीला चिटनिस भी उम्र और रुतबे में अशोक कुमार से बड़ी थी, पर इनकी जोड़ी काफी लोकप्रिय हुई थी।

अशोक कुमार अभिनीत एक के बाद एक कुछ फिल्में आईं, उनमें उल्लेखनीय हैं 1939 में आई फिल्म कंगन, 1940 में बंधन और आजाद। इन फिल्मों की सफलता ने अशोक कुमार को एक अच्छे मकाम तक पहुंचा दिया। 1941 में लीला चिटनिस के साथ आई फिल्म झूला की सफलता ने अशोक कुमार को फिल्म की सफलता की गारंटी के रूप में देखा जाने लगा।

1943 से 1950 का दौर अशोक कुमार के उरूज का दौर कहा जा सकता है। 1943 में ज्ञान मुखर्जी की फिल्म किस्मत ने सफलता का नया इतिहास रच डाला। इस फिल्म में अशोक कुमार ने विलेनिश रोल किया था। यह हिंदुस्तानी फिल्मों में पहली बार हो रहा था। फिल्म की कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस फिल्म ने 1 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी। दोस्तों, ये वो दौर था जब 1.5 लाख में अच्छी खासी फिल्म बन जाया करती थी।

0: बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है शोर।
1: सही अर्थों में अशोक कुमार इस दौर के सुपरस्टार बन गए थे। इस दौर की उनकी चर्चित फिल्में थीं 1944 में चल चल रे नौजवान, 1946 में शिकारी, 1947 में साजन, 1949 में महल, 1950 में संग्राम और समाधि।

दोस्तों, अशोक कुमार ने बॉम्बे टॉकीज के लिए इस फिल्म कंपनी के बंद होने के पूर्व कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों का निर्माण भी किया है। 1947 में आई फिल्म नीलकमल राज कपूर साहब की बतौर नायक पहली फिल्म थी। 1948 में आई फिल्म जिद्दी जो देवानंद साहब और प्राण के करियर की एक मील का पत्थर फिल्म थी। 1949 में आई गूढ़ फिल्म महल जिसमें उन्होंने नायक की भूमिका की थी। उनकी नायिका का रोल वीनस ऑफ द इंडियन स्क्रीन मधुबाला ने निभाया था।

दोस्तों, अशोक कुमार ने नलिनी जयवंत और मीना कुमारी के साथ बात की कुछ एक फिल्मों में काम किया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं ये गाना।

दोस्तों, फेल्ट हैट लगाए काले चश्मे के साथ उन्होंने कुछ फिल्मों में विलेन के रोल भी किए हैं और कुछ एक फिल्मों में फर्ज पाबंद पुलिस अफसर की भूमिकाएं भी की हैं। कुछ ऐसा ही रोल था उनका ज्वेल थीफ में।

0: दुहाई।
1: 1960 के बाद अशोक कुमार ने चोला बदलते हुए कैरेक्टर एक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। ये 1960 के आसपास की बात है। वो फिल्म कानून में जज बने हैं। 1963 की फिल्म बंदनी में उम्र दराज स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका में वो नजर आए थे। 1964 में आई फिल्म चित्रलेखा में ढलती उम्र के धर्मगुरु के रूप में भी वो दिखाई दिए थे। 1970 में आई फिल्म जवाब में वो बने थे एक जमींदार। उनकी कुछ लैंडमार्क फिल्में हैं आशीर्वाद, सत्यकाम, पूरब और पश्चिम, पाकीजा, मिली, छोटी सी बात, खूबसूरत वगैरह।

0: बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जा रे मैं हारी जा जा रे मैं हारी जा जा रे।
1: 1980 से 1990 के दशक में वो कुछ टीवी शोज में भी काम कर चुके हैं। पहला भारतीय सोप ऑपरा हम लोग में वो एक एंकर के रूप में थे। बहादुर शाह जफर में भी वो नजर आए थे। उनका हिंदी फिल्म के स्क्रीन पर आखिरी अपीयरेंस 1997 में आई फिल्म आंखों में तुम हो, इस फिल्म में था। अशोक कुमार ने न केवल अनूप कुमार, किशोर कुमार इन भाइयों का करियर बनाया, बल्कि बीआर चोपड़ा, ऋषिकेश मुखर्जी, शक्ति सावंत जैसे निर्देशकों के लिए रास्ता बनाया, उन्हें मौके प्रदान किए। दोस्तों, अशोक कुमार को कई एजाज अवार्ड मिल चुके हैं। इनमें उल्लेखनीय है 1999 में भारत सरकार ने उनके योगदान के लिए उनकी सराहना के तौर पर उन्हें दिया था पद्म भूषण का सम्मान, और उल्लेखनीय है 1988 में उन्हें मिला फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड। दोस्तों, सबके चहेते दादा मोनी अशोक कुमार अदाकार फिल्मकार के अलावा एक चित्रकार भी थे। होम्योपैथी के वो अच्छे जानकार भी थे। अशोक कुमार ने कई आदर्श प्रस्तुत किए हैं, उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। वो पहले स्टार थे जो हीरो रहे, अधेड़ उम्र के नायक रहे, उम्र दराज ऋषियों जैसे रोल भी उन्होंने निभाए हैं। ये महान अदाकार 10 दिसंबर 2001 में मुंबई में अपने आदर्श नक्श पीछे छोड़ विराट ब्रह्मांड में विलेन हो गया।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने अदाकार फिल्मकार अशोक कुमार पर। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग प्रदान किया आकांक्षा सिंह ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब अशोक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती का प्रसारण हमारे मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। एक रंग कार्यक्रम में लीजिए सुनिए एक ही फिल्म के गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रस्त चैनल है और आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
2: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
1: नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक आज दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। नई दिल्ली के बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े, सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्र

सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में डॉ मुर्गन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्री

वाले गांधीनगर नगर निगम की 44 सीट से भाजपा को 38 सीट मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस को 41 वर्षों में भी एक चुनाव जीत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को एसआईआर से जोड़कर खारिज करने की जगह कांग्रेस का आत्ममंथन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आज शाम कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास के बाहर कथित तौर पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई। राज्यसभा सांसद डोला सेन के अनुसार तनिष्ठा साहा नाम की एक महिला ने कथित तौर पर ममता बनर्जी की साड़ी खींची और चाकू से उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल महिला को हिरासत में लेकर कालीघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने पैरागुए में विश्व स्केटिंग गेम में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्ष स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। मौसम विभाग ने कल तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज बारिश की बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।